0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज शक संवत 1948 के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तदनुसार 27 सितंबर 2026। आज दिन रविवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: एक जंगल में एक सुंदर सा घोड़ा घास चरा करता था, लेकिन उसको हमेशा डर लगा रहता था क्योंकि उसी जंगल में एक बाघ कभी कभार दिख जाता था। लेकिन फिर भी चारा खाने वो घोड़ा उसी जंगल में जाता था। एक दिन उसको वहीं पर एक शिकारी मिला। घोड़े ने उस शिकारी से अपनी परेशानी साझा की। शिकारी ने बोला, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास बंदूक है और इससे मैं किसी भी जानवर को मार गिरा सकता हूँ। ये सुनकर घोड़े ने शिकारी से पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? शिकारी ने उसको बोला, मेरे साथ रहो, तुम्हारी जान को कभी खतरा नहीं होगा। घोड़ा मान गया और वो शिकारी घोड़े के ऊपर बैठकर उसको शहर ले गया। शहर ले जाकर उसे अस्तबल में छोड़ दिया। घोड़ा सोचने लगा, मेरी जान तो बच गई लेकिन मेरी आज़ादी छिन गई।
1: जीवन सौरभ।
0: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर आधारित वतन का राग कार्यक्रम में आज हम राजा राममोहन राय के कृतित्व पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सुबह 8:30 पर बाल सभा कार्यक्रम में आज का विषय होगा कृष्ण की बाल लीला। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। सुबह 9 बजे टेक गुरु कार्यक्रम में आज का विषय है AI। इस विषय पर विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच जानकारी देंगे। इनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी रत्नेश सोनी। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में विषय होगा भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया की जानकारी। इस विषय पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से अदिति गौर की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पर आधारित कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। इस कार्यक्रम में आज हम समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन। इसके अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 28 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत, देवता हैं वरुण और छंद है त्रिष्टुप।
1: इदं कवेरादित्यस्य स्वराजो विश्वानि शान्त्यभ्यस्तु महान् अतियो मंद्रो यजथाय देवः सुकीर्तिं भिक्षे वरुणस्य भूरेह। स्वयं प्रकाशित होने वाले आदित्य गण अपनी सामर्थ्य से सभी विनाशकारी शक्तियों को दूर करें। ये स्तोत्र उन दूरदर्शी आदित्य गण के लिए हैं, याज्ञिकों के लिए अत्यंत सुखदायी, पोषणकारी वरुण देव की स्तुतियों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। तव व्रते सुभगासः स्याम स्वाध्यो वरुण तुष्टुवांसः उपायन उषसाम गोमती नामग्नयो न जरमाणा अनुद्यून। हे वरुण देव, आपका अनुगमन करते हुए हम सौभाग्यशाली बने। किरण युक्त उषा के समय प्रतिदिन आपकी स्तुतियां करते हुए हम स्तोताजन श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त होकर अग्नि के समान तेजस्वी बने। तवस्याम पुरुवीरस्य शर्मन्नुरशंसस्य वरुण प्रणेतः यूयम् नः पुत्रा अदितेरब्धा अभि क्षमध्वं युज्याय देवाः। हे श्रेष्ठ नायक वरुण देव, आप बहुतों के द्वारा प्रशंसित हैं। हम वीर संतति से युक्त होकर आपके आश्रय में रहें। हे अबध्य पुत्रो, हम आपसे मित्र भाव की कामना करते हुए अपने अपराधों तथा पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। प्रसीमादित्यो असृजद् द्विधर्ता ऋतम सिंधवो वरुणस्य यन्ति न श्राम्यन्ति न वी मुचन्त्येते वयो न पप्तु रघुया परिज्मन। समस्त विश्व को धारण करने वाले आदिति पुत्र वरुण देव ने जल को वृष्टि रूप में उत्पन्न करके अपनी सामर्थ्य से नदियों को प्रवाहित किया, जो पक्षी की भांति अविरल गति से पृथ्वी पर विचरण कर रही हैं। वी मच्छ्रिथाय रशनामिवाग रिद्ध्याम ते वरुण खामृतस्य मा तंतुश्छेदि वयतो धियं मे मा मात्रा शार्यपसः पुररितोः। हे वरुण देव, हमारे पापों ने हमें रस्सी की भांति जकड़ रखा है, उनसे हमें छुड़ाएं ताकि श्रेष्ठ मार्ग में गमनशील आपकी सामर्थ्य को हम धारण कर सकें। कि जिस तरह बुनाई करने वाले का तागा नहीं टूटना चाहिए, उसी प्रकार श्रेष्ठ कार्यों के नियोजन के समय आपकी शक्ति अविरल गति से प्राप्त होती रहे। कार्य की समाप्ति के पूर्व ही हमारी शक्ति क्षीण न हो। अपो सुम्यक्ष वरुण भियसम मत सम्राणिता वोनु माग्रभाय दामेव वत्साद्वी मुमुग्ध्यं हो नहि त्वदारे निमिषश्चनेशे। हे सत्य रक्षक तेजस्वी वरुण देव, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखकर भय से हमें दूर करें। जिस प्रकार से बछड़े को मुक्त करते हैं, उसी प्रकार हमें पापों से मुक्त करें, क्योंकि आपके अभाव में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मानो वधैर वरुण ये त इष्टावेनः कृणवंत मसुर ध्रीणन्ति मा ज्योतिषः प्रवसथानि गन्म विशुमृधः शिश्रथो जीवसे नः। हे प्राणों के रक्षक वरुण देव, दुष्टों को नष्ट करने वाले आयुधों का हम पर कोई प्रभाव न हो। हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए हिंसक शत्रुओं को नष्ट करें तथा हम लोग प्रकाश से दूर न जाएं। नमः पुरा ते वरुणोत नून मुता परम तविजात ब्रवाम त्वे ही कम पर्वते न श्रितान्य प्रच्युतानि दूढ़भ व्रतानि। हे अनेक दुर्लभ शक्तियों से संपन्न वरुण देव, आपके अटूट नियम पर्वत के समान अचल तथा दृढ़ता से स्थिर रहते हैं। हम भूतकाल में आपको नमन करते रहे हैं, इस समय भी नमन करते हैं तथा भविष्य में भी नमन करते रहेंगे। परऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नयन्य कृतेन भोजम अव्युष्टा इन्नु भूयसी रुषाय आनो जीवान वरुण तासु शाधि। हे वरुण देव, हमें ऋण मुक्त करें। दूसरों के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का हम उपभोग न करें। बहुत सी उषाएं जीवन में प्रकाश देने वाली धाराएं जो प्रकाशित हो सकी, उनसे हमारे जीवन को सुखमय बनाएं। यो मे राजन न्युज्यो वा सखा वा स्वप्ने भयं भीरवे मह्यमाह स्तेनो वा यो दिप्सति नो वृको वा त्वं तस्माद् वरुण पाह्यस्मान। हे तेजस्वी वरुण देव, जो हमारे बंधु स्वप्न में हमें भयभीत करते हैं या भेड़िये के समान हमें नष्ट करना चाहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदान आविदं शूनमापेह मा रायो राजन्यु यमादव स्थाम बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे वरुण देव, सबको संतुष्ट करने वाले ऐश्वर्यशाली दानदाता की सुख समृद्धि से हम कभी ईर्ष्या न करें, उन्हें बंधुवत माने। हे वरुण देव, आवश्यक धन

के उपदेश हमारी समस्याएं हल करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए जब कभी भी ऐसा लगे कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तब ग्रंथों का पाठ शुरू करें। योग वशिष्ठ, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता और कई ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जो आनंद और उल्लास बढ़ाते हैं, समस्याओं का समाधान बताते हैं।

वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास संयम, चरित्र बल और सत्य है। जो लोग आत्मविश्वासी है वे मुश्किल कामों को भी सफलतापूर्वक कर जाते हैं। कभी भी वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है जो झूठा है अथवा सत्य से दूर है। सत्यमेव जयते यानी सत्य ही सदा जय का कारण बनी है। इसीलिए जीवन में यथार्थवादी रहें, सत्य के साथ रहें।

सपने देखना अच्छी बात है, भविष्य के लिए अच्छे अच्छे विचार रखें, लेकिन हमारे सपने यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक होने चाहिए। जो कुछ भी जीवन में सत्य है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अपनी शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता को देखते हुए ही अपना सपना बुनना चाहिए। बड़ा संकल्प लेकर लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। केवल विचारों में बड़े बड़े महल खड़े नहीं करना चाहिए।

श्रम के बिना कभी भी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए श्रमिक बने, संघर्षशील बने, क्योंकि हमारे पास दैवीय सामर्थ्य है। हम मनुष्य हैं, हम में ईश्वर के अंश है, इसीलिए किसी भी कठिनाई में विचलित नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, कठिनाइयां नए अवसर लेकर आती है।

जीवन में उजाला और अंधकार दोनों का आना जाना लगा रहता है। तमस का अर्थ है अंधकार यानी रात्रि रहेगी, प्रकाश का अर्थ है दिवस। कभी जीवन में एक समय ऐसा आता है जब परेशानियां रहती है, तब हमारा आत्मविश्वास सहायक बनता है। जिन लोगों के विचार श्रेष्ठ हैं, वे जीवन की आने वाली कठिनाइयों से कभी विचलित नहीं होते।

समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास धन से भी कुछ अधिक मूल्यवान है तो वो समय ही है। जब हम समय का दुरुपयोग करते हैं तब जीवन का नाश करते हैं। प्रत्येक सांस मूल्यवान है, हर पल नए अवसर लेकर आता है। हम हर पल में नए प्रयोग कर सकते हैं, जीवन की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक भी पल बर्बाद ना करें।

आशावादिता एक बड़ा सद्गुण है। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा की वजह से जीवन बहुत बड़े संकट की ओर चला जाता है। जीवन अंतहीन संभावना से भरा हुआ है। हर पल नई ऊर्जा और नई उमंग हमारा स्वागत करती है। इसीलिए चुपचाप ना बैठ जाएं कि अब कुछ नहीं होने वाला है। निराशाओं से दूर हटकर नए मार्ग की ओर बढ़ें और कुछ ऐसा करें जहां सिद्धि सफलता सब मिल सकती है।

0: आध्यात्म की यात्रा अनंत की यात्रा है, स्वयं की ओर मुड़ने की यात्रा है। जीवन में हम कुछ भी काम करें, कहीं भी जाए, हमें मार्गदर्शक चाहिए होता है और वह मार्गदर्शक है गुरु। हमें गुरु के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए, तभी जीवन की यात्रा सिद्ध होगी। इन्हीं विचारों के साथ अब हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एकै राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है वतन का राग। महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक राजा राममोहन राय के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

वदन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। एक ऐसे समाज का चेहरा बदलना जो रूढ़ियों को भगवान का आदेश मानता हो, जहां अशिक्षा का बोलबाला हो, जहां बहुविवाह, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जाल फैला हुआ हो, बड़े दुस्साहस का कार्य होता है। 19वीं सदी के राजा राम मोहन राय एक ऐसी ही शख्सियत थे जिन्होंने महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व की बात कही और उनके अस्तित्व को अहमियत दी। पुरुषों के बिना स्त्रियों का कोई वजूद नहीं, वो निम्न कोटि की प्राणी हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती, बल नहीं होता। यदि दुर्भाग्य से वो विधवा हो गई तो उनसे उनके जीने का अधिकार छीन लिया जाए, उन्हें सती के नाम पर जलाने का या फिर जलकर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ये कड़वा सच समाज का वो कोड़ था जिससे आज से 50 साल पूर्व तक हमारी आधी दुनिया यानी स्त्रियां पीड़ित रहीं। राजा राम मोहन राय इस देश की महिलाओं के हमदर्द बनकर आए और उन्होंने धर्म के नाम पर रची गई अमानवीय परंपरा सती प्रथा के खिलाफ सामाजिक लड़ाई छेड़ी। उन्होंने न केवल सती प्रथा बल्कि स्त्री का संपत्ति पर अधिकार, शिक्षा का अधिकार और विधवा विवाह के लिए भी सामाजिक आंदोलन चलाए। परंपराओं की जटिलता को उन्होंने चुनौती दी, अपनी सूझबूझ से शास्त्र सम्मत तर्क प्रस्तुत किए। पोंगा पंथी जमात ने उन्हें अधार्मिक, पापी और ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन वो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। यदि केवल सती दाह की बात की जाए तो समय के जो आंकड़े प्राप्त हुए वो समाज की बुरी तस्वीर पेश करते हैं। सन 1815 में 253 महिलाएं सती हुईं, सन 1816 में 269, सन 1817 में ये संख्या बढ़कर 442 हो गई। सन 1818 में आंकड़े चौंकाने वाले थे, इस साल संख्या बढ़कर 544 हो गई। सती होने का बढ़ता ये ग्राफ बताता था कि बुराई घटने की बजाय अपनी जड़ें और मजबूत कर रही है। ये आंकड़े तो दर्ज आंकड़े थे, लेकिन जो पहुंच से परे थे, दूर दराज के गांव और मोहल्लों में न जाने कितनी महिलाएं सती के नाम पर बलि चढ़ा दी गईं। जघन्य अपराध ने धर्म का चोला पहन रखा था। सामाजिक विरोध के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना मुंह खोले। हमारे मनुष्य समाज का ये कृत्य सार्वजनिक वाहवाही बटोरता था। महिलाओं को आत्मदाह के लिए उकसाने वाले तत्व अपनी कुंठित इच्छाओं को भभकती ज्वाला से शांत कर रहे थे। तब राजा राम मोहन राय की शख्सियत ने महिलाओं की पीड़ा की गहराई को समझा। इस सामाजिक युद्ध में उन्होंने वीर योद्धा की भूमिका निभाई, वो कलम के सिपाही बने। उन्होंने 3 अखबारों का प्रकाशन किया, ब्रह्म निकल मैगजीन, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये 3 विभिन्न भारतीय भाषाओं के अखबार थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, वो सामाजिक जड़ता के खिलाफ कलम थाम चुके थे। उन्होंने कलम के माध्यम से न केवल सामाजिक बुराइयों का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों की अतिवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ भी वो डटे रहे।

उस समय अखबार निकालना हिंदुस्तानियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। अंग्रेज अखबार का प्रकाशन करने वालों को तरह तरह से प्रताड़ित करते थे, जिससे मजबूरन प्रकाशन बंद करना पड़े या फिर जुर्माना भरना पड़ता था। डॉक्टर राम मोहन राय ने अंग्रेजी फरमान का विरोध करते हुए कहा, लाइसेंस तो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अंग्रेजों को चाहते हैं। उन्होंने कभी अंग्रेजों की ताकत की परवाह नहीं की। बहरहाल वो दो तरफ से विरोधियों से लड़ रहे थे, एक वो जो अपने देशवासी थे और दूसरे वो जो देश में डेरा जमा कर बैठे हुए थे। राम मोहन राय बिना रुके कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। उसी समय वेंटिक का आगमन देश में हुआ। वेंटिक राजा राम मोहन राय से मिले और उनका समर्थन किया। देश में तूफान खड़ा हो गया। उनके विरोधी नागरिकों से अनुरोध कर रहे थे कि वो राजा राम मोहन राय के बहकावे में न आएं। उनके विरुद्ध तरह तरह के संदेश प्रसारित किए जा रहे थे। आखिरकार बुराई हार गई। महिलाओं के भाग्य का फैसला हुआ और सन 1829 में सती प्रथा निवारण कानून पास हो गया। राम मोहन राय की कड़ी आलोचना हो गई। सती प्रथा की वकालत करने वालों ने इस कानून के खिलाफ जुड़कर प्रीवी काउंसिल में याचिका दायर कर दी। राम मोहन राय सन 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना कर चुके थे। लड़ाई लंबी चली, पर जीत राजा राम मोहन राय की हुई। इसी दौरान एक सुयोग घटित हुआ। दिल्ली के एक बादशाह ने, जो अकबर द्वितीय के नाम से जाने जाते थे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया। अनेक तर्कों के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने भी राम मोहन राय को राजा मान ही लिया। वो विद्वान थे और स्वयं पर भरोसा रखते थे। वो जानते थे कि वो जो कुछ भी कर रहे थे सही था। राजा राम मोहन राय का जन्म हुगली जिले के राधानगर में 22 मई सन 1774 को हुआ। उनके पिता रमाकांत राय संपन्न व्यक्ति थे। राम मोहन राय की शिक्षा दीक्षा पटना में हुई। उन्होंने अध्ययन के लिए कुछ समय काशी में भी बिताया। अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा पर राम मोहन राय की पकड़ बेहद मजबूत थी। उस समय अंग्रेजी का बड़ा बोलबाला था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। उन्होंने बाइबल भी पढ़ी और कुरान शरीफ भी पढ़ी। उन्होंने वेद, वेदांत, मीमांसा, स्मृति शास्त्र, काव्य शास्त्र जैसे ग्रंथों का भी गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर एक है, तो फिर जाति धर्म का तमाशा क्यों किया जाता है?

ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता इंसानों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में बांट दिए हैं। मानवता का उदार मंत्र हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के स्वरों में लुप्त हो गया। इसी ढके हुए रास्ते को हमारे साधु चरित्र महामानवों ने खोजने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय इसी की एक कड़ी थे। वो इसी ढके हुए रास्ते को प्रकाश पूंजी की तरह मोड़ना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने अनेक ग्रंथों की रचना की और कई महान ग्रंथों का अनुवाद भी किया। उन्होंने अरबी, फारसी में लिखा और साथ ही उन्होंने बंगला भाषा में भी लिखा। उनका मत था कि वेदांत सृष्टि के समस्त जीवों में प्रेम पैदा करना चाहिए। बहरहाल कट्टरपंथियों ने उनका हमेशा विरोध किया, लेकिन उन्होंने सभी संप्रदायों के बीच भाईचारे की बात कही। उन्होंने सदैव ही उदार धर्म की पैरवी की। ये सत्य है कि वो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे। वो मानते थे कि शिक्षा से मनुष्य की और समाज की उन्नति होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा से क्या लाभ जो उन्नति का रास्ता न दिखाए। हिंदू कॉलेज उनके ही प्रयासों का परिणाम था, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। एक और स्कूल उन्होंने खोला, जिसका नाम था एंग्लो हिंदू स्कूल, जो स्कॉटिश कॉलेज के नाम से मशहूर है। उन्होंने विदेश यात्रा की और शिक्षा के अनेक प्रयास किए। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं का निर्माण भी किया। लंदन में 27 सितंबर सन 1833 को इस महान आत्मा ने दुनिया से विदा ली। उनकी श्रेष्ठता उनके कर्मों के जरिए हम सभी के सामने है, जिसकी आगे हम सदैव ही नतमस्तक रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक राजा राममोहन राय के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है कृष्ण की बाल लीला। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं मनीषा चतुर्वेदी।
1: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है कान्हा की बाल लीलाएं।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी। हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम बाल सभा। अब नाम ही बाल सभा है तो फिर बाल सभा में बातें भी तो वही होनी चाहिए जो आपके मन को भाएं। तो आज हम आपको एक ऐसे बाल सखा से मिलवा रहे हैं जो आपकी हर उम्र में, जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर आपके बुजुर्ग हो जाने तक, हमेशा हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। उनकी कही बातें, उनकी लीलाएं, उनका दिया गया ज्ञान हम सबको पल पल पर ध्यान भी आता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे आज। क्योंकि नन्हे से कृष्ण सिर पर मोर पंख, हाथ में मुरली, पैरों में छोटी छोटी पायल, गले में वैजंती माला और चेहरे पर ऐसी प्यारी सी मुस्कान कि जिसे देखकर यशोदा मैया भी अपनी सारी नाराजगी भूल जाती थी। इसीलिए तो कान्हा कैसे कैसे प्रश्न कर लेते थे, याद है आपको? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। अब बताइए, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कभी किसी से? लेकिन जो बाल कान्हा हैं वो कुछ भी पूछ लेते थे अपनी मैया से। कभी माखन की मटकी के पीछे भागते कान्हा, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते कान्हा, कभी जमुना जी के किनारे गायों के बीच घूमते कान्हा, तो कभी अपनी मुरली की धुन से पूरे वृंदावन को मोहित करने वाले कान्हा। और इसलिए ही तो आज मैं आपको ऐसी ही कान्हा की बाल लीलाएं बता बता के उनकी शरारतों में छुपे प्रेम को सुनाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि कैसे हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक हैं ये सारी लीलाएं। आज हम ज़रूर कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी हम सबको उनका दिया ज्ञान कैसे कैसे अपने साथ समाहित कर लेता है। अब देखिए, कृष्ण जी का जन्म तो अंधकार में ही हुआ था, कहानी यहीं से शुरू होती है। भगवान विष्णु ने देवकी को सूचित किया कि वो शीघ्र ही आठवीं संतान के रूप में उनकी कोख से जन्म लेने वाले हैं। वे वासुदेव से बोले, मेरे जन्म लेते ही आप मुझे लेकर अपने मित्र गोकुलवासी नंद बाबा के घर जाएं। वहां उनकी पत्नी यशोदा एक बालिका को जन्म दे चुकी होंगी, मुझे उन्हें सौंप कर आप उनकी नवजात बालिका को ले आएं तथा माता देवकी की गोद में डाल दें, किसी प्रकार का भय ना करें। ऐसा कह विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अर्धरात्रि के समय देवकी ने बालक को जन्म दिया। बालक रोया नहीं। वासुदेव ने नवजात शिशु के लिए कंस द्वारा रखवाई गई टोकरी में बालक को रखा, फिर कई पल तक वात्सल्य भरे सजल नेत्रों से अपलक उसे निहारते रहे। तभी वासुदेव के मस्तिष्क में प्रश्न कौंधा, जंजीरों से बंधा एक कैदी नवजात शिशु को कैसे सुरक्षित गोकुल पहुंचा सकता है? इसका उत्तर तुरंत मिला। उनकी जंजीरें खुलकर नीचे गिर पड़ी। वासुदेव समझ गए कि ईश्वर की लीला शुरू हो चुकी है। बस फिर क्या था, उन्होंने टोकरी उठाई और बाहर की ओर चल दिए। कारागार का द्वार खुला और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी के मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो चुकी थीं। बस यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की लीला। कितनी कठिन परिस्थिति थी और वही आधी रात का समय, चारों तरफ घोर अंधकार, लेकिन उसी अंधकार के बीच जब जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, तो कितनी अद्भुत रात होगी वो। उसके बाद यमुना जी ने कैसे चरण पखारे हैं, आप सुनकर देखिए। बाहर बादल अभी गरज ही रहे थे, बिजलियां कड़क रही थीं, मूसलाधार बरसात होने लगी, पर वासुदेव निर्भय निर्विरोध आगे बढ़ते रहे। इस बात से अनभिज्ञ कि भगवान विष्णु के 1000 फनों वाले सेवक शेषनाग उनके ऊपर अपने फनों का विशाल छत्र ताने अदृश्य रूप से साथ साथ चल रहे हैं। यमुना तट पर जाकर वासुदेव ठिठके, लहरें उफन रही थीं, गोकुल यमुना नदी के उस पार था। वासुदेव भगवान का नाम लेकर लहरों में उतर गए। अचानक लहरें ऐसे ऊपर उठीं जैसे वासुदेव को टोकरी समेत लील जाना चाहती हों। शिशु कृष्ण ने यमुना की इच्छा को जानकर अपने पांव नीचे लटका दिए। यमुना चरणों को स्पर्श कर शांत हो गई। चमत्कारिक रूप से वासुदेव के लिए एक शुष्क धरातल वाला गलियारा बन गया। वासुदेव तेजी से आगे बढ़ने लगे। देखिए किस तरह से पवित्र नदी यमुना भी कृष्ण जी के पांव पखार कर शांत हो गई। कैसी है अद्भुत कृष्ण लीला। इसीलिए कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी गहरा हो बच्चों, प्रकाश आने की संभावना कभी खत्म नहीं होती। यहीं से हमें प्रभु श्री कृष्ण सीख देते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब आगे पहुंचे, अब गोकुल पहुंचे पालनहार। गोकुल की गलियां सुनसान थी। नंद बाबा के घर पहुंचकर वासुदेव ने द्वार खटखटाए, द्वार तुरंत खुल गए। मानो नंद बाबा द्वार के पीछे इसी प्रतीक्षा में तो खड़े हों कि कब वासुदेव आए और वे द्वार खोले। नंद बाबा अपने मित्र को देखकर आश्चर्य से बोले, मित्र वासुदेव, तुम यहां इस समय? तुम तो कंस के कारागार में थे। वासुदेव ने उनकी बात काटते हुए कहा, प्रिय मित्र, इस टोकरी में देवकी की 8वीं संतान है। पापी कंस का काल है। भगवान विष्णु की आज्ञा से इसे मैं तुम्हें सौंपने आया हूँ। अपनी सुरक्षा के साए में तुम इसे पालो। भगवान की यह भी आज्ञा है कि इसके बदले अपनी नवजात कन्या तुम मुझे दे दो। नंद बाबा मुस्कुराए, मैं समझ गया मित्र, जरा प्रतीक्षा करो। उन्होंने टोकरी से नवजात शिशु को उठाया और भीतर गए, जहां पलंग पर उनकी पत्नी यशोदा अपनी नवजात बालिका के साथ सो रही थीं। नंद बाबा ने वासुदेव के बालक को यशोदा के बगल में लिटाकर अपनी बालिका को वासुदेव की टोकरी में रख दिया। दोनों मित्र केवल एक दूसरे को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते रहे। वासुदेव ने बालिका को टोकरी से उठाकर देवकी की गोद में रख दिया। देख रहे हैं आप कैसे यशोदा मैया के आंगन में आ गए, कैसे गोकुल की गलियों को हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने ठिठोलियां करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन गलियों में दौड़ते हुए नन्हे कान्हा, कभी घुटनों के बल चलते, कभी अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश करते, कभी ऐसी शरारत करते कि बस पूरा घर उनके पीछे दौड़ता रहता। कल्पना कीजिए कि मैया ने घर में माखन रखा है और कान्हा की नजर उस माखन पर पड़ गई। अब कान्हा सोच रहे हैं कि इसे कैसे पाया जाए, मटकी इतनी ऊपर है, अकेले कैसे पहुंचेंगे। तो कान्हा अपने दोस्तों को बुलाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर माखन की मटकी तक पहुंचते हैं और माखन मिल गया तो सिर्फ खुद तोड़ी खाएंगे, अपने दोस्तों को भी तो खिलाएंगे। और यहीं से कान्हा की शरारत में छिपी खूबसूरती है कि उनकी खुशी अकेले की खुशी नहीं है बच्चों। ये है हमारा आज का दूसरा ज्ञान कि कान्हा ने कभी किसी भी चीज का उत्सव अकेले नहीं मनाया, माखन मिला तो बांट के खाया और जब मटकी फूटी तब डांट भी मिल बांट कर खाई। तो बच्चों जो भी करना है मिल बांट कर करना है, खुश होना है तब भी और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तब भी सबके साथ शेयर करनी है। तो बस ये जो शरारत है ना, कई बार आपने सुना होगा माखन चोर कहते हैं कृष्ण को, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कृष्ण की माखन चोरी की कहानी हमें क्या सिखाती है? इन छोटी छोटी शरारतों में वो कितने लोगों से एक साथ जुड़ते हैं, कितने लोगों के बाल कान्हा बन जाते हैं, वो अपनी इन बाल सुलभ चेष्टाओं से कितने लोगों का दिल हर लेते हैं कान्हा, है ना। इसीलिए तो कृष्ण का गोकुल हमें बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी रिश्तों में है, तो रिश्ते बनाइए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह कान्हा ने अपनी छोटी छोटी सी बाल लीलाओं से कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। तो अब आते हैं पूतनावत पर। कंस को ये विश्वास हो गया था कि उनके विरुद्ध कोई दैवीय षड्यंत्र रचा गया है, तभी तो देवकी की आठवीं संतान को किसी और के गर्भ में भेज दिया गया। इसलिए अपने काल को समाप्त करने के लिए कंस ने भयानक राक्षसी को बुलाकर आज्ञा दी, पूतना मथुरा या उसके आसपास के क्षेत्र में सावन माह में किसी स्त्री ने मेरे काल रूप को जन्म दिया है, तुम इस समूचे क्षेत्र में सावन में जन्मे बच्चों को समाप्त कर दो। फिर क्या था, पूतना ने विष का लेप किया और गोकुल जा पहुंची। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धर के नंद बाबा के घर गई और अन्य स्त्रियों की भांति कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दुलारने लगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया अंदर गई, पूतना ने अवसर ताड़ कर कृष्ण जी को अपना दूध पिलाना चाहा, लेकिन फिर क्या था, बाल कान्हा ने उनके प्राण ही खींच लिए और मायावी पूतना मृत होकर जमीन पर आ गिरी। देखा आपने किस इरादे से भेजा गया था पूतना को कंस के द्वारा। लेकिन बच्चों यहीं से बाल कान्हा की छोटी छोटी सी दैवीय शक्तियों से लोग ताकते रह गए कि ये क्या है। पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा के आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। इसके बाद क्या था, पूतना की मृत्यु ने कंस के सभी संदेह मिटा दिए, सिद्ध हो गया कि नंद बाबा का बालक कृष्ण ही उनका काल है। इसलिए इस बार कृष्ण को मारने के लिए बच्चों कंस ने तृणावर्त नामक मायाधारी राक्षस को भेजा। उसने क्या किया पता है, वो वायु का झोंका बनकर गोकुल पहुंचा। उस समय कृष्ण को गोद में लिए यशोदा घर के बाहर बैठी हुई थी। तृणावर्त की माया से यशोदा को एकाएक कृष्ण का भार बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अचानक होने वाले इस बदलाव को देखकर वो घबरा गईं और उन्हें पालने में लिटाकर नंद बाबा को बुलाने भीतर भागी। इसी बीच अवसर पाकर तृणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया, अपने कंधे पर बैठाकर बवंडर बनकर आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंच तृणावर्त ने बालक कृष्ण को मारने के लिए अपने शरीर को खूब झटके दिए, टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन कृष्ण तो जोंक की तरह उसकी गर्दन से चिपक गए और बाज के पंजों की तरह उनकी उंगलियां दुष्ट राक्षस की गर्दन में गढ़ती जा रही थी। तृणावर्त उनके बोझ तले दबकर धड़ाम से धरती पर आ गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब माता यशोदा, नंद बाबा और दूसरे ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो उन्होंने बालक कृष्ण को पर्वताकार दानव के मृत शरीर के पास अपना अंगूठा चूसते देखा। सुना बच्चों, कैसे छोटे से नन्हे से बालक बनकर कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटा दी और इसके बाद फिर धीरे धीरे लीलाएं और चमत्कारों का क्रम आगे बढ़ता गया। एक दिन माँ यशोदा ने बालक कृष्ण को मिट्टी फांकते हुए देखा, चिल्लाती हुई कृष्ण की ओर दौड़ी और आकर उनके कान पकड़ लिए। कृष्ण ने सिर हिलाकर मिट्टी खाने के आरोप को नकार दिया। यशोदा ने बालक को मुंह खोलने पर मजबूर किया ताकि वो उंगली से मिट्टी बाहर निकाल सके। नन्हे कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा ठगी रह गई। कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का विहंगम दृश्य नजर आ रहा था। वात्सल्य और भक्ति से विभोर होकर यशोदा ने कृष्ण को अपने अंक में भर लिया। ऐसे ही एक दिन फल बेचने वाले की पुकार सुनकर बालक कृष्ण फल खरीदने मुट्ठी भर चावल लेकर बाहर की ओर दौड़े। जब फल वाली तक पहुंचे तब सारे चावल उंगलियों के बीच से होकर दाना दाना गिर गए। फल वाली ने बालक के भोलेपन पर न्योछावर होकर काफी सारे फल वैसे ही दे दिए। फल वाली जब घर पहुंची तो अपनी टोकरी देखकर विस्मित रह गई। टोकरी में उसके बचे फल मूल्यवान रत्नों की ढेरियों में परिवर्तित हो गए थे। तो बच्चों, ये कान्हा की बाल लीलाएं आखिर मैं आपको सुना क्यों रही हूं? पहले तो ये बताइए कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, गीत गोविंद सुनती हूँ और फिर मैं बहुत सुंदर सुंदर पद सुनती हूँ जो कान्हा के लिए लिखे गए हैं, मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चे को कान्हा की बाल लीलाएं जाननी चाहिए। बच्चों, जब उन्हें सुनो तो जीवन का मार्ग दिखाई देता है, जब उनके बारे में पढ़ो तो जीवन की कठिनाइयां ऐसे लगती हैं जैसे वो दानव थे ना, आते तो थे कभी बवंडर का रूप लेकर, कभी मायावी राक्षस तरह तरह की माया रच कर आते थे, लेकिन कृष्ण के सामने बहुत बोने नजर आते थे। तो ऐसे कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस रूप में कृष्ण को देखते हैं वो आपको उसी रूप में नजर आते हैं। कभी वो द्रौपदी का चीर बन जाते हैं, कभी वो पूतना को जमीन पर गिराने वाला बालक बनकर अपनी ताकत दिखाते हैं। ऐसे कान्हा की कहानी मैं आपको सुनाकर आज सच मायने में बच्चों खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य ही तो है जब आप जैसे नन्हे मुन्हे अगर रेडियो कान से लगाए सुनना चाह रहे हैं कि कुछ और कहानियां बताइए। आ रही है ना आपके मन में ये बात? तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको और बहुत सारी कहानियां सुनाने का दिल कर रहा है, लेकिन समय की ये थोड़ी सी मांग है कि आज थोड़ी कम कहानियां सुनाओ, अगली बार थोड़ी और सुना देना। तो मैंने सोचा है कि ये कान्हा की बाल लीला है ना बच्चों, अगली बार सभा में भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन अभी एक बात और बता देती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि माँ यशोदा का ध्यान आकर्षित करने के लिए ना कृष्ण हर तिकड़म का सहारा लेते थे। एक दिन यशोदा माँ दही बिलो रही थी तो कृष्ण ने दूध पीने के लिए रो रो कर घर सिर पर उठा लिया। उसके बाद क्या था, यशोदा अपनी गोदी में बिठाकर दही बिलोते हुए दूध पिलाना पड़ा। तभी यशोदा को याद आया कि रसोई में वो चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रख आई है। बदहवासी में वो कृष्ण जी को वहीं छोड़कर भीतर भागी। बालक कृष्ण को अपनी उपेक्षा पर अत्यंत क्रोध आया और बालक कृष्ण ने दही वाला घड़ा मथनी मारकर फोड़ दिया। सारा दही फर्श पर फैल गया। अब कृष्ण ने उस कोठरी की ओर कदम बढ़ाए जहाँ छत से लटकते घड़ों में मक्खन रखा था। नटखट बालक ने वहां रखी बड़ी सी ओखली पर चढ़कर कुछ घड़े नीचे पटक दिए। घड़े गिरने की आवाज सुनकर कुछ बंदर और नन्हे कान्हा के दोस्त कूदकर अंदर आ गए और माखन की दावत उड़ाने लगे। कृष्ण स्वयं एक घड़ा लेकर ओखली पर बैठ मुट्ठी भर भर कर माखन फाटने लगे। आधा मक्खन मुंह में जा रहा था और आधा शरीर पर और आधा कपड़ों पर। जब यशोदा मैया बाहर आई तो सारी दही फर्श पर फैली देखकर सन्न रह गई। उन्हें कृष्ण के दही में लिथड़े नन्हे पैरों के निशान दिखे तो मक्खन की कोठरी की ओर गए थे। वो बस दौड़कर कोठरी के द्वार पर पहुंची और वहां उड़ रही मक्खन की दावत का नजारा देखकर संयम खो बैठी और क्रोधित स्वर में कृष्ण पर चीखी। माता यशोदा का तमतमाया मुखड़ा देखकर कृष्ण को आभास हो गया कि आज खैर नहीं। कृष्ण ओखली पर से कूदकर खिड़की से बाहर भागे। एक डंडा लेकर यशोदा मैया भी पीछे पीछे दौड़ी और माँ बेटे की दौड़ कमरों बरामदों आंगन को नापती हुई काफी देर तक जारी रही। अंत में यशोदा ने जब कृष्ण को पकड़ लिया तो नटखट ने ऐसा प्यारा सा मुखड़ा बनाया और रोना शुरू कर दिया कि यशोदा माँ भी नरम पड़ गई। बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें नहीं दंड दूंगी, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा दंड तो दूंगी। तो यशोदा ने कृष्ण को कुछ समय के लिए उसी बड़ी ओखल से बांधने का प्रयास किया, पर रस्सी जरा छोटी पड़ गई। यशोदा ने और रस्सी जोड़ी, वो भी छोटी रह गई। कई रस्सियां जोड़ी, पर हर बार रस्सी जो थी वो रहस्यमय ढंग से छोटी पड़ती रही। अंत में हताश होकर यशोदा रो पड़ी और बोली कि अरे दुष्ट, क्यों सताता है, क्या मिलता है मुझे सताकर। तब कृष्ण को यशोदा माँ पे तरस आया और वो स्वयं स्नेह पाश में बंध गए। अब आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जब नटखट बालक के रूप में आते हैं तो माँ की डांट खाते हैं। तो आप जैसे बच्चे मुझे कभी कभी मिलने पर जब ये बताते हैं कि मम्मी डांटती बहुत है, तो उन सब बच्चों के लिए आज मुझे ये कहना है कि देखिए ना, कान्हा भी तो जब बचपन में बच्चा बनकर आए थे तो माँ यशोदा की कितनी डांट खाई थी। और तो और, प्रभु श्री कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता, वो माता यशोदा ही थी जिन्होंने उन्हें स्नेह पाश में बांध लिया। तो ऐसी ऐसी बाल लीलाओं को जबकि मैं आपको सुना रही हूँ और फिर घड़ी भी देख रही हूँ तो लग रहा है कि आज थोड़ी और बात करनी चाहिए थी, पर नहीं। आज इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतनी सारी मैंने आपको बाल लीलाएं सुनाई हैं, और यकीन मानिए बच्चों, मैं यहाँ अभी ख़त्म नहीं करूँगी। मैं बाल सभा में जब अगली बार आपसे मिलूँगी तो थोड़ी और कृष्ण लीलाएँ बताऊँगी। इसलिए बच्चों, क्योंकि हमें कृष्ण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें हर दिन कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ों का सम्मान, दोस्तों की दोस्ती का मान, और दुनिया में जो लोग राक्षस समान हैं, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई गंदी आदत भी हो सकती है, क्योंकि अब तो राक्षस होते नहीं, तो आपकी गंदी आदतें, आपका आलस, आपका बिल्कुल भी डिसिप्लिन में ना होना, ये सब क्या बोलते हैं इनको, राक्षसी प्रवृत्तियां, है ना। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जब बच्चे देर से उठते हैं तो क्या बेटा तुम्हारे अंदर बहुत राक्षसी प्रवृत्ति आ रही है। तो ये प्रवृत्तियां ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा इंसान बना देती हैं। एक दिन मैंने आपको एक कविता सुनाई थी कि बूंदों का आखिर क्या था दोष, एक बूंद सीप पर गिरेगी और मोती बन जाएगी, दूसरी बूंद नाली में गिरेगी और कीचड़ कहलाएगी। तो बच्चों, आज की ये कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी संगत का भी ख्याल रखिएगा, और अगर आपको बाल लीलाएं और सुननी है तो अगले हफ्ते तक मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते चलते वो समय आ गया है जब हम और आप छोटे छोटे से कुछ संकल्प लेते हैं। आँखें बंद कर लीजिए, ये जो मुरली की धुन बज रही है इसमें शांति से बैठने का प्रयास कीजिए। कृष्ण को समझने के लिए बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है बच्चों, कभी कभी उन्हें समझने के लिए हमें आप जैसा बच्चा बनना पड़ता है। तो बस आज इस बाल सभा में पहला संकल्प यही है कि थोड़ा थोड़ा पूरे दिन मुस्कुराएंगे। आज पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेलेंगे भी, किसी दोस्त को गले लगाएंगे, माता पिता का बहुत सम्मान करेंगे और हां प्रकृति के करीब जरूर जाएंगे, क्योंकि कान्हा कभी गैया को चराने के बहाने, कभी गोपियों को छेड़ने के बहाने, कभी पेड़ पर बांसुरी बजाने के बहाने प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। और ये स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मैं वृक्षों की बात करूं तो वृक्ष में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बहुत ख्याल रखेंगे। तो अब इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ आज बाल सभा को समाप्त करें। उससे पहले आप सब आंखें खोल लीजिए, अपनी दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से आंख पर लगाइए और इसी मुरली की धुन पर शांति से अब मुझे यानी अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए। ठीक है बच्चों, अगली बार बाल सभा में फिर ऐसी ही बातें लेकर जल्द ही मुलाकात होगी। चलूँ अभी, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा स्नेह बच्चों। मिलते हैं अगली बार बाल सभा में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय था कान्हा की बाल लीलाएं। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंधानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
4: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा, जिसका विषय था कृष्ण की बाल लीलाएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मनीषा चतुर्वेदी ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टेक गुरु। इस कार्यक्रम में आज का विषय है AI। इस विषय पर विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच जानकारी देंगे। इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नेश सोनी।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे AI पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि AI क्या है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये है क्या, किसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
1: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
2: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे। इससे हमारा कोई उत्ता सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है
1: जी।
2: तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को, चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनिट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके दे देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ 2 मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय में नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
1: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
2: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नज़रों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था, आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कंप्यूटर था, जैसे टीवी था, वो एक प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे इंटरनेट है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, चलिए इंटरनेट में मैं कहता हूं कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरल है, लेकिन AI जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे, वो AI कुछ क्षणों में, कुछ सेकंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे, तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजिबल माध्यम, मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजिबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। ChatGPT आपने बोला, अब ChatGPT आने से पहले लेखकों के, कॉपी राइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपी राइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही AI है।
1: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहे, एक हाँ। बात दूसरी चीज उतना समय भी नहीं लग रहा,
2: बिल्कुल।
1: तो क्या माने AI आने से लोगों के काम छिन गए?
2: देखिए, कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद, जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क से, तो ChatGPT उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज ChatGPT में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा, ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे जरूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा, IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक हैं और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
1: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं?
2: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे, वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी, वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की अच्छे नगरीय नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे है, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीजों या तकनीक के प्रति उनकी पहुंच जो है वो और सुविधा युक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
1: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
2: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के ही जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश जाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
1: जी।
2: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, 1 घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर 1 घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है, बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए, तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स है। आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
1: वो डीपी में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
2: हाँ,
1: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी विषय भी अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
2: हाँ।
1: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट है वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
2: देखिए, आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI पाल लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा इमेजिन यू आर अ टीचर
1: जी,
2: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट
1: जी,
2: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट, उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द, अगले वाक्य, अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा। आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे पर टीचर उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
1: जी।
2: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है। जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति

0: कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है। अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज एआई पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर एआई है क्या, एआई कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की एआई पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया, इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेक गुरु जिसका विषय था एआई। जानकारी दे रहे थे विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच और इनसे बातचीत कर रहे थे रत्नेश सोनी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे। इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया, और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था।
5: उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एयरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था। 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूत का संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।
6: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
7: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
6: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: खिड़कियों पर टैक्स और चाय, एक विचित्र ऐतिहासिक सौदा। क्या आप जानते हैं कि एक प्याली अच्छी चाय के लिए ब्रिटिश प्रेम ने एक समय उनके घरों में आने वाली सूरज की रोशनी पर टैक्स लगवा दिया था। ये किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन 1784 में ये ब्रिटिश राजकोषीय प्रणाली की एक कठोर वास्तविकता बन गई थी। इस कहानी के केंद्र में थी ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी और तस्करी की एक बहुत बड़ी समस्या, जो कंपनी के मुनाफे और राष्ट्रीय खजाने दोनों को बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक चाय कंपनी के व्यापारिक खाते की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन गई थी। चाय ने कंपनी के व्यापार में उसी तरह क्रांति ला दी थी जैसे पिछली सदी में कपास ने लाई थी। हालांकि इसमें एक बड़ा पैंच था। ब्रिटिश सरकार ने चाय पर भारी शुल्क लगा दिया था, जो 79% से लेकर 127% तक था। क्या आप जानते हैं कि इन ऊंचे करों का परिणाम क्या हुआ? चूंकि चाय इतनी महंगी थी, इसलिए इंग्लैंड में पी जाने वाली आधी से अधिक चाय कंपनी के यूरोपीय प्रतिद्वंदियों द्वारा देश में तस्करी करके लाई जा रही थी। इससे कंपनी के गोदाम लाखों पाउंड महंगी चाय से भर गए थे, जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। क्या आप जानते हैं कि विलियम पिट द यंगर ने इस संकट को कैसे हल किया? उन्होंने 1784 का ऐतिहासिक कंप्यूटेशन एक्ट पेश किया। इस कानून के पीछे का तर्क सरल लेकिन साहसी था। यदि सरकार चाय पर टैक्स कम कर दे तो तस्करों का मुनाफा खत्म हो जाएगा और जनता वापस कंपनी से कानूनी चाय खरीदने लगेगी। पिट ने चाय शुल्क को 100% से घटाकर मात्र 12.5% कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के मालिकों के लिए इसमें क्या पैंच था? ब्रिटिश सरकार उस टैक्स राजस्व को पूरी तरह नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि यह राजस्व की वित्तीय स्थिति के लिए अनिवार्य था। चाय राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए पिट ने टैक्स को एक ऐसी विलासिता से हटाकर, जिसे आप पीने या ना पीने के लिए चुन सकते हैं, एक ऐसी चीज पर डाल दिया जिससे घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता था, उनकी खिड़कियां। यही कुख्यात विंडो टैक्स की उत्पत्ति थी। यह शाब्दिक रूप से रोशनी और हवा पर लगने वाला टैक्स था, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि चाय का व्यापार कंपनी और क्राउन यानी राजसत्ता दोनों के लिए लाभदायक बना रहे। क्या आप जानते हैं कि यह अदला बदली ही वह गुप्त इंजन था जिसने कंपनी के बाद के वर्षों को शक्ति दी? 1784 के इंडियन एक्ट के माध्यम से भारत में अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता का त्याग करने के बदले में कंपनी को चीन में यह विशाल व्यावसायिक अवसर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि यह कितना सफल रहा? इसने उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया। 1830 तक अकेले चाय शुल्क से ब्रिटिश खजानों को सालाना 30,00,000 पाउंड से अधिक मिल रहे थे, जो पूरे देश के राजस्व का लगभग 10वां हिस्सा था। क्या आप जानते हैं कि खिड़कियों पर लगने वाले इस अजीब टैक्स के बिना ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास अलग तरीके से लिखा गया होता? कम शुल्क के कारण चीन में चाय का व्यापार की सफलता ने वास्तव में भारत भर में कंपनी के महंगे होते जा रहे सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने में मदद की। यह इस बात की याद दिलाता है कि कंपनी का अस्तित्व अक्सर युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं से अधिक एक चायदानी में उबल रही चीज पर निर्भर करता था।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया की जानकारी। इस विषय पर जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत कर रही हैं अदिति गौड़।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति।
2: हमने पिछले अंकों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में बातचीत की, जिसमें हमने उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना, और आज का यह जो अंक रहेगा वह आधारित रहेगा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है। कुछ बच्चे होंगे जिनके मन में तैयारी करने की इच्छा भी होगी, उन्हें मार्गदर्शन भी चाहिए। हमें यह आशा है कि यह एपिसोड उनके लिए ज़रूर लाभदायी सिद्ध होगा। कर्नल साहब, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है रिक्रूटमेंट। भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं, 3 महत्वपूर्ण अंग हैं उसके, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इनमें रिक्रूटमेंट की एक प्रक्रिया होती है जो समय समय पर हमने देखा है एडवर्टाइज की जाती है समाचार पत्रों में या अगर हम उनकी वेबसाइट्स देख लें, लेकिन कई ऐसे स्तर रहते हैं जिससे रिक्रूटमेंट शुरू होता है। एक अधिकारी वर्ग के लिए अलग हो सकता है, सैनिक के लिए अलग हो सकता है, तो इन सब पर हम इस एपिसोड में चर्चा करना चाहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो उस चर्चा को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है रिक्रूटमेंट को लेकर कि सिर्फ अगर हम भारतीय थल सेना की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, तो रिक्रूटमेंट की जो शुरुआत है या रिक्रूटमेंट किस स्तर पर होती है और उसके लिए कैसी तैयारी चाहिए?
3: आदिति, इंडियन आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होता है
2: जी,
3: वो एक्चुअली 2 स्तर पे होता है। एक अधिकारी स्तर पे होता है, दूसरा जो है जवान के स्तर पे होता है। हम इन दोनों को एक एक करके
2: बिल्कुल
3: इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं जो एक अगर जवान के तौर पे अगर आप रिक्रूटमेंट में जाना चाहते हैं, जो भी जाना चाहते हैं, तो अभी एक तो इसमें एक मेजर चेंज आया है। एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम, और इसमें जो जाने वाले सोल्जर्स हैं उनको अग्निवीर कहा जाता है। ये इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं ये जानना ज़रूरी है और मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो है सर्विस जो है 4 साल के लिए है, मतलब इट इज़ अ टूर ऑफ ड्यूटी जो कि 4 साल के लिए है, जिसमें कि शुरू के 6 महीने जो है ट्रेनिंग है और 3.5 साल का जो है सर्विस का पीरियड है। और अब से जो भी रिक्रूटमेंट है वो सारा इसी के थ्रू है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में जो जवान के तौर पे भर्ती होते हैं, कुछ एक कैटेगरीज को छोड़ के, 1-2 कैटेगरी मेडिकल वगैरह को छोड़ के टेक्निकल, बाकी अदरवाइज जितनी भी जवानों की भर्ती है वो इसी स्कीम के थ्रू होती है। इसमें सर्विस जो है, जैसे ही जवान भर्ती होता है तो डे ऑफ एनरोलमेंट, जिस दिन उसका एनरोलमेंट होता है उस दिन से उसकी सर्विस शुरू हो जाती है।
2: ट्रेनिंग पीरियड इसमें
3: इंक्लूडेड है? जी हाँ, ट्रेनिंग पीरियड इसमें इंक्लूडेड है। तो 6 महीने का ट्रेनिंग है और 3.5 साल का सर्विस है। अग्निवीर जो है एक डिस्टिंक्ट रैंक है, मतलब जैसे आर्मी में जो जवान के तौर पर शुरू वाला रैंक है उससे अलग से इसको मतलब माना गया है। और 4 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो जितने अग्निवीर हैं ड्यूटी से इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है।
2: और अग्निवीर योजना सिर्फ और सिर्फ भारतीय थल सेना के लिए?
3: नहीं, ये तीनों के लिए है, थल जल नभ। तीनों सेना में जो रिक्रूटमेंट है जवान का अग्निवीर के माध्यम से ही है। और इसमें डिस्चार्ज कंप्लीट होने पे 4 साल के बाद अग्निवीर को एक सेवानिधि पैकेज मिलता है। इस अग्निवीर में से 25% जो है उनको रिटेंशन के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाती है और वो अपनी सर्विस, जैसे कि नॉर्मल 15 साल की सर्विस जो है फिर वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये मतलब एक स्कीम इस तरह से है। और ये अग्निवीर जो है, जैसे कि नॉर्मल एक सर्विसमैन होता है, ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अग्निवीर का जो ये कैटेगरी है इसमें इनको किसी तरह का ग्रेच्युटी या पेंशन या जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होती है वो या कैंटीन फैसिलिटीज एक्स सर्विसमैन का स्टेटस ये नहीं मिलता।
2: कर्नल साहब, अगर 4 साल तक रहते हैं वो तो उनको ये सारे सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं 25% है जो सैनिक के तौर पे आर्मी में या किसी भी सशस्त्र सेना में जाएंगे उनको बाकायदा ये सारी सुविधाएं मिलेंगी?
3: वो फिर वो उनकी पेंशनेबल सर्विस होगी, वो अलग से पेंशनेबल सर्विस होगी। ये एक अलग कैटेगरी है, 4 साल के लिए सर्विस टूर है जिसमें कि जवान जब जाएंगे वो 4 साल की सर्विस करके डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो सभी जो हैं 4 साल के बाद डिस्चार्ज होंगे, उसमें से फिर 25% उनकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर, उनकी अपनी वॉलंटियरशिप के ऊपर उनको वापस आर्मी में भर्ती किया जाएगा। फिर वो अपना एक नया मतलब टेन्योर शुरू करेंगे एज ए सोल्जर। और फिर वो अपना जो नॉर्मल टर्म जैसे आज होता था पहले, जैसे 15 साल की जो सर्विस होती थी सोल्जर की, जो पेंशनेबल सर्विस, वो पूरी की पूरी करेंगे।
2: और ये 15 साल 4 साल के बाद के हैं?
3: ये 15 साल 4 साल के बाद में अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं 25% में अगर आप आते हैं। इसमें जो एज लिमिट है, मतलब आपकी उम्र 17.5 साल से ऊपर होनी चाहिए और 21 साल से कम होनी चाहिए। ये रिक्रूटमेंट जो है ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे है, मतलब कि जो भी एलिजिबल हैं वो इसमें भर्ती हो सकते हैं, इसके थ्रू भर्ती हो सकते हैं।
2: कर्नल साहब, इसके लिए कोई शैक्षणिक अर्हता है?
3: इसमें जो है जो सोल्जर्स जाते हैं
2: जी,
3: देखिए उसमें क्या होता है, इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक तो सबसे पहला होता है जनरल ड्यूटी
2: जी।
3: तो जो जनरल ड्यूटी के लिए जो सोल्जर्स जाते हैं उनकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th या मैट्रिक होनी चाहिए 45% एग्रीगेट के साथ, और 33% हर सब्जेक्ट में उनके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि एक तरह से मिनिमम पास लेवल पे होने चाहिए। उसके बाद अगर ये टेक्निकल लेवल पे जाते हैं तो 10+2 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए टेक्निकल्स के लिए, और मिनिमम उसमें जो है 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में और 40% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। और अगर जो है क्लर्क या स्टोर कीपर के तौर पर अगर वो भर्ती होते हैं तो 10+2 या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम, यानी कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो सकता है, विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। और दूसरा क्या होता है, ट्रेड्समैन होते हैं
2: जी,
3: ट्रेड्समैन में मतलब जैसे कुक होते हैं, बार्बर होते हैं, तो इनके लिए दो कैटेगरी दी है, एक 10th पास की होती है, 8th पास की होती है। तो 10th पास की जो कैटेगरी में जो ट्रेड्समैन होते हैं वो सिंपल मतलब 10th पास होने चाहिए, उनका ये होना चाहिए कि 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। 8th पास के लिए भी यही है कि सिंपली वो 8th पास होने चाहिए। तो ये जो कैटेगरीज हैं जिसमें अग्निवीर जाते हैं तो उनकी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं।
2: किसी बच्चे ने जैसे मान लीजिए 8वीं कक्षा में कोशिश की, वो असफल रहा, क्या वह पुनः प्रयास कर सकता है 10वीं कक्षा में, या अगर उसने साइंस स्ट्रीम लिया है तो फिर 10+2 के बाद वो कोशिश कर सकता है अग्निवीर के लिए?
3: देखिए जो एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन ले रहा है उसको एजुकेशनल सिस्टम में अगर वो मान्य है
2: जी,
3: तो बिल्कुल जो है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो स्कूल होते हैं उससे उसने वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हासिल करी है तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, वो इनके लिए वैलिड है ये
2: जी।
3: अच्छा, जब ये अपनी सर्विस में होंगे, जैसे जब ये सर्विस कर रहे हैं
2: उन चार सालों के दौरान
3: तो जितने आर्मी में ऑनर्स एंड अवार्ड्स होते हैं
2: जी,
3: यानी कि जो लड़ाई के दौरान है,
2: जैसे PVSM या AVSM,
3: या जैसे वीर चक्र है, सेना मेडल है, या किसी भी तरह के और जो ऑनर्स हैं, अवार्ड्स हैं, वो इनके लिए एलिजिबल हैं। सर्विस के दौरान इनको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज और कैंटीन फैसिलिटीज मिलेंगी। चार साल के बाद इनको ये फैसिलिटीज लागू नहीं है, लेकिन जब सर्विस में है तब उनको ये मिलेगा। इनका जो पे स्केल है वो भी मतलब एक आम सोल्जर से अलग है। इनको क्या है, कंसोलिडेटेड कस्टमाइज पैकेज मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे इनका 30,000 का पैकेज रहेगा, सेकेंड ईयर में जो है 33,000 का रहेगा, थर्ड ईयर में 36,500 है, एंड फोर्थ ईयर में 40,000 है। इनका जो 30% है जो पैकेज है वो कंपल्सरली जो इनका सेवा निधि है उसकी तरफ कंट्रीब्यूट होगा, और उतना ही गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेंगी। तो जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपका 30,000 है तो उसमें से 9,000 आपका कंट्रीब्यूशन चला जाएगा। इट इज लाइक फंड, एक तरह से फंड है, और गवर्नमेंट भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि आपको चार साल के बाद सेवा निधि का जो पैकेज है वो मिलेगा, वो तकरीबन 10.4 लाख के करीब बन जाता है।
2: मतलब निवृत्ति के पश्चात आपको करीबन 10 लाख के आसपास का अमाउंट मिलेगा,
3: और ये नॉन टैक्सेबल है।
2: इस लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के उन युवाओं के लिए जो देश के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। कुछ समय के लिए उनको एक दिशा भी मिल जाएगी, आर्थिक रूप से भी उन्हें मजबूती प्राप्त होगी, शारीरिक रूप से तो होगी ही, मानसिक रूप से भी मिलेगी उनको मजबूती, और साथ ही अगर वो चाहें तो अपना करियर आर्मी में बना सकते हैं। हालांकि उनके परफॉर्मेंस पर, उनकी दक्षता के आधार पर उनको चुना जाएगा। कोई भी अग्निवीर जब इस योजना से बाहर निकलेगा तो उसकी उम्र 27-28 से ज्यादा नहीं होनी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी योजना है हमारे देश के युवाओं के लिए।
3: बिल्कुल सही फरमाया आपने, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड जो सोल्जर है जब वो सोसाइटी में जाएगा तो वो अपना वही डिसिप्लिन आगे बढ़ाएगा, और उससे हमारे जो पूरे समाज के लिए ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। वो अलग जगह अलग जाके जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से उसमें जो है वो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। देखा गया है कि जो आर्मी में सोल्जर्स जो होते हैं की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अलग रहती है, काफी अच्छे रहते हैं, तो इससे हमारे समाज को, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी अच्छी एक मैन पावर मिलेगी। और इसमें थोड़े से और पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जब सर्विस करते हैं तो ये 30,000 का जैसे इनका पैकेज है फर्स्ट ईयर का, उसके अलावा जो एप्लीकेबल अलाउंसेस हैं, जैसे अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में हैं, फील्ड एरिया में, तो वहाँ के जो अलाउंसेस होते हैं वो भी उनको एप्लीकेबल रहते हैं।
2: अग्निवीर जो है उनका डिप्लॉयमेंट किसी भी स्थान पर हो जाएगा जैसे कि एक आम सैनिक का होता है?
3: बिल्कुल, 100% इनका डिप्लॉयमेंट किसी भी जगह पे किसी भी लोकेशन में हो सकता है, फौज में होता है, और उनको वहाँ पे जाने के लिए बाध्य रहते हैं वो उनको करना पड़ेगा। इस दौरान जो है इनका एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी रहता है जो कि नॉन कंट्रीब्यूटरी, मतलब उसके लिए अग्निवीर को खुद कुछ नहीं देना होता। 48 लाख का गवर्नमेंट ने इनके लिए कवर रखा है कि इस दौरान अगर उनको कुछ होता है, मतलब उनके माता पिता को ये क्लेम वो कर सकते हैं। अगर खुदा ना खासा किसी की अगर डेथ हो जाती है इसमें, तो उसको एक वन टाइम कंपनसेशन है। वो कंपनसेशन का डिपेंड करता है कि किस, तीन कैटेगरीज होती हैं, XYZ, मतलब एक कैटेगरी ऐसी होती है कि जिसमें कि जो कि नॉन एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विसेज होती है। जैसे कोई जवान है वो अपनी नौकरी करते समय बीमार पड़ गया और नेचुरल कॉज से उसकी डेथ हो गई जिसमें कि मिलिट्री सर्विसेज को एट्रिब्यूटेबल यानी कि एट्रिब्यूटेबल नहीं है तो वो एक्स कैटेगरी में आता है। इसी तरह से वाई और जेड कैटेगरी वो होती है वाई कैटेगरी की जिसमें सपोज कोई आर्मी के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, वो वाई कैटेगरी में आता है जिसमें कि मतलब एट्रिब्यूटेबल होता है लेकिन वो एक्सीडेंट होता है। तीसरा कैटेगरी होती है जब आप किसी दुश्मन से या टेररिस्ट से या इंसर्जेंट से लड़ रहे हैं या फ्लड रिलीफ ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो उस दौरान अगर डेथ होती है तो उसको जेड कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये तीनों कैटेगरीज जो होती हैं, जिस तरह से उसकी डेथ होती है उसके अलग अलग कंपनसेशंस हैं। जैसे अगर वाई और जेड जिसमें कि एट्रिब्यूटेबल मिलिट्री सर्विसेज है, अगर उसमें किसी की डेथ होती है तो उसको 48 लाख का इंश्योरेंस कवर है, साथ में वन टाइम कंपनसेशन है 44 लाख का है। एंड इसके अलावा जो चार साल में अगर जैसे उसने 2 साल की सर्विस में ऐसा हुआ है तो बाकी 2 साल का उसको पेमेंट और सेवानिधि का जो उसका कंपोनेंट है वो पूरा मिलता है, उसके फैमिली को मिलता है और इंटरेस्ट के साथ। दूसरी हमने जो कैटेगरी बताई थी जो कि एक्स कैटेगरी है जिसमें कि मिलिट्री सर्विसेज के लिए वो एट्रिब्यूटेबल नहीं है, नेचुरल कॉज से जिसकी डेथ हुई एक्सीडेंट में होती है, तो उसमें उनको वन टाइम एक्सक्रेश है वो नहीं मिलता,
2: 44 लाख का नहीं मिलेगा, 48 लाख का इंश्योरेंस है, 48 लाख
3: का मिलेगा। उसके अलावा जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है सेवानिधि में वो विद इंटरेस्ट मिलेगा।
2: और ये तीनों सेनाओं की बात कर रहे हैं आप?
3: जी जी,
2: तीनों सेनाओं से संबंधित अग्निवीर
3: जो अग्निवीर स्कीम की बात कर रहे हैं वो तीनों के लिए लागू होती है। अब जैसे 4 साल के बाद जब वो सर्विस खत्म करते हैं उनको एक सेवानिधि पैकेज मिलता है
2: जी।
3: उसके अलावा जो है एक गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट देगी जिसको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट बोला जाता है, जिसमें कि उन्होंने सर्विस के दौरान इन डिटेल लिखा जाएगा कि उन्होंने क्या क्या किया
2: जी,
3: किस तरह के उन्होंने स्किल्स जो है हासिल करी, उसपे उनका कॉम्पिटेंसी लेवल यानी कि कितना अच्छा लेवल रहा। तो ये एक कम्प्लीट
2: एक तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड रहेगा
3: जी, एक तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड है, बट डिटेल में है काफी जो है वो बनाया जाएगा। जैसे 10th में जो आए थे
2: जी,
3: उनको जो है 12th पास का सर्टिफिकेट मिलेगा
2: जी। मतलब बहुत सोची समझी योजना है कि जो हमारे अग्निवीर हैं उनको किसी तरह से भी शैक्षणिक आर्थिक या अगर व्यवसायिक प्रोफेशनल हानि ना हो, और वो जब 4 साल की सेवा के बाद निवृत्त हो तो एक सशक्त नागरिक के साथ साथ एक इंसान के रूप में अपना योगदान दे पाए, अगर आर्मी में जा रहे हैं तो वहाँ और अगर समाज को जा रहे हैं तो वहाँ। कर्नल साहब आपने बताया कि उनका एक पूरा एक तरह से जो रिपोर्ट कार्ड है वो उनके 4 साल की सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाएगा, तो उनको क्या कहीं प्रेफरेंस दी जाएगी?
3: जो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे
2: जी
3: अग्निवीर के लिए सीट्स जो हैं रिजर्व करी हैं
2: जी,
3: जैसे कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं उसमें CISF है, CRPF है, BSF है, तो इसमें लेटरल एंट्री के लिए सीट्स रिजर्व करने का प्रावधान रखा है
2: जी।
3: इसके साथ साथ काफी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने पुलिस फोर्सेस में और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी रिजर्वेशन देने का घोषणा करी है।
2: यानी 25% तो सशस्त्र सेना के जो मुख्य अंग हैं उसके लिए हैं, लेकिन उसके अलावा जो और 75% हैं उनके लिए गुंजाइश बनती है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या उससे तर जो पुलिस सेवाएं हैं उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास।
3: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ट्रेन्ड मैन पावर है, तो इसी के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी पसंद करेंगे कि उनको मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने के लिए। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए जो है रिजर्वेशंस की स्कीम्स जो है अनाउंस करी हैं। इसके बारे में डिटेल्स जो है आपको उनकी साइट्स पे जाके पता चल सकती हैं। दूसरा एक और बात यह है कि जो ये अग्निवीर स्कीम के बारे में हमने आपको बताया है, इसमें जो भी बच्चे जो इच्छुक हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, जो भी इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो joinindianarmy.nic साइट है
2: जी,
3: उस पे जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से होता है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही होती है। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ध्यान से पढ़िए। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पहले से आप अपने पास तैयार करके रखिए। बारीक मिस्टेक्स निकलती हैं, हमने देखा है कि जैसे आपने अपना नाम आधार कार्ड में कुछ लिखा है, आपके पिताजी का नाम आधार कार्ड में कुछ लिखा है, लेकिन जो आपके सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और हो जाता
2: नहीं
3: है
2: हो रहा,
3: जैसे किसी का नाम है RK सिंह और आधार कार्ड में उन्होंने लिखाया हुआ राम कुमार सिंह लिखाया हुआ है और उनके जो सर्टिफिकेट है उसमें RK सिंह लिखा हुआ है, तो वो मान्य नहीं होता है और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो कि हमने आम देखा है कि ऐसा होता है। इसी तरह से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी इंश्योर करिए कि वो करेक्ट लिखा हो और सारे डॉक्यूमेंट्स में एक ही हो। आपका होम एड्रेस भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और हर जगह एक ही होना चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आप एक अपना प्रॉपर ईमेल आईडी बनाइए, अपना मोबाइल नंबर भी जो है प्रॉपर रखिए जिसको आप चेंज मत करिए, क्योंकि जितने आपके मैसेजेस आएंगे, जितने आपके रिक्रूटमेंट के मैसेजेस आएंगे वो सारे के सारे उसी पे आएंगे, आपके ईमेल पे ही एडमिट कार्ड भी आएगा, बाकी चीजें भी आएंगी। तो ये जो चीजें होती हैं बहुत छोटी छोटी बारीक होती हैं, लेकिन कई बार इनके कारण रिजेक्शन हो जाता है। उसमें ध्यान से देखिए कि उसमें उन्होंने फोटो कितना बड़ा मांगा है, कितने KB का मांगा है, नहीं तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ये तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन की बात है। इसके बाद जैसे रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं,
2: बिल्कुल मैं इसी पर आ रही थी जी,
3: उसके लिए भी मतलब हमको पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिटन टेस्ट में, वो ऐसे नहीं होते कि वो आप आंसर नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे उसी लेवल के पूछे जाते हैं, जैसे कि एक आम बच्चे से जो 10th पास
2: है
3: अपेक्षाएं रहती हैं वही पूछा जाता है। दूसरा ये मैं एक और बात बोलूंगा यहाँ पे कि जो और रिक्रूटमेंट का सिस्टम होते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, हर चीज ऑनलाइन है, तो आपको किसी भी गलत आदमी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको बोलता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो वो नहीं हो सकता है
2: जी।
3: ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हैं, तो इसमें आप अपना पूरा ध्यान अपने डॉक्यूमेंटेशन और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगाइए एंड मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी 100% आपका सिलेक्शन होगा।
2: कई बार हम लोग आम नागरिक सुनते हैं कि आर्मी में कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए या चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, तो अग्निवीर के लिए भी ये क्राइटेरिया क्या लागू रहेंगे?
3: जी हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है उनकी ना कैटेगरीज होती
2: जी।
3: है, ये कैटेगरीज हमारे प्रादेशिक एरिया के हिसाब से अलग अलग हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग हैं, उसके बाद प्लेन्स के लिए अलग हैं। तो जब आप इसमें जाएंगे तो डिटेल में इनके बारे में दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है कि जब आप जैसे ही इस साइट में जाएंगे joinindianarmy.net में, तो वो आपको बकायदा एक फॉर्म खोलते हैं जिसमें कि वो आपके एलिजिबिलिटी के लिए जब आप अपनी पूरी डिटेल भर देंगे तो वो अपने आप आपको बता देगा आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और कंप्लीट डिटेल्स कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, उसके अलावा और क्या क्या मेडिकल क्राइटेरिया, वो सभी कुछ दिया हुआ है।
2: कन्हे साहब, यानी कोई भी हमारा युवा जो इच्छुक है अग्निवीर बनने के लिए, तो वो जो आपने साइट बताई है उस पर जाकर बारीक से बारीक डिटेल भी जान सकता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल ललती, ये बिल्कुल सही बात है, वो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर वो चाहें तो उनके आसपास जो रिक्रूटमेंट ऑफिस होते हैं उसमें भी जा सकते हैं, वो उनकी पूरी मदद करते हैं, उनको पूरी जानकारी देते हैं।
2: मान लीजिए किसी की इच्छा है कि वो अग्निवीर बनना चाहे, लेकिन वो एयरफोर्स के लिए बनना चाहे या आर्मी के लिए बनना चाहे या नेवी के लिए, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है क्या, या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, या उसने किस तरह से परफॉर्म किया है, किस तरह से होता है इनमें?
3: तीनों की जो रिक्रूटमेंट है वो अलग अलग होती है।
2: अच्छा,
3: आर्मी नेवी एयरफोर्स की तीनों की अलग अलग अपने अपने रिक्रूटमेंट्स हैं और उनके कॉमन फैक्टर्स तो सेम रहते हैं, लेकिन जो उनके सर्विस के हिसाब से भी कुछ क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है, तो उसमें उनको सबको अलग अलग साइट पे जाके ही पता चलेगा उसके बारे में।
2: मैं श्रोताओं के लिए एक बार फिर बता दूं कि joinindianarmy.nic.in joinindianarmy.nic.in पर जाकर वो अधिक और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं और ये काफी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति, जय हिंद श्रोताओं।
4: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है अदिति गौड़ को, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय था भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया। जानकारी दे रहे थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत कर रही थी अदिति गौड़।
5: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे? इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया। और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था। 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया जिससे नूत का संकट पैदा हुआ जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे।
6: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML, जमीन से रक्षा की गति की कहानी।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। पिछले एपिसोड्स में दादू और रुचि यात्रा पर गए थे, जहां रुचि ने विशाल युद्धपोतों, अत्याधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक और समुद्री सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज उनकी यात्रा समुद्र से आगे बढ़कर वापस धरती पर आ पहुंची है। आज रुचि जानेगी उस संस्था की कहानी जिसने भारत के विकास, रक्षा और अधोसंरचना निर्माण को नई गति दी। तो चलिए दादू पोती के संवादों के साथ सुनते हैं BEML की प्रेरक गाथा।
1: दादाजी, गोवा की यात्रा बड़ी यादगार थी। बहुत थक गई हूँ, अब घर में आकर बड़ा सुकून लगा है। दादू, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न नए नए तैयार कर दिए हैं।
2: अच्छा बेटा, देखो प्रश्न तो तुम्हारे मन में बहुत तैयार होते रहते हैं। मुझे जरा पहले एक गिलास पानी पी लेने दो।
1: हाँ दादू, ये लीजिए आपका पानी।
2: बेटा, यही तो यात्रा का सबसे बड़ा लाभ होता है। इन यात्राओं से जितना सीखो, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और बढ़ती जाती है।
1: दादू, GSL में हमने देखा कि जहाज बनाना कितना कठिन काम है। हजारों पुर्जे, सैकड़ों इंजीनियर और वर्षों की मेहनत लगती है।
2: बिल्कुल सही, कोई भी जहाज बनाना आसान काम नहीं है।
1: लेकिन दादू, समुद्र के अलावा जमीन पर भी तो देश के दूसरे संस्थानों के सामने ऐसी ही बड़ी बड़ी चुनौतियां होती होंगी।
2: हाँ बेटा, पहाड़ों में सड़कें बनानी हो, खदानों से खनिज निकालना हो, सेना के लिए भारी वाहन तैयार करने हो या मेट्रो रेल चलानी हो, इन सभी कार्यों के लिए खास संसाधनों की जरूरत होती है।
1: और वो काम करती है BEML। सही कहा ना आपकी रुचि ने।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML का नाम सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसका योगदान बहुत बड़ा है रुचि बेटा। रुचि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अब तुम मुझसे इसी विषय पर जानना चाहती हो?
1: दादू, आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। मेरे मन में आज BEML के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो अब आप मुझे इसी बारे में विस्तार से बताएंगे।
2: तो सुनो बेटा, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया था, क्योंकि उस समय इसका मुख्य कार्य भारी अर्थ मूविंग मशीनें बनाना था। लेकिन समय के साथ संस्था का कार्य क्षेत्र इतना बढ़ गया कि आज ये आधिकारिक रूप से BEML लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। फिर भी BEML का ऐतिहासिक विस्तार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ही माना जाता है।
1: दादू, इसका इतिहास कितना पुराना है और इस संस्थान की स्थापना कब हुई, ये मैं आपसे विस्तार से जानना चाहती हूँ।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML की स्थापना 11 मई 1964 को हुई थी। उस समय भारत एक युवा राष्ट्र था और अपनी औद्योगिक क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा था।
1: दादू, तब देश की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी?
2: उस वक्त देश को भारी मशीनों की जरूरत थी बेटा। खदानें बढ़ रही थीं, बड़े बड़े बांध बन रहे थे, उद्योग विकसित हो रहे थे और अधोसंरचना निर्माण को गति मिल रही थी। लेकिन अधिकांश भारी मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी।
1: यानी तब हमारा भारत आत्मनिर्भर नहीं था?
2: पूरी तरह तो नहीं, इसलिए सरकार ने ऐसी संस्था की कल्पना की जो देश में ही भारी निर्माण और खनन उपकरण बना सके।
1: अच्छा, तभी इस सोच के साथ ही BEML की शुरुआत हुई होगी।
2: बिल्कुल।
1: दादू, शुरुआती दिनों में BEML क्या बनाती थी?
2: सबसे पहले खनन और निर्माण क्षेत्र के लिए भारी मशीनें बनाई जाने लगी।
1: किस तरह की भारी मशीनें दादू, और ये भारी मशीनें काम क्या करती थी?
2: देखो बेटा, बुलडोजर, डंप ट्रक, एक्सकेवेटर, ग्रेडर और अनेक प्रकार के अर्थ मूविंग उपकरण।
1: दादू, ये भला कैसा नाम हुआ, अर्थ मूविंग उपकरण?
2: अरे बुद्धू, मतलब ऐसी मशीनें जो मिट्टी, पत्थर, भारी सामग्री को हटाने, खोदने या स्थानांतरित करने का काम करती हैं।
1: तभी तो इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया होगा।
2: बिल्कुल सही समझा
1: दादू। खदानों में इन मशीनों की क्या भूमिका होती है?
2: देखो बेटा, कल्पना करो, किसी कोयला खदान से लाखों टन मिट्टी हटानी है, क्या ये काम मजदूरों के हाथों से संभव होगा?
1: अरे ना बाबा, उसमें तो जाने कितने साल लग जाएंगे दादाजी।
2: बस यही कारण है कि इसके लिए विशाल डंप ट्रक और एक्सकेवेटर काम में आते हैं। ये मशीनें कुछ ही समय में वो काम कर सकती हैं जिसके लिए सैकड़ों लोगों को कई दिन लग जाएं।
1: मतलब दादू, हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक उद्योगों की रीढ़ यही मशीनें हैं।
2: हाँ बेटा, यदि खदानें ना चलें तो कोयला, लौह अयस्क और अनेक खनिज तत्व और पदार्थ देश के उद्योगों तक नहीं पहुँच पाएंगे।
1: और सड़क निर्माण में BEML का क्या योगदान होता है?
2: वहाँ भी इनका महत्व कम नहीं है बेटा। पहाड़ काटकर सड़क बनानी हो, सुरंग निर्माण करना हो या बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हो, हर जगह भारी मशीनों की जरूरत तो होती है
1: दादू। तो जब भी हम किसी नए राजमार्ग पर चलते हैं, तब उसके पीछे भी ऐसी ही संस्थाओं का योगदान होता है।
2: बिल्कुल, विकास केवल दिखाई देने वाली सड़क का नाम नहीं है बेटा, उसके पीछे वर्षों की योजना, तकनीक और मशीनों की मेहनत होती है।
1: अच्छा दादू, आप ये बताइए ना कि आज BEML का नाम किस क्षेत्र में ज्यादा सुनाई देता है?
2: रक्षा के क्षेत्र में बेटा, क्योंकि समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। देश को रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी समाधान चाहिए थे।
1: दादू, आपने बताया था कि शुरुआत में BEML खनन और निर्माण कार्यों के लिए मशीनें बनाती थी, फिर इसका रक्षा क्षेत्र में जुड़ाव कैसे हुआ?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। जैसे जैसे भारत अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ा, वैसे वैसे सेना के लिए खास तरह के वाहनों और उपकरणों की जरूरत महसूस हुई। तब BEML ने भी रक्षा क्षेत्र में कदम रखा।
1: विशेष वाहन और उपकरण किस तरह के दादू?
2: देखो बेटा, सेना को ऐसे वाहन चाहिए होते हैं जो केवल सामान्य सड़कों पर ही नहीं, बल्कि रेगिस्तान की तपती रेत, हिमालय की बर्फीली चोटियों, दलदली इलाकों और घने जंगलों में भी आसानी से चल सके। कई बार उन्हें भारी तोपें, टैंक, मिसाइलें और अन्य सैनिक सामग्री भी ढोनी पड़ती है।
1: यानी सेना के वाहन साधारण ट्रकों जैसे नहीं होते दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, उन्हें बेहद मजबूत, भरोसेमंद और कठिन परिस्थितियों में काम करने योग्य बनाना पड़ता है। BEML ने ऐसे अनेक विशेष सैन्य वाहनों और सहायक उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: दादू, ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा।
2: निश्चित रूप से, एक सामान्य वाहन और सैन्य वाहन में बहुत अंतर होता है बेटा।
1: दादू, सेना के वाहनों को सामान्य वाहनों से इतना अलग क्यों बनाया जाता है?
2: क्योंकि बेटी, सेना का काम केवल शहरों की सड़कों पर चलना नहीं होता। कभी उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ों पर जाना पड़ता है, कभी तपते रेगिस्तान में, कभी घने जंगलों के बीच।
1: मतलब जहाँ सामान्य वाहन शायद काम ही ना कर पाए।
2: हाँ बेटा, कई बार तो सड़कें भी नहीं होती, फिर भी सैनिकों तक रसद, हथियार और आवश्यक सामग्री पहुंचानी होती है। इसीलिए सैन्य वाहनों को अधिक शक्तिशाली, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जाता है।
1: तो BEML ऐसे ही विशेष वाहन बनाती होगी दादाजी?
2: हाँ बेटा, BEML सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रकार के विशेष वाहनों, भारी परिवहन प्रणालियों और सहायक रक्षा उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।
1: यानी देश की सुरक्षा में भारत के संस्थान इस तरह अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, इन संस्थानों की उन्नत तकनीकों से बने स्वदेशी उपकरण और वाहन राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं।
1: दादू, आपने एक बार एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर का नाम लिया था।
2: हाँ हाँ बेटा, जब कोई विमान हवाई अड्डे पर खड़ा होता है तो उसे सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष वाहन की आवश्यकता होती है।
1: दादू, क्या ये विमान खुद से नहीं जा सकता?
2: कुछ परिस्थितियों में नहीं, लेकिन तब ऐसे ट्रैक्टर उपयोग में लाए जाते हैं बेटा।
1: और वे भी BEML ही बनाती है?
2: हाँ, ये संस्था कई प्रकार की विशेष प्रयोजन मशीनें बनाती रही है।
1: दादू, BEML मेट्रो से भी जुड़ी है?
2: हाँ बेटा, जब भारत में आधुनिक मेट्रो प्रणालियों का विस्तार शुरू हुआ तब मेट्रो कोच निर्माण की आवश्यकता तेजी से बढ़ी।
1: फिर
2: BEML ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और मेट्रो कोच निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: यानी केवल खदानों की मशीनें ही नहीं, यात्रियों को ले जाने वाले कोच भी।
2: यही तो BEML की सबसे बड़ी विशेषता है बेटी। एक और ये खनन और निर्माण कार्यों के लिए भारी मशीनें बनाती है, तो दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र के लिए विशेष वाहन और रेल तथा मेट्रो के लिए कोच भी तैयार करती है।
1: दादू, सच कहूँ ना तो अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि कितना विश्वसनीय है। आखिर एक संस्था इतने अलग अलग क्षेत्र में काम कैसे कर सकती है दादाजी?
2: इसका उत्तर है इंजीनियरिंग क्षमता।
1: मतलब?
2: जब किसी संस्था के पास डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था हो तो वो अलग अलग क्षेत्रों में भी सफल हो सकती है।
1: तो BEML केवल उत्पाद नहीं बनाती बल्कि तकनीकी ज्ञान भी विकसित करती है।
2: बिल्कुल बेटा, किसी मशीन को बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके पीछे वर्षों का अध्ययन, अनुसंधान और परीक्षण छिपा हुआ होता है।
1: मतलब पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी?
2: हाँ, सबसे पहले इंजीनियर मशीन की आवश्यकता को समझते हैं, फिर उसका डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद मॉडल बनाया जाता है और अनेक प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मशीन कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी तरह काम करेगी।
1: यानी हर मशीन के पीछे बहुत सारी वैज्ञानिक सोच होती है।
2: हाँ बेटा, BEML के विशेषज्ञ लगातार नई तकनीकों पर काम करते रहे हैं। वे मशीनों को अधिक सुरक्षित, अधिक शक्तिशाली और अधिक ईंधन कुशल बनाने का प्रयास करते रहते हैं।
1: तो इसका लाभ देश को भी मिलता होगा?
2: निश्चित रूप से बेटा, जब तकनीक देश में विकसित होती है तो विदेशी निर्भरता कम होती है, लागत घटती है और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर समाधान तैयार किए जा सकते हैं।
1: अब समझ में आया दादू कि किसी संस्था की असली ताकत केवल उसके कारखानों में नहीं बल्कि उसके ज्ञान और नवाचार में भी होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, यही ज्ञान और नवाचार किसी संस्था को समय के साथ आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा दादू, क्या इनके पास इनका अपना रिसर्च सेंटर भी है?
2: हाँ हाँ बेटा, नई तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ किसी भी आधुनिक संस्था का आधार होती हैं।
1: और वहाँ किस तरह की रिसर्च और निर्माण होता होगा?
2: वहाँ पे बेटा नई मशीनों के मॉडल तैयार किए जाते हैं, पुराने डिजाइन सुधारे जाते हैं, ईंधन दक्षता बढ़ाने पर बहुत काम होता है और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीक विकसित की जाती है।
1: यानी प्रयोगशाला में जन्म लेने वाला विचार बाद में वास्तविक मशीन बन जाता है दादाजी।
2: ठीक कहा बेटा, एकदम ठीक।
1: दादू, आज की कहानी से मुझे एक बात समझ में आ रही है।
2: और वो क्या है?
1: वो बात ये है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं बल्कि उसके उद्योगों और तकनीकी संस्थानों से भी तय होती है।
2: एकदम सही कहा बेटा तुमने। यदि मशीनें, उपकरण और तकनीक अपने देश में विकसित हों तो राष्ट्र अधिक आत्मनिर्भर बनता है।
1: और BEML उसी आत्मनिर्भरता की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, बातें करते करते पता ही नहीं चला कितना लंबा सफर तय हो गया।
2: हाँ बेटा, और देखो बाहर का नजारा भी लगातार बदल रहा है।
1: अरे दादू, उधर देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। लगता है कोई सड़क या पुल बनाया जा रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा। देश के विकास की कहानी केवल लक्ष्यों और योजनाओं में नहीं लिखी जाती बल्कि ऐसी मशीनों के पहियों और इंजनों की शक्ति से भी आगे बढ़ती है।
1: दादू, तो क्या ऐसी परियोजनाओं में भी BEML की मशीनें उपयोग होती हैं?
2: हाँ बेटा, सड़क निर्माण, खनन, औद्योगिक परियोजनाएं और अनेक बड़े निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले भारी उपकरणों के निर्माण में BEML ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: दादू, मतलब जब हम कोई नया राजमार्ग, सुरंग या औद्योगिक क्षेत्र बनते हुए देखते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं ऐसी ही संस्थाओं की मेहनत भी होती है।
2: बिल्कुल सही बेटा।
1: उधर तो देखिए,
2: हाँ।
1: दूसरी पटरी पर एक बहुत लंबी मालगाड़ी जा रही है।
2: हाँ हाँ, और ध्यान से देखो उसके डिब्बों पर क्या रखा है, देखो। हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे थे ना।
1: अरे हाँ दादू, ये तो बहुत बड़े बड़े वाहन लग रहे हैं, कुछ तो सेना के वाहनों जैसे दिखाई दे रहे हैं दादाजी।
2: तुम्हारी नजर तेज होती जा रही है बेटा।
1: वो तो है दादू। अच्छा ये बताइए ना, क्या ऐसे भारी सैन्य वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल के माध्यम से ही पहुँचाया जाता है?
2: हाँ हाँ, अक्सर जब सेना को बड़ी संख्या में वाहन, उपकरण या कोई अन्य सामग्री दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचानी होती है, तब रेल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दादू, मुझे तो सोचकर ही बहुत रोमांच हो रहा है कि किसी वाहन की यात्रा कारखाने से शुरू होकर देश की सीमाओं तक कैसे पहुंचती होगी,
2: और उस यात्रा के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम छिपा होता है बेटा। ये मत भूलना, डिजाइनर, इंजीनियर, तकनीशियन, परीक्षण विशेषज्ञ और उत्पादन कर्मी।
1: ये तो है दादाजी। अच्छा दादू, जब कोई नया सैन्य वाहन बनाया जाता है तो क्या उसे सीधे सेना को सौंप दिया जाता है?
2: नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
1: तो फिर?
2: देखो, सबसे पहले इसकी जरूरत को समझा जाता है। सेना बताती है कि उसे किस प्रकार का वाहन चाहिए, कहाँ उपयोग होना है, कितना भार उठाएगा, किस परिस्थितियों में कितना काम करेगा।
1: पर दादू, ऐसा तो जहाज बनाने के पहले भी किया जाता है ना?
2: हाँ हाँ, किसी भी वाहन या तकनीकी उपकरण के पहले उसकी जरूरत क्यों होगी, कैसे उसका उपयोग होगा, ये जानना जरूरी होता है बच्चे।
1: फिर इंजीनियर उसका डिजाइन तैयार करते होंगे।
2: हाँ, उसके बाद मॉडल तैयार होता है, फिर परीक्षणों का लंबा दौर चलता है।
1: परीक्षण? कैसे परीक्षण दादू?
2: देखो बेटा, कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पर, कभी गर्म इलाकों में, कभी भारी वजन के साथ, और कभी लगातार कई घंटों तक चलाकर।
1: ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वाहन हर परिस्थिति में काम करेगा।
2: हाँ, रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीयता सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बच्चे।
1: दादू, आपने गौर किया, जब भी हम किसी बड़े संस्थान के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बात बार बार सामने आती है।
2: क्या बात सामने आती है बेटा?
1: गुणवत्ता दादाजी।
2: क्योंकि गुणवत्ता के बिना तकनीक अधूरी है।
1: और केवल मशीन बना लेना ही पर्याप्त नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं है, मशीन सुरक्षित हो, टिकाऊ हो और लंबे समय तक भरोसेमंद ढंग से काम करे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: तभी तो सेना और रेलवे जैसी संस्थाएं किसी उपकरण पर भरोसा कर पाती हैं दादाजी।
2: एकदम सही कहा बेटा।
1: दादू, BEML का योगदान केवल रेलवे तक ही सीमित नहीं है।
2: हाँ बेटा, भारत में रेल परिवहन के आधुनिकीकरण की यात्रा में

0: ऐसी संस्थाएं ना होती तो देश में विकास कैसे होता? क्या तब हमें हर भारी मशीन विदेशों से खरीदनी पड़ती दादाजी?
1: काफी हद तक हाँ, और इससे लागत भी बढ़ती, समय भी अधिक लगता और तकनीकी निर्भरता भी बढ़ती।
0: मतलब आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं है दादाजी, बल्कि आज की जरूरत है।
1: जब देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मशीनें, वाहन और तकनीक स्वयं विकसित करता है, तब उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और क्षमता भी बढ़ती है।
0: अब समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की चर्चा में ऐसे संस्थानों का नाम क्यों लिया जाता है।
1: क्योंकि ये संस्थान केवल उत्पाद नहीं बनाते बेटा, बल्कि राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करते हैं।
0: दादू, आपने BEML के वर्तमान के बारे में तो बहुत कुछ बताया मुझे, लेकिन क्या ये संस्था भविष्य की तकनीकों पर भी काम कर रही है?
1: अरे बेटी, यही तो सबसे रोचक हिस्सा है। आने वाले वर्षों में परिवहन, रक्षा और निर्माण की दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है।
0: मतलब BEML की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दादाजी?
1: बिल्कुल नहीं बेटा, BEML की कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि अब बात होगी भविष्य की नई तकनीकों की, आधुनिक निर्माण की और आत्मनिर्भर भारत के अगले कदमों की।
0: दादू, क्या तकनीक सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है?
1: हाँ बेटा, आज से कुछ दशक पहले जिन मशीनों को अत्याधुनिक माना जाता था, आज उनसे कहीं अधिक उन्नत प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं। अब मशीनों में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी जोड़ी जा रही है।
0: बुद्धिमत्ता मशीनों में?
1: हाँ, आज कई आधुनिक मशीनों में ऐसे यंत्र तंत्र लगाए जा रहे हैं जो उनके प्रदर्शन पर लगातार नजर रखते हैं। किसी खराबी की संभावना हो तो पहले ही संकेत दे देते हैं।
0: यानी समस्या आने से पहले ही उसका पता चल सकता है।
1: बिल्कुल, इससे समय भी बचता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है।
0: तो क्या दादाजी, भविष्य में रक्षा क्षेत्र के वाहन भी और अधिक आधुनिक हो जाएंगे?
1: निश्चित रूप से, दुनिया भर में ऐसे वाहनों पर काम हो रहा है जो कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके, कम रखरखाव मांगे और अधिक सुरक्षित हो।
0: और दादाजी, भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: हाँ हाँ बेटा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही है कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक विकसित करें और लगातार उसे बेहतर बनाते रहें।
0: मतलब केवल विदेशी तकनीक खरीदना ही समाधान नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, वास्तविक शक्ति तब आती है जब तकनीक का ज्ञान भी अपने देश में विकसित हो रहा हो बेटा।
0: दादू, जब भी हम किसी संस्थान की कहानी सुनते हैं, वहाँ हजारों लोग काम करते दिखाई देते हैं।
1: और यही किसी भी बड़े संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसके लोग,
0: यानी इंजीनियर, तकनीशियन, डिजाइनर और वैज्ञानिक।
1: कोई नई मशीन की रूपरेखा तैयार करता है तो कोई उसके पुर्जे बनाता है, कोई परीक्षण करता है तो कोई गुणवत्ता की जांच करता है।
0: एक मशीन के पीछे सैकड़ों हाथ और हजारों घंटों की मेहनत छिपी होती है दादाजी।
1: शाबाश मेरी बच्ची, एकदम सही कहा तुमने।
0: दादू, अगर कोई स्टूडेंट आज का ये कार्यक्रम सुन रहा हो और भविष्य में ऐसे संस्थान में काम करना चाहे, तो उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जरा ये भी बता दीजिए।
1: देखो बेटा, सबसे पहले उसे जिज्ञासु बनना होगा।
0: जिज्ञासु? वो भला कैसे?
1: जैसे कि मेरी प्यारी पोती रुचि है, है ना? उसे तुम्हारी तरह ही हर मशीन को देखकर ये पूछना होगा कि ये कैसे काम करती है, हर नई तकनीक को समझने की कोशिश करना, विज्ञान और गणित से दोस्ती करना।
0: क्या दादू, और मेहनत?
1: वो तो सबसे जरूरी है बेटा, बड़े सपनों को साकार करने के लिए निरंतर सीखना पड़ता है।
0: तभी तो कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा ना।
1: हाँ बिल्कुल।
0: दादू, एक बात सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है।
1: किस बात का आश्चर्य बेटा?
0: वो ये कि जब हम किसी मेट्रो में सफर करते हैं ना दादाजी, या किसी नई सड़क पर चलते हैं, या समाचारों में सेना के आधुनिक वाहनों को देखते हैं, तब हम शायद ही कभी सोचते होंगे कि इनके पीछे कितनी संस्थाओं और कितने लोगों की मेहनत छिपी होती है।
1: वास्तव में देश के लिए निर्माण का कार्य विशाल यज्ञ की तरह होता है। उसमें कोई वैज्ञानिक अपना ज्ञान देता है, कोई इंजीनियर अपनी कल्पना, कोई तकनीशियन अपना कौशल और कोई श्रमिक अपना परिश्रम,
0: और तभी कोई बड़ा काम पूरा हो पाता है दादाजी।
1: हाँ बेटा, सोचो यदि खदानों से खनिज ना निकले तो कारखाने कैसे चलेंगे। यदि भारी मशीनें ना हो तो बड़े पुल, सड़कें और सुरंगें कैसे बनेंगी।
0: सो तो है।
1: और यदि रक्षा उपकरणों की आवाजाही के लिए उपयुक्त वाहन ना हो तो सेना की तैयारी कैसे मजबूत होगी।
0: दादाजी, यानी विकास और सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: हाँ बेटा, और BEML जैसी संस्थाएं इन दोनों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है।
0: दादू, क्या BEML के कर्मचारियों को ये एहसास होता होगा कि उनका काम देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है।
1: मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि अवश्य होता होगा, क्योंकि जब कोई इंजीनियर किसी मशीन का डिजाइन बनाता है तब वो केवल एक उत्पाद नहीं बना रहा होता बल्कि देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा होता है।
0: और जब कोई तकनीशियन किसी पुर्जे को सावधानी से तैयार करता है
1: तब वो भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है।
0: वाह दादाजी, इसका मतलब हर छोटा काम भी महत्वपूर्ण होता है।
1: यही तो सबसे बड़ी सीख है बेटा, कोई योगदान छोटा नहीं होता, बड़ी उपलब्धियाँ हजारों छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर बनती हैं।
0: दादू, आप अक्सर कहते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है।
1: हाँ हाँ, मैं आज भी कहता हूँ और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
0: तो क्या आने वाले समय में ऐसे संस्थानों की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधों पर होगी।
1: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले वर्षों में नई तकनीकें विकसित होंगी, नई चुनौतियाँ सामने आएंगी और नए समाधान भी खोजने होंगे। इसके लिए जिज्ञासु, मेहनती और नवाचार करने वाले युवाओं की आवश्यकता होगी।
0: यानी आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा।
1: बिल्कुल, और हो सकता है कि आज ये कार्यक्रम सुनने वाला कोई बच्चा भविष्य में ऐसी ही किसी संस्था का नेतृत्व करे।
0: दादाजी, मुझे तो सोचकर बड़ा ही रोमांच हो रहा है।
1: देखो बेटा, किसी भी संस्थान की सफलता केवल उसकी मशीनों से नहीं मापी जाती है, उसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसने देश और समाज को कितना मजबूत बनाया।
0: और BEML ने ये काम कई दशकों से किया है।
1: हाँ, बदलते समय के साथ उसने स्वयं को बदला, नई तकनीकों को अपनाया और देश की आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ती रही।
0: यानी यही किसी जीवंत संस्था की पहचान है।
1: बिल्कुल बेटा, जो सीखना बंद कर दे वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है।
0: और जो निरंतर सीखता रहे वही भविष्य का निर्माण करता है।
1: शाबाश बेटा, शाबाश। लगता है आज की यात्रा सचमुच सफल रही।
0: दादू, आज हमने जाना कि किसी भी संस्थान की कहानी केवल उसकी इमारतों या मशीनों की कहानी नहीं होती।
1: तो फिर क्या होती है?
0: ये उन लोगों की कहानी होती है दादाजी, जो अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प से देश को आगे बढ़ाते हैं।
1: वाह बेटा वाह, लगता है इस यात्रा ने वाकई तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया।
0: और आपने भी तो बहुत कुछ सिखाया दादू।
1: मैं तो तुम्हारा दादू हूँ, सिखाऊंगा ही बेटा। याद रखो बेटा, किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मशीनें नहीं होती बल्कि वो विश्वास होता है जो वो देश के लोगों में पैदा करता है। BEML ने दशकों से यही विश्वास मजबूत किया है। भारत की अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित कर सकता है, बड़े सपने देख सकता है और उन्हें साकार भी कर सकता है।
0: यानी ये केवल मशीनें बनाने की कहानी नहीं बल्कि आत्मविश्वास जगाने की कहानी भी है दादाजी।
1: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने। जब किसी देश के युवा सीखने, शोध करने और नवाचार करने का संकल्प लेते हैं तब ऐसे संस्थान उस संकल्प को शक्ति देने का काम करते हैं।
0: समझ गए दादू, आज के आत्मनिर्भर भारत की नींव केवल देश के कारखानों से मजबूत नहीं है बल्कि देश के उन संस्थानों में काम कर रहे लाखों लोगों के ज्ञान, कौशल और परिश्रम से है।
1: शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है और यही आज की यात्रा की सबसे बड़ी सीख भी है।
0: दादू चलिए जरा संभल कर उठिएगा।
1: हाँ हाँ बेटा,
0: बैग में लेती हूँ।
1: हाँ।
0: श्रोताओं, आज आपने सुनी BEML की स्थापना, उसके शुरुआती कार्यों और रक्षा अधोसंरचना क्षेत्र में बढ़ती भूमिका की कहानी। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में दादू और रुचि आपको बताएंगे देश के और भी कई संस्थानों के बारे में, साथ ही आत्मनिर्भर भारत में इन संस्थानों की भूमिका और भविष्य की योजनाएं क्या क्या है। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना
1: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त की। इस कार्यक्रम को स्वर दे रहे थे दीपक नेमा और भगवती सक्सेना। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद।
0: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। इस कार्यक्रम में आज हम समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। कार्यक्रम याद करो कुर्बानी लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र भारती। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम हमने केंद्रित किया है ज्योतिराव फुले पर।
2: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
1: कई बार सोचते हैं कि हर क्रांति के पीछे कोई ना कोई माली होता ही है, सवारने वाला होता ही है। जी हाँ, 1789 में बस्तील पर फूल बेचने वालों के धावे के 60 साल बाद माली जाति के एक भारतीय नौजवान ज्योतिराव फुले ने बहुत प्राचीन सामाजिक व्यवस्था, जो कि उस समय दर्जे पर थी, फ्रांसीसी प्राचीन शासन से भी कहीं अधिक सचेत थी, उस पर उसने आजीवन हमला शुरू कर दिया। उनका इरादा जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था। उनकी अपनी पृष्ठभूमि के लोगों की शिक्षा, नौकरियों और आत्मसम्मान के बोध तक पहुंच को बाधित किया था उन्होंने। 1827 के आसपास फुले का जन्म हुआ और वे पूना की सीमा पर रहते थे। पूना शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा राज्यों का मुख्यालय था। फुले के दादा शाही परिसर में माली का काम किया करते थे। उनके पिता फल, सब्जियां ये सब उगाते थे। माली जाति का ये परिवार समाज की एक मुख्य धारा से जुड़ा नहीं था। ये लोग शहर के विशिष्ट वर्ग को फल और सब्जियों की आपूर्ति करते थे। उच्च जाति के घरों, खेतों और गांवों में इनका आना जाना था। मेरे ख्याल से उन्होंने विशेषाधिकार होने के फायदों और समाज में अवसर के वितरण को समझने में उस समय उन्हें मदद मिली होगी। फुले बहुत जल्दी ही समझ गए थे कि बड़े उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा को स्वयं के लिए उन्होंने सुरक्षित रख लिया है और अपनी श्रेणी के सभी लाभ लेकर उन्होंने अन्य जातियों को परिधि से बाहर कर दिया है, और इसका कारण था अज्ञानता। समय के साथ इस नौजवान की हताशा पहले समीक्षा और फिर बदलाव की इच्छा में बदलने वाली थी। उन्होंने जाति की सीमा से बाहर के लोगों और लड़कियों के लिए स्कूलों की श्रृंखला खोल दी। उसके बाद विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए आवास स्थापित किया। उनकी कोशिश जल्द ही समाज व्यवस्था के विरुद्ध तर्कपूर्ण लड़ाई बन गई। आम लोगों को शिक्षित करने के फुले के 19वीं सदी के प्रयोगों ने ये दिखाने में मदद की थी कि शिक्षा तक अधिक लोकतांत्रिक पहुंच कैसे होती है, और गरीब होने की मनोवैज्ञानिक राजनीति के उनके पूरे विश्लेषण के साथ ही व्यक्तिगत जीवन में शोषण के परिणामों पर ध्यान देना वर्तमान भारत में तीखी समसामयिकता रखता था। ज्योतिराव फुले के बारे में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, जो केंद्रित है ज्योतिराव फुले पर। फुले को अक्सर अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ रखा जाता है। विद्वान और समाज विज्ञान गेल ओमवेट कहते हैं वो दरअसल राष्ट्र विरोधी हैं। वे अपने लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि उन निर्देशों से सावधान रहें जो उन्हें देश में मौजूद अनुक्रम और विरोधी स्वरों को एक तरफ करके एकजुट होने को कह रहे हैं। किसी राष्ट्र या क्षेत्र का विचार नहीं, बल्कि शिक्षा उनकी स्वदेशी थी, यानी देशभक्ति थी, ये ओमवेट्स का कहना है। श्रोताओं, फुले का जातिगत विरोध और शिक्षा को लेकर लोकतांत्रिक विचार मिशनरी शिक्षण से ज्यादा मिलता जुलता है, जिससे उन्हें सीधा फायदा हुआ था। उनकी कहानी की विडंबना ये है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होती और नई व्यवस्था स्थापित नहीं होती तो 19वीं सदी के उग्र सुधारवादियों में से एक शायद गुमनाम रहकर सब्जी की आपूर्ति करने वाले वो बनकर रह जाते। फुले की जैसी कहानियां साम्राज्यवाद के विचार को जटिल बनाती हैं। उपन्यासकार और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय के अनुसार वो लिखती हैं, अंग्रेजों ने महाद्वीप की संपत्ति को अवशोषित किया, उसे कंगाल बना दिया और पुराने मूल्यों को सुदृढ़ किया, लेकिन उन्होंने फुले अंबेडकर साहब जैसे व्यक्तियों और अन्य लोगों के लिए दरवाजे भी खोले ताकि वे विमर्श का हिस्सा बन सकें और उसे बदल सकें। श्रोताओं, आज पुणे भारत के सबसे धनी शहरों में से एक है। ये शिक्षा, निर्माण, आईटी और लग्जरी कार की असेंबली लाइन का प्रमुख केंद्र है। इसके कुछ हिस्से में मौजूद स्टील और शीशे से बनी इमारतें दुनिया के प्रमुख व्यवसायिक स्थलों में से एक है। ऐसे में ये भूल जाना आसान है कि ये शहर भारतीय चिंतन की कई महत्वपूर्ण, चाहे वो प्रतिपक्षी ही क्यों ना हो, विचारधाराओं का केंद्र रहा है। मराठा सत्ता का गढ़ रहा पुणे कभी उपमहाद्वीप के राजनीतिक नक्शे पर दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर था। जी हाँ, अंग्रेजों द्वारा इसका नियंत्रण अपने हाथ में लिए जाने के कई दशक बाद लगभग 1818 में ये भारतीय उदारवाद की उपजाऊ जमीन बन गया। श्रोताओं, ज्योतिराव फुले की कहानी की बात हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: अवसरों तक व्यापक पहुंच रखने वाले ज्योतिराव फुले की आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी में। श्रोताओं, फुले की कहानी को अक्सर एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को गरीबी से निकालने की दास्तान के रूप में सुनाया जाता है, जो कि ये सच नहीं है। सच तो ये है कि उनके पिता को सब्जी बेचने और उपजाऊ जमीन का मालिक होने के कारण जो सम्मान मिला, उसके कारण फुले को सामाजिक आत्मविश्वास और शैक्षिक शुरुआत बढ़त दी थी, जिसका बाद में वो एक आंदोलन के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। फुले के अनुसार जाने तो उन्हें पूरी तरह झकझोर देने वाला पल उनके सहपाठी के विवाह के समय आया था। श्रोताओं, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हट्टा कट्टा और खूबसूरत नौजवान दूल्हे को लेकर मंडप तक पहुंचता है। दूल्हा उनका सहपाठी था और कहानी के अनुसार उसने बहुत मासूमियत के साथ उसे शादी में बुलाया था, क्योंकि वो तो उसका मित्र था। लेकिन जब रूढ़िवादी समाज व्यवस्था वालों ने उस नौजवान को मंडप से जाति के नाम से निकाल दिया, तो उसे बहुत दुख लगा। फुले को बहुत सदमा लगा। उन्हें महसूस हुआ कि वो रोजमर्रा के भेदभाव और आक्रामकता से बचे हुए थे, लेकिन अब वो ये दंश नहीं झेलेंगे। बुद्ध के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। युवा होने पर ही उन्होंने कष्टों को देखा और समझा। समाज की मासूमियत से एक झटके से निकलने के बाद फुले के विचारों में एक नई स्पष्टता विकसित हो गई। उन्होंने जो देखा वो लिखा। शिक्षा के बिना बुद्धिमानी खो गई है, नैतिकता के बिना विकास खो गया है, विकास के बिना संपत्ति खो गई, संपत्ति के बिना सर्वहारा वर्ग बर्बाद हो गया है। जी हाँ, आज फुले के एक आयाम की उन लोगों द्वारा अनदेखी की जाती है जो उन्हें अन्य जाति का समझते हैं, राजनीति का नायक बनाते हैं, और वो आयाम है भारतीय इतिहास में उनकी चतुराईपूर्ण और साहसिक दिलचस्पी की। श्रोताओं, वो शायद इस बात को जानते थे कि उनके जीवन काल में देश संक्रमण काल से गुजर रहा था। उनका जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मराठा संघ के अंतिम पेशवा को हराए जाने के लगभग 10 साल से भी कम समय बाद हुआ था। मराठा संघ का कभी पश्चिम उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण हुआ करता था। अगले दशकों में अंग्रेज भारत पर पूरे स्वामित्व की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब तक नई व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी और गठबंधन भी निश्चित नहीं थे। ये एक ऐसा काल था जब परिवर्तन को व्यक्त किया जा सकता था, उसे अमली जामा पहनाया जा सकता था। फुले ये दोनों काम करने वाले थे। वो राइट्स ऑफ मैन पढ़कर मिले मूल्यों को तलाश कर रहे थे। सुविधाओं से वंचित लड़कियों के लिए बनाए गए एक
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज का कार्यक्रम समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम। बने रहें 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद पर।

0: पॉलिटिकल स्टाइल उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक विशेष कारण से
1: पुष्प स्पाइस बूस्टर, एक मैजिकल मसाला जो हर खाने का स्वाद बढ़ाए।
2: पुष्प स्पाइस बूस्टर, अपना स्वाद अपने पॉकेट में।
0: अभी जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा

में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल से अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूँ। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है। और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूँ, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवड़ता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले।
अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब

परिणाम सामने आए। केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया। उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही है। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजे, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलेंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश। हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है,

0: 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही है। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही है। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे।
1: He's not even sick. What is he up to?
0: मिलता है, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूक

0: अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम में आज हम कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए एक ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। यहां केवल कविताएं सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं। श्रोताओं, काव्य गुंजन की इस यात्रा में आपका फिर स्वागत है। महाकाव्य केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होते, वे मनुष्य के भीतर छिपे संघर्षों का दर्पण होते हैं। पिछले भाग में हमने सुना उस क्षण को जहां वर्षों से मौन एक मां का हृदय बोल उठा और एक पुत्र ने अपने जीवन की सबसे कठिन पुकार के सामने भी अपने सिद्धांतों का हाथ नहीं छोड़ा। कर्ण और कुंती का यह मिलन मानो समय के पन्नों पर लिखा वो अध्याय है जिसमें आंसुओं की स्याही से कर्तव्य और करुणा की कहानी लिखी गई है। रश्मि रथी के पंचम सर्ग के अंतिम भाग में दिनकर जी ने कविता को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वो पूरे महाकाव्य का सबसे भावुक और दार्शनिक बिंदु है।
3: भाग 5 और 6 में कर्ण थोड़ा भावुक होता है। अपनी माँ के सामने अपने दुख और समाज के तानों को लेकर परेशान और क्रोधित है, किंतु भाग 7 में आते आते उसकी भावुकता एक वज्र जैसी दृढ़ता में बदल जाती है। वह कुंती से कहता है कि अब देर हो चुकी है, भाग्य का पहिया घूम चुका है। यहाँ कर्ण ये जानते हुए भी कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं और उसकी हार निश्चित है, अपने विनाश को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ये व्यवहार कर्ण को एक साधारण व्यक्ति से उठाकर महामानव बना देता है जो जीत के लिए नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए मरता है। इस भाग की सबसे खास बात वह अद्भुत गणित है जो कर्ण कुंती के सामने रखता है। जब कुंती रोने लगती है तो कर्ण उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहता है कि युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, कुंती का आंचल कभी खाली नहीं होगा। वह अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को अभयदान देगा। वह कहता है या तो अर्जुन मरेगा या मैं, दोनों ही हाल में तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अगर अर्जुन मरा तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर पांडवों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक माँ को सांत्वना देने का इससे भव्य, वीरोचित और मार्मिक तरीका पूरी दुनिया के साहित्य में कहीं नहीं मिलता। यहाँ कर्ण अपनी मौत का सौदा इतनी सहजता से करता है जैसे कोई खिलौना दे रहा हो। श्रोताओं, पंचम सर्ग के अंतिम भाग 7 के काव्य पाठ के साथ हम चर्चा भी जरूर करेंगे, किंतु रश्मि रथी के पंचम सर्ग के अंतिम भाव सागर में डूबने से पहले आइए कुछ क्षण उस महाकाव्य के जनक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को भी स्मरण कर लें। किसी भी महान कृति को समझने के लिए उसके रचनाकार के व्यक्तित्व को जानना उतना ही आवश्यक होता है जितना किसी विशाल वृक्ष को समझने के लिए उसकी जड़ों को पहचानना।
2: हिंदी साहित्य में दिनकर जी का स्थान कितना ऊंचा है इसका अनुमान उनकी अमर कृतियों, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा का अध्ययन मात्र कर लेने से ही लगाया जा सकता है। वे केवल ओज के कवि नहीं थे बल्कि राष्ट्र की आत्मा, भारतीय संस्कृति के प्रहरी और आधुनिक युग के सांस्कृतिक जागरण के महाकवि थे। कल्पना कीजिए, गंगा की शांत धारा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव सिमरिया, जहां भोर की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक उठती हैं, आम की अमराइयों से कोयल की मधुर कूक सुनाई देती है और लोक गीतों की स्वर लहरियां गांव की गलियों में जीवन का संगीत भर देती हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू, किसानों का श्रम और भारतीय संस्कृति की सहज आत्मा, यही उस गांव की पहचान थी। इसी पावन धरती पर सन 1908 में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसकी लेखनी आगे चलकर पूरे राष्ट्र की आवाज बन गई। वही बालक थे रामधारी सिंह दिनकर। जीवन ने उन्हें वैभव नहीं संघर्ष दिया, सुविधाएं नहीं चुनौतियां दी, लेकिन इन्हीं संघर्षों की भट्टी में तपकर उनका व्यक्तित्व कुंदन बना। कई कई मील पैदल चलकर शिक्षा प्राप्त करना, अभावों के बीच भी ज्ञान की लौ जलाए रखना और अपने अथक परिश्रम से शिखर तक पहुंचना, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी।
3: अपनी विलक्षण प्रतिभा, अथक परिश्रम और अद्भुत साहित्य साधना के बल पर दिनकर जी निरंतर नई नई ऊंचाइयां छूते गए। वे बिहार प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 13वें अधिवेशन के कवि सम्मेलन के सभापति भी बने और आगे चलकर पूरे देश ने उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया। निश्चय ही दिनकर जी का जीवन अपने आप में एक प्रेरक गाथा है, परंतु आज हमारा उद्देश्य उनके संपूर्ण जीवन का वर्णन करना नहीं बल्कि उस महाकवि को नमन करना है जिसकी लेखनी ने रश्मिरथी जैसा कालजयी महाकाव्य रचकर कर्ण के व्यक्तित्व को अमर कर दिया।
2: दोस्तों, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी कविता सबसे प्रिय लगती है और मुझे समर शेष भी काफी पसंद है। दरअसल जैसा उनका व्यक्तित्व रहा, उनकी कविताएं भी वैसी ही वीर रस से ओतप्रोत हैं जो खून में उबाल ले आती हैं। इसलिए वे युवाओं के लिए हमेशा ही प्रासंगिक कवि रहे हैं। आगे हम उन पर बीच बीच में उनके साहित्यिक अवदान पर कभी लेखनी पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको सुनाते हैं दिनकर जी द्वारा रचित मेरी पसंदीदा कविता समर शेष है की कुछ पंक्तियां। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश का कष्ट खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मतभेद हो हृदय वही के सर से, भरो भवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से। कुमकुम लिपूं किसको, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। दोस्तों, जिसने शब्दों को केवल कविता नहीं बल्कि धधकते हुए अंगारे बना दिया, दिनकर जी ने जब रश्मिरथी की रचना की तो उन्होंने केवल महाभारत की कथा को नए पन्नों पर नहीं उतारा बल्कि इतिहास के हाशिए पर धकेल दिए गए एक चरित्र को उठाकर उसे आत्मगौरव, समता और संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। इस महाकाव्य की बुनावट में जहां एक ओर वीर रस का प्रचंड नाद है, वहीं दूसरी ओर वात्सल्य, करुणा और दर्शन की एक अंतःसलिला नदी भी बहती है। ये काव्य चीख चीख कर स्थापित व्यवस्थाओं से सवाल करता है कि कुल, जाति और वंश के संकीर्ण पैमानों से किसी मनुष्य की योग्यता को कैसे आंका जा सकता है। दिनकर जी का दर्शन बड़ा स्पष्ट था। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले कवि नहीं थे, वे पुरुषार्थ, कर्म और मनुष्य के आंतरिक तेज के उद्घोषक थे। जो कहते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के।
3: आज हम जिस 21वीं सदी के चक्रव्यूह में जी रहे हैं ना, जहां भौतिकता की अंधी दौड़ है, जहां मानवीय संवेदनाएं धीरे धीरे मशीनी हो रही हैं, वहां रश्मिरथी हमारे लिए एक नैतिक आईना बन जाती है। हम आज की सदी में क्या भूल रहे हैं? हम भूल रहे हैं कर्ण जैसा निश्चल त्याग, हम भूल रहे हैं दुर्योधन के अवगुणों के बीच भी उसकी उस गहरी मित्रता का मान जो मृत्यु के मुहाने पर भी अडिग रही। हम भूल रहे हैं कि हर संकट के समय समाज को श्री कृष्ण जैसे शांति दूत की आवश्यकता होती है। रश्मिरथी हमें सिखाती है कि जब जीवन में विपत्तियां आए, जब नियति हमें चारों ओर से घेर ले, तब भीतर के मनुष्य को टूटने नहीं देना है बल्कि विघ्नों को गले लगाना है और कांटों में राह बनाना है। आइए आज की इस आधुनिक आपाधापी के बीच दिनकर जी के इन शाश्वत विचारों को अपने भीतर उतारें और रश्मिरथी के इस अंतिम पड़ाव की ओर एक नई चेतना के साथ कदम बढ़ाएं। आइए श्रोताओं, मन को शांत और हृदय को संवेदनाओं से भरकर प्रवेश करते हैं रश्मिरथी के पंचम सर्ग के अंतिम सोपान में। तो लीजिए प्रस्तुत है पंचम सर्ग के भाग 7 का काव्य पाठ। कुंती के ये कहने पर पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली चार पुत्रों की माता होकर, तो फिर कर्ण भी कह उठता है।
4: छह और चार को भूलो माता, ये निश्चय मान मोद में भूलो, जीते जी भी ये समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, पांच के पांच ही पांडव किंतु रहेंगे, कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से, तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रणी पांच पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वो मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को ना राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की ना चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में, राधे ना कुरुपति का सहजेता होगा, वो पुनः निस्वह दलितों का नेता होगा, वो पुनः निस्वह दलितों का नेता होगा।
2: दोस्तों, कर्ण के शब्दों में आज एक योद्धा की गर्जना नहीं, बल्कि कैसे पुत्र की पीड़ा सुनाई देती है, जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। कुंती के सामने खड़ा कर्ण जानता है कि रक्त का संबंध उसे पांडवों से जोड़ता है, पर जीवन का संबंध उसे उन संघर्षों से जोड़ता है जिन्हें उसने अकेले सहा है। कर्ण के भीतर कोई द्वेष नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, केवल एक शांत पीड़ा है जो कहती है कि मेरा जन्म चाहे जहां से हुआ हो, मेरी पहचान मेरे कर्मों से बनी है। और यही कर्ण की महानता का शिखर है, वो शिखर जहां मनुष्य अपने निजी दुख से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि युद्ध आने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, फिर भी उसके हृदय में उन लोगों के लिए करुणा है जो समाज की उपेक्षा में जी रहे हैं। दिनकर जी ने कर्ण के माध्यम से यह प्रश्न उठाया है कि महान कौन है, वो जो केवल विजय प्राप्त करे, या वो जो टूट कर भी दूसरों के लिए आशा बन जाए। कर्ण का मन इस समय दो दिशाओं में बंटा हुआ है, एक ओर मां की पुकार है, दूसरी ओर मित्रता और वचन का ऋण। लेकिन इन दोनों के बीच भी वो अपने भीतर के सूर्य को बुझने नहीं देता। यही वो क्षण है जहां कर्ण केवल महाभारत का पात्र नहीं रहता, बल्कि संघर्ष करते हर उस मनुष्य की आवाज बन जाता है जो परिस्थितियों से लड़कर भी मानवता को थामे रखता है। आइए सुनते हैं इसी भाव समंदर में डूबे कर्ण आगे और क्या कह रहे हैं।
0: है अभी उदय का लग्न, दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है, अनुकूल ज्योति की घड़ी ना मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को, परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा, भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर, तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं, कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बांह जहां है, उस भाग्यवान का भाग्य क्षार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को, शोणित से सारी मही किलिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है, काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा, शतपाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वो जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा, लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह
4: और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पटह, भयानक क्षण है। दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी ना बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीत या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार्थ द्रोह की क्रिया व्यर्थ ये रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए ना हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर को झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपना कर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुदबुद की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरे हों एकाकार, मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गलकर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बली के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता ना जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता ये वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल, कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ ना उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूम केतु बस इसी तरह आता है। रोशनी जरा मरघट में फैलाता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है।
2: हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिर दृगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से।
3: पंचम सर्ग का ये समापन मानो एक गहरी सांझ की तरह है, जहां शब्द धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और केवल भावों की प्रतिध्वनि रह जाती है। इस अंतिम क्षण में संवाद धीरे धीरे मौन में बदल जाता है। कर्ण और कुंती दोनों जानते हैं कि अब उनके मार्ग अलग अलग हैं, फिर भी उस सत्य को स्वीकार करना कितना कठिन है। कुंती की आंखों में पश्चाताप की नमी है और कर्ण के शब्दों में एक अद्भुत धैर्य। वह माँ को आश्वासन देता है कि चाहे युद्ध की धारा किधर भी बहे, उसके पुत्रों की संख्या 5 ही रहेगी। ये वचन किसी योद्धा का नहीं, बल्कि उस उदार हृदय का है जिसने जीवन भर अपने दुखों को पीकर भी दूसरों के लिए करुणा संजोए रखी।
2: जब विदा का क्षण आता है तो शब्द पीछे छूट जाते हैं और केवल भाव शेष रह जाते हैं। दो बूंद आंसू कर्ण के चरणों पर गिरते हैं और कुंती बिना कुछ कहे लौट पड़ती है, मानो भाग्य ने उनके हृदयों के बीच एक अदृश्य दूरी खींच दी हो। उस सांझ में दृश्य हमें ये सत्य याद दिलाता है कि मनुष्य कई बार प्रेम से बंधा होता है, पर चलना उसे नियति की ही दिशा में पड़ता है। यही इस प्रसंग की करुण गरिमा है, जहां त्याग प्रेम और नियति तीनों एक साथ अपनी छाया छोड़ जाते हैं।
3: आने वाला कुरुक्षेत्र मानो दूर क्षितिज पर गरजते बादलों की तरह दिखाई देता है। युद्ध की आहट, वीरों का संकल्प और काल का निमंत्रण, सब कुछ धीरे धीरे निकट आ रहा है। फिर भी इस करुण मिलन की स्मृति उस भीषण युद्ध के बीच भी एक दीपक की तरह जलती रहेगी, क्योंकि यहाँ केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि त्याग, मर्यादा और मौन प्रेम की वह झिलमिलाहट है जो कर्ण और कुंती की कहानी को अमर बना देती है। श्रोताओं, हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास के खंडहर हमें वर्तमान की पीड़ा के प्रति सजग बनाते हैं और यही चेतना किसी साहित्य को अमर करती है। हिंदी की राष्ट्रीय कविता की विकास यात्रा में दिनकर जी का स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त के साथ शीर्ष पर है, जहां भारतेंदु जी ने कविता को ब्रज की गलियों से निकालकर देश की दुर्दशा की ओर मोड़ा और गुप्त जी ने अतीत के गौरव से वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा दी। वहीं तीसरे पायदान पर आसीन दिनकर जी ने पराधीनता, सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के खिलाफ वह प्रचंड शंखनाद किया कि उनका नाम ही युग धर्म की हुंकार बन गया। उनका व्यवहारिक जीवन हमेशा समाज के शोषित, दीन दुखी और उपेक्षित वर्ग के प्रति समर्पित रहा।
2: दोस्तों, दिनकर जी वीर रस के साथ साथ रौद्र, करुण और शांत रसों के भी सिद्ध हस्त कवि हैं, जिसका प्रमाण उर्वशी में श्रृंगार रस के परिपक्व रूप में मिलता है। उनकी राष्ट्रीयता और दर्शन पर एक तरफ भारतीय गौरवमयी परंपरा का प्रभाव है तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का। सन 1946 में प्रकाशित कुरुक्षेत्र में उन्होंने भीष्म और युधिष्ठिर के संवादों के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बीच युद्ध और शांति के अत्यंत जटिल प्रश्न को उठाया है। वे गांधी जी के विचारों से गहरे प्रभावित तो थे, लेकिन संकट के समय कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण के विरोधी थे। उनका स्पष्ट मानना था कि शांति की स्थापना के लिए कभी कभी अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना भी परम धर्म बन जाता है।
3: लेकिन दिनकर जी केवल कल्पना के लोक में खोए रहने वाले रचनाकार नहीं थे। जैसे जैसे वे देश की पराधीनता, भुखमरी और गरीबी के कड़वे यथार्थ से रूबरू हुए, वैसे वैसे उनका बौद्धिक और यथार्थवादी स्वर मुखर होता गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनकी कविताएं छायावाद के उस काल्पनिक कुहासे से मुक्त होकर सीधे धरातल के सच से जुड़ती चली गईं। उन्होंने कोमल कांत पदावली को छोड़कर गर्जना सीखी, बादलों से बरसते पानी की जगह अंगारे बरसाना सीखा। परिणाम ये हुआ कि हिंदी साहित्य को एक नई, ओजस्वी और क्रांतिकारी दिशा मिली, जिसने महलों के सिंहासन खाली करने की मुनादी कर दी।
2: दोस्तों, जब कर्ण अपनी शर्तों पर अडिग रहता है तो कुंती का हृदय हाहाकार कर उठता है। वे कहती हैं कि हे हठी, तूने खुद को देकर भी मुझे खाली ही छोड़ दिया। मैं 6 पुत्रों की मां बनने की आस लेकर आई थी, लेकिन विधाता की क्रूरता देखो कि उसने मुझे आज भी 5 पुत्रों पर ही ला खड़ा किया। विधाता का न्याय कितना वाम है, यानी टेढ़ा है, कि मां अपने ही 2 बेटों को आपस में मरते देखने के लिए अभिशप्त है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि कुछ गलतियां समय के किसी भी मरहम से नहीं भरी जा सकती। कुंती की ममता सच्ची है और कर्ण का कर्तव्य अटल है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, फिर भी दोनों के हिस्से में केवल पीड़ा है। दिनकर जी ने इस संवाद के माध्यम से ये दिखा दिया कि मनुष्य का गौरव केवल जीत में नहीं बल्कि अपने धर्म और वचन के लिए हंसते हंसते सर्वस्व न्योछावर कर देने में है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। यह था पंचम सर्ग का अंतिम काव्यांश। लगता है दिनकर जी ने आत्मा की सारी परतें खोल दी। इतना भावुक काव्यांश मां और पुत्र का, इतना भाव प्रवण संवाद, हृदय जैसे बहुत देर तक इसी भाव में कहीं ठहर सा गया है। तो हम यहीं रुकते हैं, रश्मि रथी के इस रथ को यहीं विराम देते हैं। तब तक हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना आदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने।
5: मैंने यानी आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा,
3: और मैं भगवती सक्सेना।
2: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
3: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
6: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा पूर्ण आयोजन, प्रवेश निःशुल्क।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रश्मि रथी, जिसके अंतर्गत हमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुना। इसके साथ ही हमारा आज का काव्य गुंजन कार्यक्रम संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। उसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम, महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज समाज सुधारक एवं स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजा राम मोहन राय के जीवन पर केंद्रित होगा। समय होगा शाम 6 बजे। शाम 6:30 पर बाल सभा कार्यक्रम में आज बच्चे सुनेंगे कृष्ण की बाल लीला। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। शाम 7 बजे टेक गुरु कार्यक्रम में आज हम AI विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। शाम 7:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया पर जानकारी होगी। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी अदिति गौर। रात्रि के 8 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि के 8:30 पर कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। इस कार्यक्रम में आज हम समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। और रात्रि के 9:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे कविता रश्मि रथी का पाठ। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। नवे 98 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध गायिका गिरिजा देवी का गायन।

लोमड़ी के शब्द हैं, देखे बिना नहीं चैन श्रीखमाच है समरिया।

ये मेरा सौभाग्य है, इतने लोग बोल चुके हैं पर ये आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। कारण ये है कि मेरे दादाजी जो मेरे गुरु बचपन से सिखाए, मेरे पिताजी, मेरे गुरु दादाजी के जो गुरु जी थे पंडित कंठे महाराज जी, वो बजा चुके हैं। तो ये संगीत में ही हो सकता है, ये किसी और चीज में नहीं हो सकता कि ये चार पीढ़ी पहले जिनको मैंने दिखाई में नहीं उन्होंने बजाया और मैं क्या बजा सकता हूँ। मेरा तो कोई सौभाग्य, मैं अपने आप को धन्य, ये जीवन धन्य हो गया मेरा आपके चरणों में बजा के।

आप समझिए कि पंडित गंडे महाराज जी जिनको हम लोग बब्बा बोलते थे उनके साथ गाए हैं, फिर किशन महाराज जी भैया थे मेरे उनके साथ गाए, फिर उनके बेटे पूरन महाराज जी के साथ गाए, अब उनके बहन का बेटा मेरा नाती हो गया चाल खानदान शुभ महाराज उनके संग ही गाते हैं, अब शुभ का बच्चा भी हो गया 2-3 बरस उसके साथ भी गा रहे हैं से तबले वाले के खानदान से गा रहे हैं भैया, ये सब तो बच्चे सामने के पैदा हुए हैं, इसलिए मौका दे रहे हैं क्या क्या बनारस की खास लगी का अंदाज है वो बजाना आता है, चलो जल्दी जल्दी गाँव में भूलन जाते जल्दी।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी को सुना। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम पहले आपको सुनवा रहे हैं वर्षा देवस्कर का गायन।

0: आप सुन रहे थे वर्षा दिवसकर का गायन। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल देश के लिए। और लीजिए श्रोताओ, अब हम आपको सुनवाते हैं सुश्री तृप्ति का गायन।
1: प्रस्तुत

उपशास्त्रीय संगीत शैली में दादरा प्रकार भी प्रसिद्ध है, जो मुख्यतः आगरा और बुंदेलखंड घरानों में गाया जाने वाला प्रकार है। दादरा ताल में ही निबद्ध होने के कारण

दादरा के पश्चात अगली प्रस्तुति है कजरी। कजरी प्रकार प्रियसी का अपने प्रिय कर के प्रति विरह प्रकट करने का एक माध्यम है, जो कि काली घटाओं का वर्णन करते हुए सावन ऋतु की महत्ता को दर्शाता है। प्रस्तुत है कजरी।

कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रस्तुत है एक लोकप्रिय दादरा, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया, मुहे मारे नजरिया सावरिया।

शास्त्रीय गायन शैली में प्रसिद्ध प्रकार ठुमरी भी जनमानस के रंजन हेतु सहायक है। कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में प्रस्तुत है ठुमरी, जो कि मिश्र भैरवी राग में निबद्ध है। शब्द हैं जा बैरी जा बदरा, जा बैरी जा बदरा।

0: आप सुन रहे थे सुश्री तृप्ति का गायन। अब आज का भारत भारती खत्म होता है। कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती।

दोस्तों ये बताइए कि प्रोग्राम चलने दिया जाए ना। चलिए तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे ये जो फनकार हैं ताहिर हुसैन फरीदी साहब, ये ग्रुप लीडर हैं इस टीम के, और जहाँ तक पूरी दुनिया के अंदर ये अपने प्रोग्राम पेश कर चुके हैं। अगर आप YouTube उठाकर देखें तो इनके लाखों व्यूवर्स हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आप जा चुके हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी जा चुके हैं, और इसके अलावा कलियर शरीफ, पाक पत्तन शरीफ और बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार पर भी आप हाज़िरी दे चुके हैं। आइए समाप्त फरमाइए एक और कलाम। ये बताता चलूं कि आज की हमारी इस महफिल के मेज़बान हैं ICCR और इसके रीजनल डायरेक्टर हैं मोहम्मद इब्राहिम साहब।

0: Thank you.
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती भारत भारती

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा पूर्ण आयोजन, प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। हमारी सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। सभा की शुरुआत में आपको सुनवा रहे कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 28 से वाचन। ऋषि हैं गृत्स्मत, देवता हैं वरुण और छंद है त्रिष्टुप।
1: इदं कवेरादित्यस्य स्वराजो विश्वानि शान्त्यभ्यस्तु महान् अतियो मंद्रो यजथाय देवः सुकीर्तिं भिक्षे वरुणस्य भूरेह। स्वयं प्रकाशित होने वाले आदित्य गण अपनी सामर्थ्य से सभी विनाशकारी शक्तियों को दूर करें। ये स्तोत्र उन दूरदर्शी आदित्य गण के लिए हैं, याज्ञिकों के लिए अत्यंत सुखदायी पोषणकारी वरुण देव की स्तुतियों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। तव व्रते सुभगासः स्याम स्वाध्यो वरुण तुष्टुवांसः उपायन उषसाम गोमती नामग्नयो न जरमाणा अनुद्यून। हे वरुण देव, आपका अनुगमन करते हुए हम सौभाग्यशाली बने। किरण युक्त उषा के समय प्रतिदिन आपकी स्तुतियां करते हुए हम स्तोताजन श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त होकर अग्नि के समान तेजस्वी बने। तवस्याम पुरुवीरस्य शर्मन् नुरशंसस्य वरुण प्रणेतः यूयम् नः पुत्रा अदिते रब्धा अभि क्षमध्वम् युज्याय देवाः। हे श्रेष्ठ नायक वरुण देव, आप बहुतों के द्वारा प्रशंसित हैं। हम वीर संतति से युक्त होकर आपके आश्रय में रहें। हे अबध्य पुत्रो, हम आपसे मित्र भाव की कामना करते हुए अपने अपराधों तथा पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। प्रसीमादित्यो असृजद् द्विधर्ता ऋतम सिंधवो वरुणस्य यन्ति न श्राम्यन्ति न वी मुचन्त्येते वयो न पप्तु रघुया परिज्मन। समस्त विश्व को धारण करने वाले आदिति पुत्र वरुण देव ने जल को वृष्टि रूप में उत्पन्न करके अपनी सामर्थ्य से नदियों को प्रवाहित किया, जो पक्षी की भांति अविरल गति से पृथ्वी पर विचरण कर रही हैं। वी मच्छ्रथाय रशनामिवाग रिद्ध्याम ते वरुण खामृतस्य मा तंतुश्छेदि वयतो धियं मे मा मात्रा शार्यपसः पुररितोः। हे वरुण देव, हमारे पापों ने हमें रस्सी की भांति जकड़ रखा है, उनसे हमें छुड़ाएं ताकि श्रेष्ठ मार्ग में गमनशील आपकी सामर्थ्य को हम धारण कर सकें। कि जिस तरह बुनाई करने वाले का तागा नहीं टूटना चाहिए, उसी प्रकार श्रेष्ठ कार्यों के नियोजन के समय आपकी शक्ति अविरल गति से प्राप्त होती रहे। कार्य की समाप्ति के पूर्व ही हमारी शक्ति क्षीण न हो। अपो सुम्यक्ष वरुण भियसम मत सम्राणिता वोनु माग्रभाय दामेव वत्साद्वी मुमुग्ध्यं हो नहि त्वदारे निमिषश्च नेशे। हे सत्य रक्षक तेजस्वी वरुण देव, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखकर भय से हमें दूर करें। जिस प्रकार से बछड़े को मुक्त करते हैं, उसी प्रकार हमें पापों से मुक्त करें, क्योंकि आपके अभाव में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मानो वधैर वरुण ये त इष्टावेनः कृणवन्त मसुर ध्रीणन्ति मा ज्योतिषः प्रवसथानि गन्म वीशुमृधः शिश्रथो जीवसे नः। हे प्राणों के रक्षक वरुण देव, दुष्टों को नष्ट करने वाले आयुधों का हम पर कोई प्रभाव न हो। हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए हिंसक शत्रुओं को नष्ट करें तथा हम लोग प्रकाश से दूर न जाएं। नमः पुरा ते वरुणोत नून मुता परम तविजात ब्रवाम त्वे ही कम पर्वते न श्रितान्य प्रच्युतानि दूढभ व्रतानि। हे अनेक दुर्लभ शक्तियों से संपन्न वरुण देव, आपके अटूट नियम पर्वत के समान अचल तथा दृढ़ता से स्थिर रहते हैं। हम भूतकाल में आपको नमन करते रहे हैं, इस समय भी नमन करते हैं तथा भविष्य में भी नमन करते रहेंगे। परऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नयन्य कृतेन भोजम अव्युष्टा इन्नु भूयसी रुषाय आनो जीवान वरुण तासु शाधि। हे वरुण देव, हमें ऋण मुक्त करें। दूसरों के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का हम उपभोग न करें। बहुत सी उषाएं जीवन में प्रकाश देने वाली धाराएं जो प्रकाशित हो सकीं, उनसे हमारे जीवन को सुखमय बनाएं। यो मे राजन्युज्यो वा सखा वा स्वप्ने भयं भीरवे मह्यमाह स्तेनो वा यो दिप्सति नो वृको वा त्वं तस्माद् वरुण पाहि अस्मान। हे तेजस्वी वरुण देव, जो हमारे बंधु स्वप्न में हमें भयभीत करते हैं या भेड़िये के समान हमें नष्ट करना चाहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदान आविदं शूनमापेह मा रायो राजन्यु यमादव स्थाम बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे वरुण देव, सबको संतुष्ट करने वाले ऐश्वर्यशाली दानदाता की सुख समृद्धि से हम कभी ईर्ष्या न करें, उन्हें बंधुवत माने। हे वरुण देव, आवश्यक धन प्राप्त होने पर हम अहंकारी न बने, श्रेष्ठ संतति सहित यज्ञ में देवों की स्तुतियां करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 28 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत।

जब संध्या की आरती होती है तो दीपक की छोटी सी लौ भी हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। दीपक स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, हमारा व्यवहार किसी दुखी मन को सहारा दे सके और हमारे कर्म किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी भर सके, यही सच्ची भक्ति है।

जब भी मन अशांत हो, कुछ पल ईश्वर के चरणों में बैठ जाइए। विश्वास मानिए, मन को अद्भुत शांति मिलती है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन, प्रवेश निःशुल्क।

सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं राजा राम मोहन राय पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। एक ऐसे समाज का चेहरा बदलना जो रूढ़ियों को भगवान का आदेश मानता हो, जहां अशिक्षा का बोलबाला हो, जहां बहुविवाह, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जाल फैला हुआ हो, बड़े दुस्साहस का कार्य होता है। 19वीं सदी के राजा राम मोहन राय एक ऐसी ही शख्सियत थे जिन्होंने महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व की बात कही और उनके अस्तित्व को अहमियत दी। पुरुषों के बिना स्त्रियों का कोई वजूद नहीं, वो निम्न कोटि की प्राणी हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती, बल नहीं होता। यदि दुर्भाग्य से वो विधवा हो गईं, तो उनसे उनके जीने का अधिकार छीन लिया जाए, उन्हें सती के नाम पर जलाने का या फिर जलकर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ये कड़वा सच समाज का वो कोड़ था जिससे आज से 50 साल पूर्व तक हमारी आधी दुनिया यानी स्त्रियां पीड़ित रहीं। राजा राम मोहन राय इस देश की महिलाओं के हमदर्द बनकर आए और उन्होंने धर्म के नाम पर रची गई अमानवीय परंपरा सती प्रथा के खिलाफ सामाजिक लड़ाई छेड़ी। उन्होंने न केवल सती प्रथा बल्कि स्त्री का संपत्ति पर अधिकार, शिक्षा का अधिकार और विधवा विवाह के लिए भी सामाजिक आंदोलन चलाए। परंपराओं की जटिलता को उन्होंने चुनौती दी, अपनी सूझबूझ से शास्त्र सम्मत तर्क प्रस्तुत किए। पोंगा पंथी जमात ने उन्हें अधार्मिक, पापी और ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन वो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। यदि केवल सती दाह की बात की जाए तो समय के जो आंकड़े प्राप्त हुए वो समाज की बुरी तस्वीर पेश करते हैं। सन 1815 में 253 महिलाएं सती हुईं, सन 1816 में 269, सन 1817 में ये संख्या बढ़कर 442 हो गई। सन 1818 में आंकड़े चौंकाने वाले थे, इस साल संख्या बढ़कर 544 हो गई। सती होने का बढ़ता ये ग्राफ बताता था कि बुराई घटने की बजाय अपनी जड़ें और मजबूत कर रही है। ये आंकड़े तो दर्ज आंकड़े थे, लेकिन जो पहुंच से परे थे, दूर दराज के गांव और मोहल्लों में न जाने कितनी महिलाएं सती के नाम पर बलि चढ़ा दी गईं। जघन्य अपराध ने धर्म का चोला पहन रखा था। सामाजिक विरोध के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना मुंह खोले। हमारे मनुष्य समाज का ये कृत्य सार्वजनिक वाहवाही बटोरता था। महिलाओं को आत्मदाह के लिए उकसाने वाले तत्व अपनी कुंठित इच्छाओं को भभकती ज्वाला से शांत कर रहे थे। तब राजा राम मोहन राय की शख्सियत ने महिलाओं की पीड़ा की गहराई को समझा। इस सामाजिक युद्ध में उन्होंने वीर योद्धा की भूमिका निभाई, वो कलम के सिपाही बने। उन्होंने 3 अखबारों का प्रकाशन किया, ब्रह्म निकल मैगजीन, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये 3 विभिन्न भारतीय भाषाओं के अखबार थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, वो सामाजिक जड़ता के खिलाफ कलम थाम चुके थे। उन्होंने कलम के माध्यम से न केवल सामाजिक बुराइयों का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों की अतिवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ भी वो डटे रहे।

उस समय अखबार निकालना हिंदुस्तानियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। अंग्रेज अखबार का प्रकाशन करने वालों को तरह तरह से प्रताड़ित करते थे, जिससे मजबूरन प्रकाशन बंद करना पड़े या फिर जुर्माना भरना पड़ता था। डॉक्टर राम मोहन राय ने अंग्रेजी फरमान का विरोध करते हुए कहा, लाइसेंस तो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अंग्रेजों को चाहते हैं। उन्होंने कभी अंग्रेजों की ताकत की परवाह नहीं की। बहरहाल वो दो तरफ से विरोधियों से लड़ रहे थे, एक वो जो अपने देशवासी थे और दूसरे वो जो देश में डेरा जमा कर बैठे हुए थे। राम मोहन राय बिना रुके कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। उसी समय वेंटिक का आगमन देश में हुआ। वेंटिक राजा राम मोहन राय से मिले और उनका समर्थन किया। देश में तूफान खड़ा हो गया। उनके विरोधी नागरिकों से अनुरोध कर रहे थे कि वो राजा राम मोहन राय के बहकावे में न आएं। उनके विरुद्ध तरह तरह के संदेश प्रसारित किए जा रहे थे। आखिरकार बुराई हार गई। महिलाओं के भाग्य का फैसला हुआ और सन 1829 में सती प्रथा निवारण कानून पास हो गया। राम मोहन राय की कड़ी आलोचना हो गई। सती प्रथा की वकालत करने वालों ने इस कानून के खिलाफ जुड़कर प्रीवी काउंसिल में याचिका दायर कर दी। राम मोहन राय सन 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना कर चुके थे। लड़ाई लंबी चली, पर जीत राजा राम मोहन राय की हुई। इसी दौरान एक सुयोग घटित हुआ। दिल्ली के एक बादशाह ने, जो अकबर द्वितीय के नाम से जाने जाते थे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया। अनेक तर्कों के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने भी राम मोहन राय को राजा मान ही लिया। वो विद्वान थे और स्वयं पर भरोसा रखते थे। वो जानते थे कि वो जो कुछ भी कर रहे थे सही था। राजा राम मोहन राय का जन्म हुगली जिले के राधानगर में 22 मई सन 1774 को हुआ। उनके पिता रमाकांत राय संपन्न व्यक्ति थे। राम मोहन राय की शिक्षा दीक्षा पटना में हुई। उन्होंने अध्ययन के लिए कुछ समय काशी में भी बिताया। अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा पर राम मोहन राय की पकड़ बेहद मजबूत थी। उस समय अंग्रेजी का बड़ा बोलबाला था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। उन्होंने बाइबल भी पढ़ी और कुरान शरीफ भी पढ़ी। उन्होंने वेद, वेदांत, मीमांसा, स्मृति शास्त्र, काव्य शास्त्र जैसे ग्रंथों का भी गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर एक है, तो फिर जाति धर्म का तमाशा क्यों किया जाता है?

ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता इंसानों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में बांट दिए हैं। मानवता का उदार मंत्र हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के स्वरों में लुप्त हो गया। इसी ढके हुए रास्ते को हमारे साधु चरित्र महामानवों ने खोजने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय इसी की एक कड़ी थे। वो इसी ढके हुए रास्ते को प्रकाश पूंजी की तरह मोड़ना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने अनेक ग्रंथों की रचना की और कई महान ग्रंथों का अनुवाद भी किया। उन्होंने अरबी, फारसी में लिखा और साथ ही उन्होंने बंगला भाषा में भी लिखा। उनका मत था कि वेदांत सृष्टि के समस्त जीवों में प्रेम पैदा करना चाहिए। बहरहाल कट्टरपंथियों ने उनका हमेशा विरोध किया, लेकिन उन्होंने सभी संप्रदायों के बीच भाईचारे की बात कही। उन्होंने सदैव ही उदार धर्म की पैरवी की। ये सत्य है कि वो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे। वो मानते थे कि शिक्षा से मनुष्य की और समाज की उन्नति होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा से क्या लाभ जो उन्नति का रास्ता न दिखाए। हिंदू कॉलेज उनके ही प्रयासों का परिणाम था, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। एक और स्कूल उन्होंने खोला, जिसका नाम था एंग्लो हिंदू स्कूल, जो स्कॉटिश कॉलेज के नाम से मशहूर है। उन्होंने विदेश यात्रा की और शिक्षा के अनेक प्रयास किए। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं का निर्माण भी किया। लंदन में 27 सितंबर सन 1833 को इस महान आत्मा ने दुनिया से विदा ली। उनकी श्रेष्ठता उनके कर्मों के जरिए हम सभी के सामने है, जिसके आगे हम सदैव ही नतमस्तक रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा। इसके अंतर्गत आज सुनिए कृष्ण की बाल लीला।
2: आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है कान्हा की बाल लीलाएं।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम बाल सभा। अब नाम ही बाल सभा है तो फिर बाल सभा में बातें भी तो वही होनी चाहिए जो आपके मन को भाएं। तो आज हम आपको एक ऐसे बाल सखा से मिलवा रहे हैं जो आपकी हर उम्र में, जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर आपकी बुजुर्ग हो जाने तक, हमेशा हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। उनकी कही बातें, उनकी लीलाएं, उनका दिया गया ज्ञान हम सबको पल पल पर ध्यान भी आता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे आज। क्योंकि नन्हे से कृष्ण सिर पर मोर पंख, हाथ में मुरली, पैरों में छोटी छोटी पायल, गले में वैजंती माला और चेहरे पर ऐसी प्यारी सी मुस्कान कि जिसे देखकर यशोदा मैया भी अपनी सारी नाराजगी भूल जाती थी। इसीलिए तो कान्हा कैसे कैसे प्रश्न कर लेते थे, याद है आपको? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। अब बताइए, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कभी किसी से? लेकिन जो बाल कान्हा हैं वो कुछ भी पूछ लेते थे अपनी मैया से। कभी माखन की मटकी के पीछे भागते कान्हा, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते कान्हा, कभी जमुना जी के किनारे गायों के बीच घूमते कान्हा, तो कभी अपनी मुरली की धुन से पूरे वृंदावन को मोहित करने वाले कान्हा। और इसलिए ही तो आज मैं आपको ऐसी ही कान्हा की बाल लीलाएं बता बता के उनकी शरारतों में छुपे प्रेम को सुनाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि कैसे हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक हैं ये सारी लीलाएं। आज हम ज़रूर कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी हम सबको उनका दिया ज्ञान कैसे कैसे अपने साथ समाहित कर लेता है। अब देखिए, कृष्ण जी का जन्म तो अंधकार में ही हुआ था, कहानी यहीं से शुरू होती है। भगवान विष्णु ने देवकी को सूचित किया कि वो शीघ्र ही आठवीं संतान के रूप में उनकी कोख से जन्म लेने वाले हैं। वे वासुदेव से बोले, मेरे जन्म लेते ही आप मुझे लेकर अपने मित्र गोकुलवासी नंद बाबा के घर जाएं। वहां उनकी पत्नी यशोदा एक बालिका को जन्म दे चुकी होंगी, मुझे उन्हें सौंपकर आप उनकी नवजात बालिका को ले आएं तथा माता देवकी की गोद में डाल दें, किसी प्रकार का भय ना करें। ऐसा कह विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अर्धरात्रि के समय देवकी ने बालक को जन्म दिया। बालक रोया नहीं। वासुदेव ने नवजात शिशु के लिए कंस द्वारा रखवाई गई टोकरी में बालक को रखा, फिर कई पल तक वात्सल्य भरे सजल नेत्रों से अपलक उसे निहारते रहे। तभी वासुदेव के मस्तिष्क में प्रश्न कौंधा, जंजीरों से बंधा एक कैदी नवजात शिशु को कैसे सुरक्षित गोकुल पहुंचा सकता है। इसका उत्तर तुरंत मिला, उनकी जंजीरें खुलकर नीचे गिर पड़ी। वासुदेव समझ गए कि ईश्वर की लीला शुरू हो चुकी है। बस फिर क्या था, उन्होंने टोकरी उठाई और बाहर की ओर चल दिए। कारागार का द्वार खुला और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी के मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो चुकी थीं। बस यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की लीला। कितनी कठिन परिस्थिति थी और वही आधी रात का समय, चारों तरफ घोर अंधकार, लेकिन उसी अंधकार के बीच जब जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, तो कितनी अद्भुत रात होगी वो। उसके बाद यमुना जी ने कैसे चरण पखारे हैं, आप सुनकर देखिए। बाहर बादल अभी गरज ही रहे थे, बिजलियां कड़क रही थीं, मूसलाधार बरसात होने लगी, पर वासुदेव निर्भय निर्विरोध आगे बढ़ते रहे। इस बात से अनभिज्ञ कि भगवान विष्णु के 1000 फनों वाले सेवक शेषनाग उनके ऊपर अपने फनों का विशाल छत्र ताने अदृश्य रूप से साथ साथ चल रहे हैं। यमुना तट पर जाकर वासुदेव ठिठके, लहरें उफन रही थीं, गोकुल यमुना नदी के उस पार था। वासुदेव भगवान का नाम लेकर लहरों में उतर गए। अचानक लहरें ऐसे ऊपर उठीं जैसे वासुदेव को टोकरी समेत लील जाना चाहती हों। शिशु कृष्ण ने यमुना की इच्छा को जानकर अपने पांव नीचे लटका दिए। यमुना चरणों को स्पर्श कर शांत हो गई। चमत्कारिक रूप से वासुदेव के लिए एक शुष्क धरातल वाला गलियारा बन गया। वासुदेव तेजी से आगे बढ़ने लगे। देखिए किस तरह से पवित्र नदी यमुना भी कृष्ण जी के पांव पखार कर शांत हो गई। कैसी है अद्भुत कृष्ण लीला। इसीलिए कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी गहरा हो बच्चों, प्रकाश आने की संभावना कभी खत्म नहीं होती। यहीं से हमें प्रभु श्री कृष्ण सीख देते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब आगे पहुंचे, अब गोकुल पहुंचे पालनहार। गोकुल की गलियां सुनसान थीं। नंद बाबा के घर पहुंचकर वासुदेव ने द्वार खटखटाए, द्वार तुरंत खुल गए। मानो नंद बाबा द्वार के पीछे इसी प्रतीक्षा में तो खड़े हों कि कब वासुदेव आए और वे द्वार खोले। नंद बाबा अपने मित्र को देखकर आश्चर्य से बोले, मित्र वासुदेव, तुम यहां इस समय? तुम तो कंस के कारागार में थे। वासुदेव ने उनकी बात काटते हुए कहा, प्रिय मित्र, इस टोकरी में देवकी की 8वीं संतान है। पापी कंस का काल है। भगवान विष्णु की आज्ञा से इसे मैं तुम्हें सौंपने आया हूँ। अपनी सुरक्षा के साए में तुम इसे पालो। भगवान की यह भी आज्ञा है कि इसके बदले अपनी नवजात कन्या तुम मुझे दे दो। नंद बाबा मुस्कुराए, मैं समझ गया मित्र, जरा प्रतीक्षा करो। उन्होंने टोकरी से नवजात शिशु को उठाया और भीतर गए, जहां पलंग पर उनकी पत्नी यशोदा अपनी नवजात बालिका के साथ सो रही थी। नंद बाबा ने वासुदेव के बालक को यशोदा के बगल में लिटाकर अपनी बालिका को वासुदेव की टोकरी में रख दिया। दोनों मित्र केवल एक दूसरे को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते रहे। वासुदेव ने बालिका को टोकरी से उठाकर देवकी की गोद में रख दिया। देख रहे हैं आप कैसे यशोदा मैया के आंगन में आ गए, कैसे गोकुल की गलियों को हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने ठिठोलियां करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन गलियों में दौड़ते हुए नन्हे कान्हा, कभी घुटनों के बल चलते, कभी अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश करते, कभी ऐसी शरारत करते कि बस पूरा घर उनके पीछे दौड़ता रहता। कल्पना कीजिए कि मैया ने घर में माखन रखा है और कान्हा की नजर उस माखन पर पड़ गई। अब खाना सोच रहे हैं कि इसे कैसे पाया जाए। मटकी इतनी ऊपर है, अकेले कैसे पहुंचेंगे? तो कान्हा अपने दोस्तों को बुलाते हैं। एक के ऊपर एक चढ़कर माखन की मटकी तक पहुंचते हैं। और माखन मिल गया तो सिर्फ खुद तोड़ी खाएंगे, अपने दोस्तों को भी तो खिलाएंगे। और यहीं से कान्हा की शरारत में छिपी खूबसूरती है कि उनकी खुशी अकेले की खुशी नहीं है बच्चों। ये है हमारा आज का दूसरा ज्ञान कि कान्हा ने कभी किसी भी चीज का उत्सव अकेले नहीं मनाया। माखन मिला तो बांट के खाया, और जब मटकी फूटी तब डांट भी मिल बांट कर खाई। तो बच्चों, जो भी करना है मिल बांट कर करना है। खुश होना है तब भी, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तब भी सबके साथ शेयर करनी है। तो बस ये जो शरारत है ना, कई बार आपने सुना होगा माखन चोर कहते हैं कृष्ण को। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कृष्ण की माखन चोरी की कहानी हमें क्या सिखाती है? इन छोटी छोटी शरारतों में वो कितने लोगों से एक साथ जुड़ते हैं, कितने लोगों के बाल कान्हा बन जाते हैं वो। अपनी इन बाल सुलभ चेष्टाओं से कितने लोगों का दिल हर लेते हैं कान्हा, है ना। इसीलिए तो कृष्ण का गोकुल हमें बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी रिश्तों में है, तो रिश्ते बनाइए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह कान्हा ने अपनी छोटी छोटी सी बाल लीलाओं से कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। तो अब आते हैं पूतना वध पर। कंस को ये विश्वास हो गया था कि उनके विरुद्ध कोई दैवीय षड्यंत्र रचा गया है। तभी तो देवकी की आठवीं संतान को किसी और के गर्भ में भेज दिया गया। इसलिए अपने काल को समाप्त करने के लिए कंस ने भयानक राक्षसी को बुलाकर आज्ञा दी। पूतना मथुरा या उसके आसपास के क्षेत्र में सावन माह में किसी स्त्री ने मेरे काल रूप को जन्म दिया है। तुम इस समूचे क्षेत्र में सावन में जन्मे बच्चों को समाप्त कर दो। फिर क्या था, पूतना ने विष का लेप किया और गोकुल जा पहुंची। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धर के नंद बाबा के घर गई और अन्य स्त्रियों की भांति कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दुलारने लगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया अंदर गई, पूतना ने अवसर ताड़ कर कृष्ण जी को अपना दूध पिलाना चाहा। लेकिन फिर क्या था, बाल कान्हा ने उनके प्राण ही खींच लिए और मायावी पूतना मृत होकर जमीन पर आ गिरी। देखा आपने किस इरादे से भेजा गया था पूतना को कंस के द्वारा। लेकिन बच्चों, यहीं से बाल कान्हा की छोटी छोटी सी दैवीय शक्तियों से लोग ताकते रह गए कि ये क्या है। पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा के आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि हो ना हो, इसके पीछे कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। इसके बाद क्या था, पूतना की मृत्यु ने कंस के सभी संदेह मिटा दिए। सिद्ध हो गया कि नंद बाबा का बालक कृष्ण ही उनका काल है। इसलिए इस बार कृष्ण को मारने के लिए बच्चों, कंस ने तृणावर्त नामक मायाधारी राक्षस को भेजा। उसने क्या किया पता है, वो वायु का झोंका बनकर गोकुल पहुंचा। उस समय कृष्ण को गोद में लिए यशोदा घर के बाहर बैठी हुई थी। तृणावर्त की माया से यशोदा को एकाएक कृष्ण का भार बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अचानक होने वाले इस बदलाव को देखकर वो घबरा गईं और उन्हें पालने में लिटाकर नंद बाबा को बुलाने भीतर भागी। इसी बीच अवसर पाकर तृणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया, अपने कंधे पर बैठाकर बवंडर बनकर आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंच तृणावर्त ने बालक कृष्ण को मारने के लिए अपने शरीर को खूब झटके दिए, टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन कृष्ण तो जोंक की तरह उसकी गर्दन से चिपक गए और बाज के पंजों की तरह उनकी उंगलियां दुष्ट राक्षस की गर्दन में गढ़ती जा रही थीं।
4: तृणावत उनके बोझ तले दबकर धड़ाम से धरती पर आ गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब माता यशोदा, नंद बाबा और दूसरे ग्वाल बाल वहां पहुंचे तो उन्होंने बालक कृष्ण को पर्वताकार दानव के मृत शरीर के पास अपना अंगूठा चूसते देखा। सुना बच्चों, कैसे छोटे से नन्हे से बालक बनकर कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटा दी और इसके बाद फिर धीरे धीरे लीलाएं और चमत्कारों का क्रम आगे बढ़ता गया। एक दिन माँ यशोदा ने बालक कृष्ण को मिट्टी फांकते हुए देखा, चिल्लाती हुई कृष्ण की ओर दौड़ी और आकर उनके कान पकड़ लिए। कृष्ण ने सिर हिलाकर मिट्टी खाने के आरोप को नकार दिया। यशोदा ने बालक को मुंह खोलने पर मजबूर किया ताकि वो उंगली से मिट्टी बाहर निकाल सके। नन्हे कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा ठगी रह गई। कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का विहंगम दृश्य नजर आ रहा था। वात्सल्य और भक्ति से विभोर होकर यशोदा ने कृष्ण को अपने अंक में भर लिया। ऐसे ही एक दिन फल बेचने वाले की पुकार सुनकर बालक कृष्ण फल खरीदने मुट्ठी भर चावल लेकर बाहर की ओर दौड़े। जब फल वाली तक पहुंचे तब सारे चावल उंगलियों के बीच से होकर दाना दाना गिर गए। फल वाली ने बालक के भोलेपन पर न्योछावर होकर काफी सारे फल वैसे ही दे दिए। फल वाली जब घर पहुंची तो अपनी टोकरी देखकर विस्मित रह गई। टोकरी में उसके बचे फल मूल्यवान रत्नों की ढेरियों में परिवर्तित हो गए थे। तो बच्चों, ये कान्हा की बाल लीलाएं आखिर मैं आपको सुना क्यों रही हूं? पहले तो ये बताइए कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, गीत गोविंद सुनती हूँ और फिर मैं बहुत सुंदर सुंदर पद सुनती हूँ जो कान्हा के लिए लिखे गए हैं, मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चे को कान्हा की बाल लीलाएं जाननी चाहिए। बच्चों, जब उन्हें सुनो तो जीवन का मार्ग दिखाई देता है, जब उनके बारे में पढ़ो तो जीवन की कठिनाइयां ऐसे लगती हैं जैसे वो दानव थे ना, आते तो थे कभी बवंडर का रूप लेकर, कभी मायावी राक्षस तरह तरह की माया रच कर आते थे, लेकिन कृष्ण के सामने बहुत बोने नजर आते थे। तो ऐसे कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस रूप में कृष्ण को देखते हैं वो आपको उसी रूप में नजर आते हैं। कभी वो द्रौपदी का चीर बन जाते हैं, कभी वो पूतना को जमीन पर गिराने वाला बालक बनकर अपनी ताकत दिखाते हैं। ऐसे कान्हा की कहानी मैं आपको सुनाकर आज सच मायने में बच्चों खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य ही तो है जब आप जैसे नन्हे मुन्ने अगर रेडियो कान से लगाए सुनना चाह रहे हैं कि कुछ और कहानियां बताइए। आ रही है ना आपके मन में ये बात? तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको और बहुत सारी कहानियां सुनाने का दिल कर रहा है, लेकिन समय की ये थोड़ी सी मांग है कि आज थोड़ी कम कहानियां सुनाओ, अगली बार थोड़ी और सुना देना। तो मैंने सोचा है कि ये कान्हा की बाल लीलाएं ना बच्चों अगली बाल सभा में भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन अभी एक बात और बता देती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि माँ यशोदा का ध्यान आकर्षित करने के लिए ना कृष्ण हर तिकड़म का सहारा लेते थे। एक दिन यशोदा माँ दही बिलो रही थी तो कृष्ण ने दूध पीने के लिए रो रो कर घर सिर पर उठा लिया। उसके बाद क्या था, यशोदा अपनी गोदी में बिठाकर दही बिलोते हुए दूध पिलाना पड़ा। तभी यशोदा को याद आया कि रसोई में वो चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखाई हैं। बदहवासी में वो कृष्ण जी को वहीं छोड़कर भीतर भागी। बालक कृष्ण को अपनी उपेक्षा पर अत्यंत क्रोध आया और बालक कृष्ण ने दही वाला घड़ा मथनी मारकर फोड़ दिया। सारा दही फर्श पर फैल गया। अब कृष्ण ने उस कोठरी की ओर कदम बढ़ाए जहाँ छत से लटकते घड़ों में मक्खन रखा था। नटखट बालक ने वहां रखी बड़ी सी ओखली पर चढ़कर कुछ घड़े नीचे पटक दिए। घड़े गिरने की आवाज सुनकर कुछ बंदर और नन्हे कान्हा के दोस्त कूदकर अंदर आ गए और माखन की दावत उड़ाने लगे। कृष्ण स्वयं एक घड़ा लेकर ओखली पर बैठ मुट्ठी भर भर कर माखन फाटने लगे। आधा मक्खन मुंह में जा रहा था और आधा शरीर पर और आधा कपड़ों पर। जब यशोदा मैया बाहर आई तो सारी दही फर्श पर फैली देखकर सन्न रह गई। उन्हें कृष्ण के दही में लिथड़े नन्हे पैरों के निशान दिखे तो मक्खन की कोठरी की ओर गए थे। वो बस दौड़कर कोठरी के द्वार पर पहुंची और वहां उड़ रही मक्खन की दावत का नजारा देखकर संयम खो बैठी और क्रोधित स्वर में कृष्ण पर चीखी। माता यशोदा का तमतमाया मुखड़ा देखकर कृष्ण को आभास हो गया कि आज खैर नहीं। कृष्ण ओखली पर से कूदकर खिड़की से बाहर भागे। एक डंडा लेकर यशोदा मैया भी पीछे पीछे दौड़ी और माँ बेटे की दौड़ कमरों बरामदों आंगन को नापती हुई काफी देर तक जारी रही। अंत में यशोदा ने जब कृष्ण को पकड़ लिया तो नटखट ने ऐसा प्यारा सा मुखड़ा बनाया और रोना शुरू कर दिया कि यशोदा माँ भी नरम पड़ गई। बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें नहीं दंड दूंगी, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा दंड तो दूंगी। तो यशोदा ने कृष्ण को कुछ समय के लिए उसी बड़ी ओखल से बांधने का प्रयास किया, पर रस्सी जरा छोटी पड़ गई। यशोदा ने और रस्सी जोड़ी, वो भी छोटी रह गई। कई रस्सियां जोड़ी, पर हर बार रस्सी जो थी वो रहस्यमय ढंग से छोटी पड़ती रही। अंत में हताश होकर यशोदा रो पड़ी और बोली कि अरे दुष्ट, क्यों सताता है, क्या मिलता है मुझे सताकर। तब कृष्ण को यशोदा माँ पे तरस आया और वो स्वयं स्नेह पाश में बंध गए। अब आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जब नटखट बालक के रूप में आते हैं तो माँ की डांट खाते हैं। तो आप जैसे बच्चे मुझे कभी कभी मिलने पर जब ये बताते हैं कि मम्मी डांटती बहुत है, तो उन सब बच्चों के लिए आज मुझे ये कहना है कि देखिए ना, कान्हा भी तो जब बचपन में बच्चा बनकर आए थे तो माँ यशोदा की कितनी डांट खाई थी। और तो और, प्रभु श्री कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता, वो माता यशोदा ही थी जिन्होंने उन्हें स्नेह पाश में बांध लिया। तो ऐसी ऐसी बाल लीलाओं को जबकि मैं आपको सुना रही हूँ और फिर घड़ी भी देख रही हूँ तो लग रहा है कि आज थोड़ी और बात करनी चाहिए थी, पर नहीं। आज इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतनी सारी मैंने आपको बाल लीलाएं सुनाई हैं, और यकीन मानिए बच्चों, मैं यहाँ अभी ख़त्म नहीं करूँगी। मैं बाल सभा में जब अगली बार आपसे मिलूँगी तो थोड़ी और कृष्ण लीलाएँ बताऊँगी। इसलिए बच्चों, क्योंकि हमें कृष्ण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें हर दिन कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ों का सम्मान, दोस्तों की दोस्ती का मान, और दुनिया में जो लोग राक्षस समान हैं, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई गंदी आदत भी हो सकती है, क्योंकि अब तो राक्षस होते नहीं, तो आपकी गंदी आदतें, आपका आलस, आपका बिल्कुल भी डिसिप्लिन में ना होना, ये सब क्या बोलते हैं इनको, राक्षसी प्रवृत्तियां, है ना। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जब बच्चे देर से उठते हैं तो क्या बेटा तुम्हारे अंदर बहुत राक्षसी प्रवृत्ति आ रही है। तो ये प्रवृत्तियां ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा इंसान बना देती हैं। एक दिन मैंने आपको एक कविता सुनाई थी कि बूंदों का आखिर क्या था दोष, एक बूंद सीप पर गिरेगी और मोती बन जाएगी, दूसरी बूंद नाली में गिरेगी और कीचड़ कहलाएगी। तो बच्चों, आज की ये कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी संगत का भी ख्याल रखिएगा, और अगर आपको बाल लीलाएं और सुननी है तो अगले हफ्ते तक मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते चलते वो समय आ गया है जब हम और आप छोटे छोटे से कुछ संकल्प लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, अब ये जो मुरली की धुन बज रही है इसमें शांति से बैठने का प्रयास कीजिए। कृष्ण को समझने के लिए बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है बच्चों, कभी कभी उन्हें समझने के लिए हमें आप जैसा बच्चा बनना पड़ता है। तो बस आज इस बाल सभा में पहला संकल्प यही है कि थोड़ा थोड़ा पूरे दिन मुस्कुराएंगे। आज पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेलेंगे भी, किसी दोस्त को गले लगाएंगे, माता पिता का बहुत सम्मान करेंगे। और हाँ, प्रकृति के करीब जरूर जाएंगे, क्योंकि कान्हा कभी गैया को चराने के बहाने, कभी गोपियों को छेड़ने के बहाने, कभी पेड़ पर बांसुरी बजाने के बहाने प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। और ये स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मैं वृक्षों की बात करूं तो वृक्ष में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बहुत ख्याल रखेंगे। तो अब इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ आज बाल सभा को समाप्त करें। उससे पहले आप सब आंखें खोल लीजिए, अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से आंख पर लगाइए और इसी मुरली की धुन पर शांति से अब मुझे यानी अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए। ठीक है बच्चों, अगली बार बाल सभा में फिर ऐसी ही बातें लेकर जल्द ही मुलाकात होगी। चलूँ अभी, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत सारा स्नेह। बच्चों, मिलते हैं अगली बार बाल सभा में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय था कान्हा की बाल लीलाएं। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंधानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेक गुरु। इसके अंतर्गत सुनिए एआई पार्ट वन, विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नकाइच से रत्नेश सोनी की बातचीत।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि एआई क्या है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये है क्या, किसके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नकाइच। आप मैनिट यानी MNIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
2: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
3: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे। इससे हमारा कोई उत्ता सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के है उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है जी। तब मैंने धीरे धीरे इस पे शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को, चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनिट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके दे देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। तो आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ 2 मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय में नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
2: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
3: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नजरों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक, या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक, या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य ये है कि वो टेंजेबल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कंप्यूटर था, जैसे TV था, वो एक प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे इंटरनेट है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, चलिए इंटरनेट में मैं कहता हूँ कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरलेस, लेकिन AI जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे, वो AI कुछ क्षणों में, कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे, तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजेबल माध्यम, मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजेबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। ChatGPT आपने बोला, अब ChatGPT आने से पहले लेखकों के, कॉपी राइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपीराइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही AI है।
2: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहे, एक हाँ। बात दूसरी चीज, उतना समय भी नहीं लग रहा।
3: बिल्कुल।
2: तो क्या माने AI आने से लोगों के काम छिन गए?
3: देखिए, कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद, जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क से, तो ChatGPT उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज ChatGPT में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना है, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा, ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे ज़रूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा, IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक हैं और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
2: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं?
3: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे, वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी, हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शा ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की अच्छे नगरी नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज़ को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे है, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीज़ों या तकनीक के प्रति उनकी पहुँच जो है वो और सुविधायुक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
2: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
3: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के ही जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
2: जी।
3: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, 1 घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर 1 घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है। बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए, तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं, आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
2: वो डीपी में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
3: हाँ,
2: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अपने बात ही शुरू करी थी विषय भी अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
3: हाँ।
2: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
3: देखिए, आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI मान लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा, इमेजिन यू आर अ टीचर
2: जी,
3: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट
2: जी,
3: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा, उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई हैव अ स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से बी ए इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया है। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट, उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है, और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द, अगले वाक्य, अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा, आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है, वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है, जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे पर टीचर, उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
2: जी।
3: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है, जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, ChatGPT से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी, तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है, अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
2: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज AI पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर AI है क्या, AI कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की AI पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया, इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन, प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद अदिति।
3: हमने पिछले अंकों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में बातचीत की, जिसमें हमने उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना, और आज का यह जो अंक रहेगा वह आधारित रहेगा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है। कुछ बच्चे होंगे जिनके मन में तैयारी करने की इच्छा भी होगी, उन्हें मार्गदर्शन भी चाहिए। हमें यह आशा है कि यह एपिसोड उनके लिए ज़रूर लाभदायी सिद्ध होगा। कर्नल साहब, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है रिक्रूटमेंट। भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं, 3 महत्वपूर्ण अंग हैं उसके, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इनमें रिक्रूटमेंट की एक प्रक्रिया होती है जो समय समय पर हमने देखा है एडवर्टाइज की जाती है समाचार पत्रों में या अगर हम उनकी वेबसाइट्स देख लें, लेकिन कई ऐसे स्तर रहते हैं जिससे रिक्रूटमेंट शुरू होता है। एक अधिकारी वर्ग के लिए अलग हो सकता है, सैनिक के लिए अलग हो सकता है, तो इन सब पर हम इस एपिसोड में चर्चा करना चाहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो उस चर्चा को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है रिक्रूटमेंट को लेकर कि सिर्फ अगर हम भारतीय थल सेना की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, तो रिक्रूटमेंट की जो शुरुआत है या रिक्रूटमेंट किस स्तर पर होती है और उसके लिए कैसी तैयारी चाहिए?
4: आदिति, इंडियन आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होता है
3: जी,
4: वो एक्चुअली 2 स्तर पे होता है। एक अधिकारी स्तर पे होता है, दूसरा जो है जवान के स्तर पे होता है। हम इन दोनों को एक एक करके
3: बिल्कुल
4: इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं, जो एक अगर जवान के तौर पे अगर आप रिक्रूटमेंट में जाना चाहते हैं, जो भी जाना चाहते हैं, तो अभी एक तो इसमें एक मेजर चेंज आया है। एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम, और इसमें जो जाने वाले सोल्जर्स हैं उनको अग्निवीर कहा जाता है। ये इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं ये जानना ज़रूरी है और मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो है सर्विस जो है 4 साल के लिए है, मतलब इट इज़ अ टूर ऑफ ड्यूटी जो कि 4 साल के लिए है, जिसमें कि शुरू के 6 महीने जो है ट्रेनिंग है और 3.5 साल का जो है सर्विस का पीरियड है। और अब से जो भी रिक्रूटमेंट है वो सारा इसी के थ्रू है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में जो जवान के तौर पे भर्ती होते हैं, कुछ एक कैटेगरीज को छोड़ के, 1-2 कैटेगरी मेडिकल वगैरह को छोड़ के टेक्निकल, बाकी अदरवाइज जितनी भी जवानों की भर्ती है वो इसी

0: योजना सिर्फ और सिर्फ भारतीय थल सेना के लिए?
1: नहीं, ये तीनों के लिए है, थल जल नभ। तीनों सेना में जो रिक्रूटमेंट है जवान का अग्निवीर के माध्यम से ही है। और इसमें डिस्चार्ज कंप्लीट होने पे 4 साल के बाद अग्निवीर को एक सेवानिधि पैकेज मिलता है। इस अग्निवीर में से जो 25% जो है उनको रिटेंशन के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और वो अपनी सर्विस जैसे कि नॉर्मल 15 साल की सर्विस जो है फिर वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये मतलब एक स्कीम इस तरह से है। और ये अग्निवीर जो है जैसे कि नॉर्मल एक सर्विसमैन होता है, ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अग्निवीर का जो ये कैटेगरी है इसमें इनको किसी तरह का ग्रेच्युटी या पेंशन या जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होती है वो या कैंटीन फैसिलिटीज एक्स सर्विसमैन का स्टेटस ये नहीं मिलता।
0: कर्नल साहब, अगर 4 साल तक रहते हैं वो तो उनको ये सारे सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं 25% हैं जो सैनिक के तौर पे आर्मी में या किसी भी सशस्त्र सेना में जाएंगे उनको बकायदा ये सारी सुविधाएं मिलेंगी।
1: वो फिर वो उनकी पेंशनेबल सर्विस होगी, वो अलग से पेंशनेबल सर्विस होगी। ये एक अलग कैटेगरी है 4 साल के लिए, सर्विस टूर है जिसमें कि जवान जब जाएंगे वो 4 साल की सर्विस करके डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो सभी जो हैं 4 साल के बाद डिस्चार्ज होंगे, उसमें से फिर 25% उनके परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर, उनकी अपनी वॉलंटियरशिप के ऊपर उनको वापस आर्मी में भर्ती किया जाएगा। फिर वो अपना एक नया मतलब टेन्योर शुरू करेंगे एज ए सोल्जर, और फिर वो अपना जो नॉर्मल टर्म जैसे आज होता था पहले जैसे 15 साल की जो सर्विस होती थी सोल्जर की जो पेंशनेबल सर्विस वो पूरी की पूरी करेंगे।
0: और ये 15 साल 4 साल के बाद की है?
1: ये 15 साल 4 साल के बाद में अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं 25% में अगर आप आते हैं। इसमें जो एज लिमिट है मतलब आपकी उम्र 17.5 साल से ऊपर होनी चाहिए और 21 साल से कम होनी चाहिए। ये रिक्रूटमेंट जो है ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे है, मतलब कि जो भी एलिजिबल हैं वो इसमें भर्ती हो सकते हैं, इसके थ्रू भर्ती हो सकते हैं।
0: कर्नल साहब, इसके लिए कोई शैक्षणिक अर्हता है?
1: इसमें जो है जो सोल्जर्स जाते हैं देखिए उसमें क्या होता है, इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक तो सबसे पहला होता है जनरल ड्यूटी
0: जी।
1: तो जो जनरल ड्यूटी के लिए जो सोल्जर्स जाते हैं उनकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th या मैट्रिक होनी चाहिए 45% एग्रीगेट के साथ, और 33% हर सब्जेक्ट में उनके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि एक तरह से मिनिमम पास लेवल पे होने चाहिए। उसके बाद अगर ये टेक्निकल लेवल पे जाते हैं तो 10+2 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए टेक्निकल्स के लिए, और मिनिमम उसमें जो है 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में और 40% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। और अगर जो है क्लर्क या स्टोर कीपर के तौर पर अगर वो भर्ती होते हैं तो 10+2 या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम, यानी कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो सकता है, विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। और दूसरा क्या होता है, ट्रेड्समैन होते हैं
0: जी।
1: ट्रेड्समैन में मतलब जैसे कुक होते हैं, बार्बर होते हैं, तो इनके लिए दो कैटेगरी दी है, एक 10th पास की होती है, 8th पास की होती है। तो 10th पास की जो कैटेगरी में जो ट्रेड्समैन होते हैं वो सिंपल मतलब 10th पास होने चाहिए, उनका ये होना चाहिए कि 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। 8th पास के लिए भी यही है कि सिंपली वो 8th पास होने चाहिए। तो ये जो कैटेगरीज हैं जिसमें अग्निवीर जाते हैं तो उनकी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है।
0: किसी बच्चे ने जैसे मान लीजिए 8वीं कक्षा में कोशिश की, वो असफल रहा, क्या वह पुनः प्रयास कर सकता है 10वीं कक्षा में, या अगर उसने साइंस स्ट्रीम लिया है तो फिर 10+2 के बाद वो कोशिश कर सकता है अग्निवीर के लिए?
1: देखिए जो एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन ले रहा है उसको एजुकेशनल सिस्टम में अगर वो मान्य है
0: जी
1: तो बिल्कुल जो है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो स्कूल होते हैं उससे उसने वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हासिल करी है तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, वो इनके लिए वैलिड है ये
0: जी।
1: अच्छा, जब ये अपनी सर्विस में होंगे, जैसे जब ये सर्विस कर रहे हैं
0: उन चार सालों के दौरान
1: तो जितने आर्मी में ऑनर्स एंड अवार्ड्स होते हैं
0: जी,
1: यानी कि जो लड़ाई के दौरान है
0: जैसे PVSM या AVSM
1: या जैसे वीर चक्र है, सेना मेडल है या किसी भी तरह के और जो ऑनर्स हैं अवार्ड्स हैं वो इनके लिए एलिजिबल हैं। सर्विस के दौरान इनको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज और कैंटीन फैसिलिटीज मिलेंगी। 4 साल के बाद इनको ये फैसिलिटीज लागू नहीं है, लेकिन जब सर्विस में है तब उनको ये मिलेगा। इनका जो पे स्केल है वो भी मतलब एक आम सोल्जर से अलग है
0: जी।
1: इनको क्या है कंसोलिडेटेड कस्टमाइज पैकेज मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे इनका 30,000 का पैकेज रहेगा, सेकेंड ईयर में जो है 33,000 का रहेगा, थर्ड ईयर में 36,500 है एंड फोर्थ ईयर में 40,000 है
0: जी।
1: इनका जो 30% है जो पैकेज है वो कंपल्सरली जो इनका सेवा निधि है उसकी तरफ कंट्रीब्यूट होगा और उतना ही गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेंगी
0: जी।
1: तो जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपका 30,000 है तो उसमें से 9,000 आपका कंट्रीब्यूशन चला जाएगा। इट इज ए फंड, एक तरह से फंड है और गवर्नमेंट भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि आपको 4 साल के बाद सेवा निधि का जो पैकेज है वो मिलेगा, वो तकरीबन 10.4 लाख के करीब बन जाता है।
0: मतलब निवृत्ति के पश्चात आपको करीबन 10 लाख के आसपास का अमाउंट मिलेगा
1: और ये नॉन टैक्सेबल है।
0: इस लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के उन युवाओं के लिए जो देश के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। कुछ समय के लिए उनको एक दिशा भी मिल जाएगी, आर्थिक रूप से भी उन्हें मजबूती प्राप्त होगी, शारीरिक रूप से तो होगी ही, मानसिक रूप से भी मिलेगी उनको मजबूती, और साथ ही अगर वो चाहे तो अपना करियर आर्मी में बना सकते हैं। हालांकि उनके परफॉर्मेंस पर, उनकी दक्षता के आधार पर उनको चुना जाएगा। कोई भी अग्निवीर जब इस योजना से बाहर निकलेगा तो उसकी उम्र 27-28 से ज्यादा नहीं होनी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी योजना है हमारे देश के युवाओं के लिए।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड जो सोल्जर है जब वो सोसाइटी में जाएगा तो वो अपना वही डिसिप्लिन आगे बढ़ाएगा और उससे हमारे जो पूरे समाज के लिए ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। वो अलग जगह अलग जाके जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से उसमें जो है वो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। देखा गया है कि जो आर्मी में सोल्जर्स जो होते हैं की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अलग रहती है, काफी अच्छी रहती है, तो इससे हमारे समाज को, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी अच्छी एक मैन पावर मिलेगी। और इसमें थोड़े से और पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जब सर्विस करते हैं तो ये 30,000 का जैसे इनका पैकेज है फर्स्ट ईयर का, उसके अलावा जो एप्लीकेबल अलाउंसेस हैं जैसे अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में हैं, फील्ड एरिया में, तो वहाँ के जो अलाउंसेस होते हैं वो भी उनको एप्लीकेबल रहते हैं।
0: अग्निवीर जो है उनका डिप्लॉयमेंट किसी भी स्थान पर हो जाएगा जैसे कि एक आम सैनिक का होता है?
1: बिल्कुल 100% इनका डिप्लॉयमेंट किसी भी जगह पे किसी भी लोकेशन में हो सकता है, फौज में होता है और उनको वहाँ पे जाने के लिए बाध्य रहते हैं
0: जी,
1: वो उनको करना पड़ेगा
0: जी।
1: इस दौरान जो है इनका एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी रहता है जो कि नॉन कंट्रीब्यूटरी, मतलब उसके लिए अग्निवीर को खुद कुछ नहीं देना होता। 48 लाख का गवर्नमेंट ने इनके लिए कवर रखा है कि इस दौरान अगर उनको कुछ होता है, मतलब उनके माता पिता को ये क्लेम वो कर सकते हैं। अगर खुदा ना खासा किसी की अगर डेथ हो जाती है इसमें तो उसको एक वन टाइम कंपनसेशन है। वो कंपनसेशन का डिपेंड करता है कि किस, तीन कैटेगरीज होती हैं XYZ, मतलब एक कैटेगरी ऐसी होती है कि जिसमें कि जो कि नॉन एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विसेज होती है, जैसे कोई जवान है वो अपनी नौकरी करते समय बीमार पड़ गया और नेचुरल कॉज से उसकी डेथ हो गई जिसमें कि मिलिट्री सर्विसेज को एट्रिब्यूटेबल यानी कि एट्रिब्यूटेबल नहीं है तो वो एक्स कैटेगरी में आता है। इसी तरह से वाई और जेड कैटेगरी वो होती है, वाई कैटेगरी की जिसमें सपोज कोई आर्मी के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो वाई कैटेगरी में आता है जिसमें कि मतलब एट्रिब्यूटेबल होता है लेकिन वो एक्सीडेंट होता है। तीसरा कैटेगरी होती है जब आप किसी दुश्मन से या टेररिस्ट से या इंसर्जेंट से लड़ रहे हैं या फ्लड रिलीफ ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो उस दौरान अगर डेथ होती है तो उसको जेड कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये तीनों कैटेगरीज जो होती हैं, जिस तरह से उसकी डेथ होती है उसके अलग अलग कंपनसेशंस हैं। जैसे अगर वाई और जेड जिसमें कि एट्रिब्यूटेबल मिलिट्री सर्विसेज है, अगर उसमें किसी की डेथ होती है तो उसको 48 लाख का इंश्योरेंस कवर है, साथ में वन टाइम कंपनसेशन है 44 लाख का है। एंड इसके अलावा जो 4 साल में अगर जैसे उसने 2 साल की सर्विस में ऐसा हुआ है तो बाकी 2 साल का उसको पेमेंट और सेवा निधि का जो उसका कंपोनेंट है वो पूरा मिलता है, उसके फैमिली को मिलता है और इंटरेस्ट के साथ। दूसरी हमने जो कैटेगरी बताई थी जो कि एक्स कैटेगरी है जिसमें कि मिलिट्री सर्विसेज के लिए वो एट्रिब्यूटेबल नहीं है नेचुरल कॉज से जिसकी डेथ हुई एक्सीडेंट में होती है तो उसमें उनको वन टाइम एक्सक्रेशन है वो नहीं मिलता,
0: 44 लाख का नहीं मिलेगा, 48 लाख का इंश्योरेंस है, 48 लाख
1: का मिलेगा। उसके अलावा जिस ना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है सेवा निधि में वो विद इंटरेस्ट मिलेगा।
0: और ये तीनों सेनाओं की बात कर रहे हैं आप?
1: जी,
0: तीनों सेनाओं से संबंधित अग्निवीर
1: जो अग्निवीर स्कीम की बात कर रहे हैं वो तीनों के लिए लागू होती है। अब जैसे 4 साल के बाद जब वो सर्विस खत्म करते हैं उनको एक सेवा निधि पैकेज मिलता है
0: जी।
1: उसके अलावा जो है एक गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट देगी जिसको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट बोला जाता है, जिसमें कि उन्होंने सर्विस के दौरान इन डिटेल लिखा जाएगा कि उन्होंने क्या क्या किया,
0: जी,
1: किस तरह के उन्होंने स्किल्स जो है हासिल करी
0: जी,
1: उस पे उनका कॉम्पिटेंसी लेवल यानी कि
0: जी,
1: कितना
0: जी,
1: अच्छा लेवल रहा
0: जी,
1: तो ये एक कंप्लीट
0: एक तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड रहेगा
1: जी, एक तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड है, बट डिटेल में है काफी
0: जी,
1: जो है वो बनाया जाएगा। जैसे 10th में जो आए थे
0: जी,
1: उनको जो है 12th पास का सर्टिफिकेट मिलेगा
0: जी। मतलब बहुत सोची समझी योजना है कि जो हमारे अग्निवीर हैं उनको किसी तरह से भी शैक्षणिक, आर्थिक या अगर व्यवसायिक प्रोफेशनल हानि ना हो, और वो जब 4 साल की सेवा के बाद निवृत्त हो तो एक सशक्त नागरिक के साथ साथ एक इंसान के रूप में अपना योगदान दे पाए, अगर आर्मी में जा रहे हैं तो वहाँ, और अगर समाज को जा रहे हैं तो वहाँ। कर्नल साहब, आपने बताया कि उनका एक पूरा एक तरह से जो रिपोर्ट कार्ड है वो उनके 4 साल की सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाएगा, तो उनको क्या कहीं प्रेफरेंस दी जाएगी?
1: जो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे
0: जी
1: अग्निवीर के लिए सीट्स जो हैं रिजर्व करी हैं
0: जी,
1: जैसे कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं उसमें CISF है, CRPF है, BSF है, तो इसमें लेटरल एंट्री के लिए सीट्स रिजर्व करने का प्रावधान रखा है
0: जी।
1: इसके साथ साथ काफी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने पुलिस फोर्सेस में और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी रिजर्वेशन देने का घोषणा करी है।
0: यानी 25% तो सशस्त्र सेना के जो मुख्य अंग हैं उसके लिए हैं, लेकिन उसके अलावा जो और 75% हैं उनके लिए गुंजाइश बनती है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या उससे तर जो पुलिस सेवाएं हैं उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ट्रेन्ड मैन पावर है, तो इसी के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी पसंद करेंगे कि उनको मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने के लिए। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए जो है रिजर्वेशंस की स्कीम्स जो है अनाउंस करी हैं। इसके बारे में डिटेल्स जो है आपको उनकी साइट्स पे जाके पता चल सकती हैं। दूसरा एक और बात यह है कि जो ये अग्निवीर स्कीम के बारे में हमने आपको बताया है, इसमें जो भी बच्चे जो इच्छुक हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, जो भी इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो joinindianarmy.nic साइट है
0: जी,
1: उस पर जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से होता है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही होती है। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ध्यान से पढ़िए। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पहले से आप अपने पास तैयार करके रखिए। बारीक मिस्टेक्स निकलती है, हमने देखा है कि जैसे आपने अपना नाम आधार कार्ड में कुछ लिखा है, आपके पिताजी का नाम आधार कार्ड में कुछ लिखा है, लेकिन जो आपके सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और हो जाता
0: नहीं
1: है।
0: हो रहा,
1: जैसे किसी का नाम है RK सिंह और आधार कार्ड में उन्होंने लिखाया हुआ राम कुमार सिंह लिखाया हुआ है और उनके जो सर्टिफिकेट है उसमें RK सिंह लिखा हुआ है, तो वो मान्य नहीं होता है और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो कि हमने आम देखा है कि ऐसा होता है। इसी तरह से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी इंश्योर करिए कि वो करेक्ट लिखा हो और सारे डॉक्यूमेंट्स में एक ही हो। आपका होम एड्रेस भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और हर जगह एक ही होना चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आप एक अपना प्रॉपर ईमेल आईडी बनाइए, अपना मोबाइल नंबर भी जो है प्रॉपर रखिए, जिसको आप चेंज मत करिए, क्योंकि जितने आपके मैसेजेस आएंगे, जितने आपके रिक्रूटमेंट के मैसेजेस आएंगे, वो सारे के सारे उसी पे आएंगे, आपके ईमेल पे ही एडमिट कार्ड भी आएगा, बाकी चीजें भी आएंगी। तो ये जो चीजें होती हैं बहुत छोटी छोटी बारीक होती हैं, लेकिन कई बार इनके कारण रिजेक्शन हो जाता है। उसमें ध्यान से देखिए कि उसमें उन्होंने फोटो कितना बड़ा मांगा है, कितने KB का मांगा है, नहीं तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ये तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन की बात है। इसके बाद जैसे रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं,
0: बिल्कुल मैं इसी पर आ रही थी जी,
1: उसके लिए भी मतलब हमको पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिटन टेस्ट में, वो ऐसा नहीं होते कि वो आप आंसर नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे उसी लेवल के पूछे जाते हैं जिससे कि एक आम बच्चे से जो 10th पास
0: अपेक्षाएं रहती
1: है, अपेक्षाएं रहती हैं वही पूछा जाता है। दूसरा ये मैं एक और बात बोलूंगा यहाँ पे कि जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम्स होते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, हर चीज ऑनलाइन है, तो आपको किसी भी गलत आदमी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको बोलता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो वो नहीं हो सकता है
0: जी।
1: ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हैं, तो इसमें आप अपना पूरा ध्यान अपने डॉक्यूमेंटेशन और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगाइए, एंड मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी 100% आपका सिलेक्शन होगा।
0: कई बार हम लोग आम नागरिक सुनते हैं कि आर्मी में कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए या चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, तो अग्निवीर के लिए भी ये क्राइटेरिया क्या लागू रहेंगे?
1: जी हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है उनकी ना कैटेगरीज होती हैं। ये कैटेगरीज हमारे प्रादेशिक एरिया के हिसाब से अलग अलग हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग हैं, उसके बाद प्लेन्स के लिए अलग हैं। तो जब आप इसमें जाएंगे तो डिटेल में इनके बारे में दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है कि जब आप जैसे ही इस साइट में जाएंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी .net में, तो वो आपको बकायदा एक फॉर्म खोलते हैं जिसमें कि वो आपके एलिजिबिलिटी के लिए जब आप अपनी पूरी डिटेल भर देंगे तो वो अपने आप आपको बता देगा आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और कंप्लीट डिटेल्स कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, उसके अलावा और क्या क्या मेडिकल क्राइटेरिया, वो सभी कुछ दिया हुआ है।
0: कन्हैया साहब, यानी कोई भी हमारा युवा जो इच्छुक है अग्निवीर बनने के लिए, तो वो जो आपने साइट बताई है उस पर जाकर बारीक से बारीक डिटेल भी जान सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ललती, ये बिल्कुल सही बात है। आप वो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो उनके आसपास जो रिक्रूटमेंट ऑफिस होते हैं उसमें भी जा सकते हैं, वो उनकी पूरी मदद करते हैं, उनको पूरी जानकारी देते हैं।
0: मान लीजिए किसी की इच्छा है कि वो अग्निवीर बनना चाहे, लेकिन वो एयरफोर्स के लिए बनना चाहे या आर्मी के लिए बनना चाहे या नेवी के लिए, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है क्या, या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, या उसने किस तरह से परफॉर्म किया है, किस तरह से होता है इनमें?
1: तीनों की जो रिक्रूटमेंट है वो अलग अलग होती है।
0: अच्छा।
1: आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तीनों की अलग अलग अपने अपने रिक्रूटमेंट्स हैं, और उनके कॉमन फैक्टर्स तो सेम रहते हैं, लेकिन जो उनके सर्विस के हिसाब से भी कुछ क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है, तो उसमें उनको सबको अलग अलग साइट पे जाके ही पता चलेगा उसके बारे में।
0: मैं श्रोताओं के लिए एक बार फिर बता दूं कि joinindianarmy.nic.in joinindianarmy.nic.in पर जाकर वो अधिक और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू अदिति, जय हिंद श्रोताओं।
2: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है अदिति गौड़ को, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या। हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML, जमीन से रक्षा की गति की कहानी।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। पिछले एपिसोड्स में दादू और रुचि यात्रा पर गए थे, जहां रुचि ने विशाल युद्ध पोतों, अत्याधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक और समुद्री सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज उनकी यात्रा समुद्र से आगे बढ़कर वापस धरती पर आ पहुंची है। आज रुचि जानेगी उस संस्था की कहानी जिसने भारत के विकास, रक्षा और अधोसंरचना निर्माण को नई गति दी। तो चलिए दादू पोती के संवादों के साथ सुनते हैं BEML की प्रेरक गाथा।
1: दादाजी, गोवा की यात्रा बड़ी यादगार थी। बहुत थक गई हूँ, अब घर में आकर बड़ा सुकून लगा है। दादू, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न नए नए तैयार कर दिए हैं।
2: अच्छा बेटा, देखो प्रश्न तो तुम्हारे मन में बहुत तैयार होते रहते हैं, मुझे जरा पहले एक गिलास पानी पी लेने दो।
1: हाँ दादू, ये लीजिए आपका पानी।
2: बेटा, यही तो यात्रा का सबसे बड़ा लाभ होता है। इन यात्राओं से जितना सीखो, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और बढ़ती जाती है।
1: दादू, GSL में हमने देखा कि जहाज बनाना कितना कठिन काम है। हजारों पुर्जे, सैकड़ों इंजीनियर और वर्षों की मेहनत लगती है।
2: बिल्कुल सही, कोई भी जहाज बनाना आसान काम नहीं है।
1: लेकिन दादू, समुद्र के अलावा जमीन पर भी तो देश के दूसरे संस्थानों के सामने ऐसी ही बड़ी बड़ी चुनौतियां होती होंगी।
2: हाँ हाँ बेटा, पहाड़ों में सड़कें बनानी हो, खदानों से खनिज निकालना हो, सेना के लिए भारी वाहन तैयार करने हो या मेट्रो रेल चलानी हो, इन सभी कार्यों के लिए खास संसाधनों की जरूरत होती है।
1: और वो काम करती है BEML। सही कहा ना आपकी रुचि ने?
2: हाँ हाँ बेटा, BEML का नाम सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसका योगदान बहुत बड़ा है रुचि बेटा। रुचि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अब तुम मुझसे इसी विषय पर जानना चाहती हो?
1: दादू, आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। मेरे मन में आज BEML के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो अब आप मुझे इसी बारे में विस्तार से बताएंगे।
2: तो सुनो बेटा, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया था, क्योंकि उस समय इसका मुख्य कार्य भारी अर्थ मूविंग मशीनें बनाना था। लेकिन समय के साथ संस्था का कार्य क्षेत्र इतना बढ़ गया कि आज ये आधिकारिक रूप से BEML लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। फिर भी BEML का ऐतिहासिक विस्तार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ही माना जाता है।
1: दादू, इसका इतिहास कितना पुराना है और इस संस्थान की स्थापना कब हुई, ये मैं आपसे विस्तार से जानना चाहती हूँ।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML की स्थापना 11 मई 1964 को हुई थी। उस समय भारत एक युवा राष्ट्र था और अपनी औद्योगिक क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा था।
1: दादू, तब देश की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी?
2: उस वक्त देश को भारी मशीनों की जरूरत थी बेटा। खदानें बढ़ रही थीं, बड़े बड़े बांध बन रहे थे, उद्योग विकसित हो रहे थे और अधोसंरचना निर्माण को गति मिल रही थी। लेकिन अधिकांश भारी मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी।
1: यानी तब हमारा भारत आत्मनिर्भर नहीं था?
2: पूरी तरह तो नहीं, इसलिए सरकार ने ऐसी संस्था की कल्पना की जो देश में ही भारी निर्माण और खनन उपकरण बना सके।
1: अच्छा, तभी इस सोच के साथ ही BEML की शुरुआत हुई होगी।
2: बिल्कुल।
1: दादू, शुरुआती दिनों में BEML क्या बनाती थी?
2: सबसे पहले खनन और निर्माण क्षेत्र के लिए भारी मशीनें बनाई जाने लगी।
1: किस तरह की भारी मशीनें दादू, और ये भारी मशीनें काम क्या करती थी?
2: देखो बेटा, बुलडोजर, डंप ट्रक, एक्सकेवेटर, ग्रेडर और अनेक प्रकार के अर्थ मूविंग उपकरण।
1: दादू, ये भला कैसा नाम हुआ, अर्थ मूविंग उपकरण?
2: अरे बुद्धू, मतलब ऐसी मशीनें जो मिट्टी, पत्थर, भारी सामग्री को हटाने, खोदने या स्थानांतरित करने का काम करती हैं।
1: तभी तो इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया होगा।
2: बिल्कुल सही समझा
1: दादू। खदानों में इन मशीनों की क्या भूमिका होती है?
2: देखो बेटा, कल्पना करो, किसी कोयला खदान से लाखों टन मिट्टी हटानी है, क्या ये काम मजदूरों के हाथों से संभव होगा?
1: अरे ना बाबा, उसमें तो जाने कितने साल लग जाएंगे दादाजी।
2: बस यही कारण है कि इसके लिए विशाल डंप ट्रक और एक्सकेवेटर काम में आते हैं। ये मशीनें कुछ ही समय में वो काम कर सकती हैं जिसके लिए सैकड़ों लोगों को कई दिन लग जाएं।
1: मतलब दादू, हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक उद्योगों की रीढ़ यही मशीनें हैं।
2: हाँ बेटा, यदि खदानें ना चलें तो कोयला, लौह अयस्क और अनेक खनिज तत्व और पदार्थ देश के उद्योगों तक नहीं पहुँच पाएंगे।
1: और सड़क निर्माण में BEML का क्या योगदान होता है?
2: वहाँ भी इनका महत्व कम नहीं है बेटा। पहाड़ काटकर सड़क बनानी हो, सुरंग निर्माण करना हो या बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हो, हर जगह भारी मशीनों की जरूरत तो होती है
1: दादू। तो जब भी हम किसी नए राजमार्ग पर चलते हैं, तब उसके पीछे भी ऐसी ही संस्थाओं का योगदान होता है।
2: बिल्कुल, विकास केवल दिखाई देने वाली सड़क का नाम नहीं है बेटा, उसके पीछे वर्षों की योजना, तकनीक और मशीनों की मेहनत होती है।
1: अच्छा दादू, आप ये बताइए ना कि आज BEML का नाम किस क्षेत्र में ज्यादा सुनाई देता है?
2: रक्षा के क्षेत्र में बेटा, क्योंकि समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। देश को रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी समाधान चाहिए थे।
1: दादू, आपने बताया था कि शुरुआत में BEML खनन और निर्माण कार्यों के लिए मशीनें बनाती थी, फिर इसका रक्षा क्षेत्र में जुड़ाव कैसे हुआ?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। जैसे जैसे भारत अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ा, वैसे वैसे सेना के लिए खास तरह के वाहनों और उपकरणों की जरूरत महसूस हुई। तब BEML ने भी रक्षा क्षेत्र में कदम रखा।
1: विशेष वाहन और उपकरण किस तरह के दादू?
2: देखो बेटा, सेना को ऐसे वाहन चाहिए होते हैं जो केवल सामान्य सड़कों पर ही नहीं, बल्कि रेगिस्तान की तपती रेत, हिमालय की बर्फीली चोटियों, दलदली इलाकों और घने जंगलों में भी आसानी से चल सके। कई बार उन्हें भारी तोपें, टैंक, मिसाइलें और अन्य सैनिक सामग्री भी ढोनी पड़ती है।
1: यानी सेना के वाहन साधारण ट्रकों जैसे नहीं होते दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, उन्हें बेहद मजबूत, भरोसेमंद और कठिन परिस्थितियों में काम करने योग्य बनाना पड़ता है। BEML ने ऐसे अनेक विशेष सैन्य वाहनों और सहायक उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: दादू, ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा।
2: निश्चित रूप से, एक सामान्य वाहन और सैन्य वाहन में बहुत अंतर होता है बेटा।
1: दादू, सेना के वाहनों को सामान्य वाहनों से इतना अलग क्यों बनाया जाता है?
2: क्योंकि बेटी, सेना का काम केवल शहरों की सड़कों पर चलना नहीं होता। कभी उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ों पर जाना पड़ता है, कभी तपते रेगिस्तान में, कभी घने जंगलों के बीच।
1: मतलब जहाँ सामान्य वाहन शायद काम ही ना कर पाए।
2: हाँ बेटा, कई बार तो सड़कें भी नहीं होती, फिर भी सैनिकों तक रसद, हथियार और आवश्यक सामग्री पहुंचानी होती है। इसीलिए सैन्य वाहनों को अधिक शक्तिशाली, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जाता है।
1: तो BEML ऐसे ही विशेष वाहन बनाती होगी दादाजी?
2: हाँ बेटा, BEML सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रकार के विशेष वाहनों, भारी परिवहन प्रणालियों और सहायक रक्षा उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।
1: यानी देश की सुरक्षा में भारत के संस्थान इस तरह अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, इन संस्थानों की उन्नत तकनीकों से बने स्वदेशी उपकरण और वाहन राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं।
1: दादू, आपने एक बार एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर का नाम लिया था।
2: हाँ हाँ बेटा, जब कोई विमान हवाई अड्डे पर खड़ा होता है तो उसे सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष वाहन की आवश्यकता होती है।
1: दादू, क्या ये विमान खुद से नहीं जा सकता?
2: कुछ परिस्थितियों में नहीं, लेकिन तब ऐसे ट्रैक्टर उपयोग में लाए जाते हैं बेटा।
1: और वे भी BEML ही बनाती है।
2: हाँ, ये संस्था कई प्रकार की विशेष प्रयोजन मशीनें बनाती रही है।
1: दादू, BEML मेट्रो से भी जुड़ी है?
2: हाँ बेटा, जब भारत में आधुनिक मेट्रो प्रणालियों का विस्तार शुरू हुआ तब मेट्रो कोच निर्माण की आवश्यकता तेजी से बढ़ी।
1: फिर
2: BEML ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और मेट्रो कोच निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: यानी केवल खदानों की मशीनें ही नहीं, यात्रियों को ले जाने वाले कोच भी।
2: यही तो BEML की सबसे बड़ी विशेषता है बेटी। एक और ये खनन और निर्माण कार्यों के लिए भारी मशीनें बनाती है, तो दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र के लिए विशेष वाहन और रेल तथा मेट्रो के लिए कोच भी तैयार करती है।
1: दादू, सच कहूँ ना तो अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि कितना विश्वसनीय है। आखिर एक संस्था इतने अलग अलग क्षेत्र में काम कैसे कर सकती है दादाजी?
2: इसका उत्तर है इंजीनियरिंग क्षमता।
1: मतलब?
2: जब किसी संस्था के पास डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था हो तो वो अलग अलग क्षेत्रों में भी सफल हो सकती है।
1: तो BEML केवल उत्पाद नहीं बनाती बल्कि तकनीकी ज्ञान भी विकसित करती है।
2: बिल्कुल बेटा, किसी मशीन को बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके पीछे वर्षों का अध्ययन, अनुसंधान और परीक्षण छिपा हुआ होता है।
1: मतलब पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी?
2: हाँ, सबसे पहले इंजीनियर मशीन की आवश्यकता को समझते हैं, फिर उसका डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद मॉडल बनाया जाता है और अनेक प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मशीन कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी तरह काम करेगी।
1: यानी हर मशीन के पीछे बहुत सारी वैज्ञानिक सोच होती है।
2: हाँ बेटा, BEML के विशेषज्ञ लगातार नई तकनीकों पर काम करते रहे हैं। वे मशीनों को अधिक सुरक्षित, अधिक शक्तिशाली और अधिक ईंधन कुशल बनाने का प्रयास करते रहते हैं।
1: तो इसका लाभ देश को भी मिलता होगा?
2: निश्चित रूप से बेटा, जब तकनीक देश में विकसित होती है तो विदेशी निर्भरता कम होती है, लागत घटती है और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर समाधान तैयार किए जा सकते हैं।
1: अब समझ में आया दादू कि किसी संस्था की असली ताकत केवल उसके कारखानों में नहीं बल्कि उसके ज्ञान और नवाचार में भी होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, यही ज्ञान और नवाचार किसी संस्था को समय के साथ आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा दादू, क्या इनके पास इनका अपना रिसर्च सेंटर भी है?
2: हाँ हाँ बेटा, नई तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ किसी भी आधुनिक संस्था का आधार होती हैं।
1: और वहाँ किस तरह की रिसर्च और निर्माण होता होगा?
2: वहाँ पे बेटा नई मशीनों के मॉडल तैयार किए जाते हैं, पुराने डिजाइन सुधारे जाते हैं, ईंधन दक्षता बढ़ाने पर बहुत काम होता है और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीक विकसित की जाती है।
1: यानी प्रयोगशाला में जन्म लेने वाला विचार बाद में वास्तविक मशीन बन जाता है दादाजी।
2: ठीक कहा बेटा, एकदम ठीक।
1: दादू, आज की कहानी से मुझे एक बात समझ में आ रही है।
2: और वो क्या है?
1: वो बात ये है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं बल्कि उसके उद्योगों और तकनीकी संस्थानों से भी तय होती है।
2: एकदम सही कहा बेटा तुमने। यदि मशीनें, उपकरण और तकनीक अपने देश में विकसित हों तो राष्ट्र अधिक आत्मनिर्भर बनता है।
1: और BEML उसी आत्मनिर्भरता की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, बातें करते करते पता ही नहीं चला कितना लंबा सफर तय हो गया।
2: हाँ बेटा, और देखो बाहर का नजारा भी लगातार बदल रहा है।
1: अरे दादू, उधर देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। लगता है कोई सड़क या पुल बनाया जा रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा। देश के विकास की कहानी केवल लक्ष्यों और योजनाओं में नहीं लिखी जाती बल्कि ऐसी मशीनों के पहियों और इंजनों की शक्ति से भी आगे बढ़ती है।
1: दादू, तो क्या ऐसी परियोजनाओं में भी BEML की मशीनें उपयोग होती है?
2: हाँ बेटा, सड़क निर्माण, खनन, औद्योगिक परियोजनाएं और अनेक बड़े निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले भारी उपकरणों के निर्माण में BEML ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: दादू, मतलब जब हम कोई नया राजमार्ग, सुरंग या औद्योगिक क्षेत्र बनते हुए देखते हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं ऐसी ही संस्थाओं की मेहनत भी होती है।
2: बिल्कुल सही बेटा।
1: उधर तो देखिए,
2: हाँ।
1: दूसरी पटरी पर एक बहुत लंबी मालगाड़ी जा रही है।
2: हाँ हाँ, और ध्यान से देखो उसके डिब्बो पर क्या रखा है, देखो। हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे थे ना।
1: अरे हाँ दादू, ये तो बहुत बड़े बड़े वाहन लग रहे हैं, कुछ तो सेना के वाहनों जैसे दिखाई दे रहे हैं दादाजी।
2: तुम्हारी नजर तेज होती जा रही है बेटा।
1: सो तो है दादू। अच्छा ये बताइए ना, क्या ऐसे भारी सैन्य वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल के माध्यम से ही पहुँचाया जाता है?
2: हाँ हाँ, अक्सर जब सेना को बड़ी संख्या में वाहन, उपकरण या कोई अन्य सामग्री दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचानी होती है, तब रेल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दादू, मुझे तो सोच कर ही बहुत रोमांच हो रहा है कि किसी वाहन की यात्रा कारखाने से शुरू होकर देश की सीमाओं तक कैसे पहुंचती होगी,
2: और उस यात्रा के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम छिपा होता है बेटा। ये मत भूलना, डिजाइनर, इंजीनियर, तकनीशियन, परीक्षण विशेषज्ञ और उत्पादन कर्मी।
1: ये तो है दादाजी। अच्छा दादू, जब कोई नया सैन्य वाहन बनाया जाता है तो क्या उसे सीधे सेना को सौंप दिया जाता है?
2: नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
1: तो फिर
2: देखो, सबसे पहले इसकी जरूरत को समझा जाता है। सेना बताती है कि उसे किस प्रकार का वाहन चाहिए, कहाँ उपयोग होना है, कितना भार उठाएगा, किस परिस्थितियों में कितना काम करेगा।
1: पर दादू, ऐसा तो जहाज बनाने के पहले भी किया जाता है ना?
2: हाँ हाँ, किसी भी वाहन या तकनीकी उपकरण के पहले उसकी जरूरत क्यों होगी, कैसे उसका उपयोग होगा, ये जानना जरूरी होता है बच्चे।
1: फिर इंजीनियर उसका डिजाइन तैयार करते होंगे।
2: हाँ, उसके बाद मॉडल तैयार होता है, फिर परीक्षणों का लंबा दौर चलता है।
1: परीक्षण? कैसे परीक्षण दादू?
2: देखो बेटा, कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पर, कभी गर्म इलाकों में, कभी भारी वजन के साथ, और कभी लगातार कई घंटों तक चलाकर।
1: ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वाहन हर परिस्थिति में काम करेगा।
2: हाँ, रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीयता सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बच्चे।
1: दादू, आपने गौर किया, जब भी हम किसी बड़े संस्थान के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बात बार बार सामने आती है।
2: क्या बात सामने आती है बेटा?
1: गुणवत्ता दादाजी।
2: क्योंकि गुणवत्ता के बिना तकनीक अधूरी है।
1: और केवल मशीन बना लेना ही पर्याप्त नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं है, मशीन सुरक्षित हो, टिकाऊ हो और लंबे समय तक भरोसेमंद ढंग से काम करे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: तभी तो सेना और रेलवे जैसी संस्थाएं किसी उपकरण पर भरोसा कर पाती हैं दादाजी।
2: एकदम सही कहा बेटा।
1: दादू, BEML का योगदान केवल रेलवे तक ही सीमित नहीं है।
2: हाँ बेटा, भारत में रेल परिवहन के आधुनिकीकरण की यात्रा में भी ऐसी संस्थाओं का योगदान रहा है। विशेष रूप से मेट्रो रेल परियोजनाओं में BEML ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
1: दादू, मुझे याद है जब पहली बार मैं मेट्रो में बैठी थी ना, तो उसकी गति और सफाई देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी।
2: और सोचो, उस आधुनिक अनुभव के पीछे कितनी इंजीनियरिंग, कितनी योजना और कितना उत्पादन कार्य करता होगा।
1: सचमुच दादू, यात्रियों को तो केवल आरामदायक सफर ही दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत दिखाई नहीं देती। दादू, एक बात बताइए ना, अगर BEML जैसी संस्थाएं ना होती तो देश में विकास कैसे होता? क्या तब हमें हर भारी मशीन विदेशों से खरीदनी पड़ती दादाजी?
2: काफी हद तक हाँ, और इससे लागत भी बढ़ती, समय भी अधिक लगता और तकनीकी निर्भरता भी बढ़ती।
1: मतलब आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं है दादाजी, बल्कि आज की जरूरत है।
2: जब देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मशीनें, वाहन और तकनीक स्वयं विकसित करता है, तब उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और क्षमता भी बढ़ती है।
1: अब समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की चर्चा में ऐसे संस्थानों का नाम क्यों लिया जाता है।
2: क्योंकि ये संस्थान केवल उत्पाद नहीं बनाते बेटा, बल्कि राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करते हैं।
1: दादू, आपने BEML के वर्तमान के बारे में तो बहुत कुछ बताया मुझे, लेकिन क्या ये संस्था भविष्य की तकनीकों पर भी काम कर रही है?
2: अरे बेटी, यही तो सबसे रोचक हिस्सा है। आने वाले वर्षों में परिवहन, रक्षा और निर्माण की दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है।
1: मतलब BEML की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, BEML की कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि अब बात होगी भविष्य की नई तकनीकों की। आधुनिक निर्माण की और आत्मनिर्भर भारत के अगले कदमों की।
1: दादू, क्या तकनीक सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है?
2: हाँ बेटा, आज से कुछ दशक पहले जिन मशीनों को अत्याधुनिक माना जाता था, आज उनसे कहीं अधिक उन्नत प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं। अब मशीनों में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी जोड़ी जा रही है।
1: बुद्धिमत्ता मशीनों में?
2: हाँ, आज कई आधुनिक मशीनों में ऐसे यंत्र तंत्र लगाए जा रहे हैं जो उनके प्रदर्शन पर लगातार नजर रखते हैं। किसी खराबी की संभावना हो तो पहले ही संकेत दे देते हैं।
1: यानी समस्या आने से पहले ही उसका पता चल सकता है।
2: बिल्कुल, इससे समय भी बचता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है।
1: तो क्या दादाजी, भविष्य में रक्षा क्षेत्र के वाहन भी और अधिक आधुनिक हो जाएंगे?
2: निश्चित रूप से, दुनिया भर में ऐसे वाहनों पर काम हो रहा है जो कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके, कम रखरखाव मांगे और अधिक सुरक्षित हो।
1: और दादाजी, भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही है कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक विकसित करें और लगातार उसे बेहतर बनाते रहें।
1: मतलब केवल विदेशी तकनीक खरीदना ही समाधान नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं, वास्तविक शक्ति तब आती है जब तकनीक का ज्ञान भी अपने देश में विकसित हो रहा हो। बेटा
1: दादू, जब भी हम किसी संस्थान की कहानी सुनते हैं, वहाँ हजारों लोग काम करते दिखाई देते हैं।
2: और यही किसी भी बड़े संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसके लोग,
1: यानी इंजीनियर, तकनीशियन, डिजाइनर और वैज्ञानिक।
2: कोई नई मशीन की रूपरेखा तैयार करता है तो कोई उसके पुर्जे बनाता है, कोई परीक्षण करता है तो कोई गुणवत्ता की जांच करता है।
1: एक मशीन के पीछे सैकड़ों हाथ और हजारों घंटों की मेहनत छिपी होती है दादाजी।
2: शाबाश मेरी बच्ची, एकदम सही कहा तुमने।
1: दादू, अगर कोई स्टूडेंट आज का ये कार्यक्रम सुन रहा हो और भविष्य में ऐसे संस्थान में काम करना चाहे तो उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जरा ये भी बता दीजिए।
2: देखो बेटा, सबसे पहले उसे जिज्ञासु बनना होगा।
1: जिज्ञासु? वो भला कैसे?
2: जैसे कि मेरी प्यारी पोती रुचि है, है ना? उसे तुम्हारी तरह ही हर मशीन को देखकर ये पूछना होगा कि ये कैसे काम करती है, हर नई तकनीक को समझने की कोशिश करना, विज्ञान और गणित से दोस्ती करना।
1: क्या दादू, और मेहनत?
2: वो तो सबसे जरूरी है बेटा, बड़े सपनों को साकार करने के लिए निरंतर सीखना पड़ता है।
1: तभी तो कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा ना।
2: हाँ बिल्कुल।
1: दादू, एक बात सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है।
2: किस बात का आश्चर्य बेटा?
1: वो ये कि जब हम किसी मेट्रो में सफर करते हैं ना दादाजी, या किसी नई सड़क पर चलते हैं, या समाचारों में सेना के आधुनिक वाहनों को देखते हैं, तब हम शायद ही कभी सोचते होंगे कि इनके पीछे कितनी संस्थाओं और कितने लोगों की मेहनत छिपी होती है।
2: वास्तव में देश के लिए निर्माण का कार्य विशाल यज्ञ की तरह होता है। उसमें कोई वैज्ञानिक अपना ज्ञान देता है, कोई इंजीनियर अपनी कल्पना, कोई तकनीशियन अपना कौशल और कोई श्रमिक अपना परिश्रम,
1: और तभी कोई बड़ा काम पूरा हो पाता है दादाजी।
2: हाँ बेटा, सोचो यदि खदानों से खनिज ना निकले तो कारखाने कैसे चलेंगे? यदि भारी मशीनें ना हो तो बड़े पुल, सड़कें और सुरंगें कैसे बनेंगी?
1: सो तो है।
2: और यदि रक्षा उपकरणों की आवाजाही के लिए उपयुक्त वाहन ना हो तो सेना की तैयारी कैसे मजबूत होगी?
1: दादाजी, यानी विकास और सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
2: हाँ बेटा, और BEML जैसी संस्थाएं इन दोनों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है।
1: दादू, क्या BEML के कर्मचारियों को ये एहसास होता होगा कि उनका काम देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
2: मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि अवश्य होता होगा, क्योंकि जब कोई इंजीनियर किसी मशीन का डिजाइन बनाता है तब वो केवल एक उत्पाद नहीं बना रहा होता बल्कि देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा होता है।
1: और जब कोई तकनीशियन किसी पुर्जे को सावधानी से तैयार करता है
2: तब वो भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है।
1: वाह दादाजी, इसका मतलब हर छोटा काम भी महत्वपूर्ण होता है।
2: यही तो सबसे बड़ी सीख है बेटा, कोई योगदान छोटा नहीं होता, बड़ी उपलब्धियां हजारों छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर बनती हैं।
1: दादू, आप अक्सर कहते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है?
2: हाँ हाँ, मैं आज भी कहता हूँ, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
1: तो क्या आने वाले समय में ऐसे संस्थानों की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधों पर होगी?
2: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले वर्षों में नई तकनीकें विकसित होंगी, नई चुनौतियां सामने आएंगी और नए समाधान भी खोजने होंगे। इसके लिए जिज्ञासु, मेहनती और नवाचार करने वाले युवाओं की आवश्यकता होगी।
1: यानी आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा।
2: बिल्कुल, और हो सकता है कि आज ये कार्यक्रम सुनने वाला कोई बच्चा भविष्य में ऐसी ही किसी संस्था का नेतृत्व करे।
1: दादाजी, मुझे तो सोचकर बड़ा ही रोमांच हो रहा है।
2: देखो बेटा, किसी भी संस्थान की सफलता केवल उसकी मशीनों से नहीं मापी जाती है, उसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसने देश और समाज को कितना मजबूत बनाया।
1: और BEML ने ये काम कई दशकों से किया है।
2: हाँ, बदलते समय के साथ उसने स्वयं को बदला, नई तकनीकों को अपनाया और देश की आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ती रही।
1: यानी यही किसी जीवंत संस्था की पहचान है।
2: बिल्कुल बेटा, जो सीखना बंद कर दे वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है।
1: और जो निरंतर सीखता रहे वही भविष्य का निर्माण करता है।
2: शाबाश बेटा, शाबाश। लगता है आज की यात्रा सचमुच सफल रही।
1: दादू, आज हमने जाना कि किसी भी संस्थान की कहानी केवल उसकी इमारतों या मशीनों की कहानी नहीं होती।
2: तो फिर क्या होती है?
1: ये उन लोगों की कहानी होती है दादाजी, जो अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प से देश को आगे बढ़ाते हैं।
2: वाह बेटा वाह, लगता है इस यात्रा ने वाकई तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया।
1: और आपने भी तो बहुत कुछ सिखाया दादू।
2: मैं तो तुम्हारा दादू हूँ, सिखाऊंगा ही बेटा। याद रखो बेटा, किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मशीनें नहीं होती, बल्कि वो विश्वास होता है जो वो देश के लोगों में पैदा करता है। BEML ने दशकों से यही विश्वास मजबूत किया है। भारत की अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित कर सकता है, बड़े सपने देख सकता है और उन्हें साकार भी कर सकता है।
1: यानी ये केवल मशीनें बनाने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास जगाने की कहानी भी है दादाजी।
2: एकदम सही कहा बेटा तुमने। जब किसी देश के युवा सीखने, शोध करने और नवाचार करने का संकल्प लेते हैं, तब ऐसे संस्थान उस संकल्प को शक्ति देने का काम करते हैं।
1: समझ गए दादू, आज के आत्मनिर्भर भारत की नींव केवल देश के कारखानों से मजबूत नहीं है, बल्कि देश के उन संस्थानों में काम कर रहे लाखों लोगों के ज्ञान, कौशल और परिश्रम से है।
2: शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है और यही आज की यात्रा की सबसे बड़ी सीख भी है।
1: दादू चलिए जरा संभल कर उठिएगा।
2: हाँ हाँ बेटा,
1: बैग में लेती हूँ।
2: हाँ।
1: श्रोताओं, आज आपने सुनी BEML की स्थापना, उसके शुरुआती कार्यों और रक्षा अधोसंरचना क्षेत्र में बढ़ती भूमिका की कहानी। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में दादू और रुचि आपको बताएंगे देश के और भी कई संस्थानों के बारे में, साथ ही आत्मनिर्भर भारत में इन संस्थानों की भूमिका और भविष्य की योजनाएं क्या क्या है। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना,
2: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं ज्योतिबा फुले पर केंद्रित कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। कार्यक्रम याद करो कुर्बानी लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र भारती। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम हमने केंद्रित किया है ज्योतिराव फुले पर।
3: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
2: कई बार सोचते हैं कि हर क्रांति के पीछे कोई ना कोई माली होता ही है, सवारने वाला होता ही है। जी हाँ, 1789 में बस्तील पर फूल बेचने वालों के धावे के 60 साल बाद माली जाति के एक भारतीय नौजवान ज्योतिराव फुले ने बहुत प्राचीन सामाजिक व्यवस्था, जो कि उस समय दर्जे पर थी, फ्रांसीसी प्राचीन शासन से भी कहीं अधिक सचेत थी, उस पर उसने आजीवन हमला शुरू कर दिया। उनका इरादा जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था। उनकी अपनी पृष्ठभूमि के लोगों की शिक्षा, नौकरियों और आत्मसम्मान के बोध तक पहुंच को बाधित किया था उन्होंने। 1827 के आसपास फुले का जन्म हुआ और वे पूना की सीमा पर रहते थे। पूना शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा राज्यों का मुख्यालय था। फुले के दादा शाही परिसर में माली का काम किया करते थे। उनके पिता फल, सब्जियां ये सब उगाते थे। माली जाति का ये परिवार समाज की एक मुख्य धारा से जुड़ा नहीं था। ये लोग शहर के विशिष्ट वर्ग को फल और सब्जियों की आपूर्ति करते थे। उच्च जाति के घरों, खेतों और गांवों में इनका आना जाना था। मेरे ख्याल से उन्होंने विशेषाधिकार होने के फायदों और समाज में अवसर के वितरण को समझने में उस समय उन्हें मदद मिली होगी। फुले बहुत जल्दी ही समझ गए थे कि बड़े उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा को स्वयं के लिए उन्होंने सुरक्षित रख लिया है और अपनी श्रेणी के सभी लाभ लेकर उन्होंने अन्य जातियों को परिधि से बाहर कर दिया है, और इसका कारण था अज्ञानता। समय के साथ इस नौजवान की हताशा पहले समीक्षा और फिर बदलाव की इच्छा में बदलने वाली थी। उन्होंने जाति की सीमा से बाहर के लोगों और लड़कियों के लिए स्कूलों की श्रृंखला खोल दी। उसके बाद विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए आवास स्थापित किया। उनकी कोशिश जल्द ही समाज व्यवस्था के विरुद्ध तर्कपूर्ण लड़ाई बन गई। आम लोगों को शिक्षित करने के फुले के 19वीं सदी के प्रयोगों ने ये दिखाने में मदद की थी कि शिक्षा तक अधिक लोकतांत्रिक पहुँच कैसे होती है, और गरीब होने की मनोवैज्ञानिक राजनीति के उनके पूरे विश्लेषण के साथ ही व्यक्तिगत जीवन में शोषण के परिणामों पर ध्यान देना वर्तमान भारत में तीखी समसामयिकता रखता था। ज्योतिराव फुले के बारे में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, जो केंद्रित है ज्योतिराव फुले पर। फुले को अक्सर अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ रखा जाता है। विद्वान और समाज विज्ञान गेल ओमवेट कहते हैं वो दरअसल राष्ट्र विरोधी हैं। वे अपने लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि उन निर्देशों से सावधान रहें जो उन्हें देश में मौजूद अनुक्रम और विरोधी स्वरों को एक तरफ करके एकजुट होने को कह रहे हैं। किसी राष्ट्र या क्षेत्र का विचार नहीं, बल्कि शिक्षा उनकी स्वदेशी थी, यानी देशभक्ति थी, ये ओमवेट्स का कहना है। श्रोताओं, फुले का जातिगत विरोध और शिक्षा को लेकर लोकतांत्रिक विचार मिशनरी शिक्षण से ज्यादा मिलता जुलता है, जिससे उन्हें सीधा फायदा हुआ था। उनकी कहानी की विडंबना यह है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होती और नई व्यवस्था स्थापित नहीं होती तो 19वीं सदी के उग्र सुधारवादियों में से एक शायद गुमनाम रहकर सब्जी की आपूर्ति करने वाले वो बनकर रह जाते। फुले की जैसी कहानियां साम्राज्यवाद के विचार को जटिल बनाती हैं। उपन्यासकार और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय के अनुसार वो लिखती हैं, अंग्रेजों ने महाद्वीप की संपत्ति को अवशोषित किया, उसे कंगाल बना दिया और पुराने मूल्यों को सुदृढ़ किया, लेकिन उन्होंने फुले अंबेडकर साहब जैसे व्यक्तियों और अन्य लोगों के लिए दरवाजे भी खोले ताकि वे विमर्श का हिस्सा बन सकें और उसे बदल सकें। श्रोताओं, आज पुणे भारत के सबसे धनी शहरों में से एक है। ये शिक्षा, निर्माण, आईटी और लग्जरी कार की असेंबली लाइन का प्रमुख केंद्र है। इसके कुछ हिस्सों में मौजूद स्टील और शीशे से बनी इमारतें दुनिया के प्रमुख व्यवसायिक स्थलों में से एक है। ऐसे में ये भूल जाना आसान है कि ये शहर भारतीय चिंतन की कई महत्वपूर्ण, चाहे वो प्रतिपक्षी ही क्यों ना हो, विचारधाराओं का केंद्र रहा है। मराठा सत्ता का गढ़ रहा पुणे कभी उपमहाद्वीप के राजनीतिक नक्शे पर दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर था। जी हाँ, अंग्रेजों द्वारा इसका नियंत्रण अपने हाथ में लिए जाने के कई दशक बाद लगभग 1818 में ये भारतीय उदारवाद की उपजाऊ जमीन बन गया। श्रोताओं, ज्योतिराव फुले की कहानी की बात हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

अवसरों तक व्यापक पहुंच रखने वाले ज्योतिराव फुले की आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी में। श्रोताओं, फुले की कहानी को अक्सर एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को गरीबी से निकालने की दास्तान के रूप में सुनाया जाता है, जो कि ये सच नहीं है। सच तो ये है कि उनके पिता को सब्जी बेचने और उपजाऊ जमीन का मालिक होने के कारण जो सम्मान मिला, उसके कारण फुले को सामाजिक आत्मविश्वास और शैक्षिक शुरुआत बढ़त दी थी, जिसका बाद में वो एक आंदोलन के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। फुले के अनुसार जाने तो उन्हें पूरी तरह झकझोर देने वाला पल उनके सहपाठी के विवाह के समय आया था। श्रोताओं, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हट्टा कट्टा और खूबसूरत नौजवान दूल्हे को लेकर मंडप तक पहुंचता है। दूल्हा उनका सहपाठी था और कहानी के अनुसार उसने बहुत मासूमियत के साथ उसे शादी में बुलाया था, क्योंकि वो तो उसका मित्र था। लेकिन जब रूढ़िवादी समाज व्यवस्था वालों ने उस नौजवान को मंडप से जाति के नाम से निकाल दिया, तो उसे बहुत दुख लगा। फुले को बहुत सदमा लगा। उन्हें महसूस हुआ कि वो रोजमर्रा के भेदभाव और आक्रामकता से बचे हुए थे, लेकिन अब वो ये दंश नहीं झेलेंगे। बुद्ध के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। युवा होने पर ही उन्होंने कष्टों को देखा और समझा। समाज की मासूमियत से एक झटके से निकलने के बाद फुले के विचारों में एक नई स्पष्टता विकसित हो गई। उन्होंने जो देखा वो लिखा। शिक्षा के बिना बुद्धिमानी खो गई है, नैतिकता के बिना विकास खो गया है, विकास के बिना संपत्ति खो गई, संपत्ति के बिना सर्वहारा वर्ग बर्बाद हो गया है। जी हाँ, आज फुले के एक आयाम की उन लोगों द्वारा अनदेखी की जाती है जो उन्हें अन्य जाति का समझते हैं, राजनीति का नायक बनाते हैं, और वो आयाम है भारतीय इतिहास में उनकी चतुराईपूर्ण और साहसिक दिलचस्पी की। श्रोताओं, वो शायद इस बात को जानते थे कि उनके जीवन काल में देश संक्रमण काल से गुजर रहा था। उनका जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मराठा संघ के अंतिम पेशवा को हराए जाने के लगभग 10 साल से भी कम समय बाद हुआ था। मराठा संघ का कभी पश्चिम उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण हुआ करता था। अगले दशकों में अंग्रेज भारत पर पूरे स्वामित्व की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब तक नई व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी और गठबंधन भी निश्चित नहीं थे। ये एक ऐसा काल था जब परिवर्तन को व्यक्त किया जा सकता था, उसे अमली जामा पहनाया जा सकता था। फुले ये दोनों काम करने वाले थे। वो राइट्स ऑफ मैन पढ़कर मिले मूल्यों को तलाश कर रहे थे। सुविधाओं से वंचित लड़कियों के लिए बनाए गए एक अमेरिकन मिशनरी स्कूल में जाने के बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने लड़कियों और सर्वहारा वर्ग के लिए अपना पहला संस्थान खोल लिया। महिलाओं को शिक्षा देने की उनकी प्रतिबद्धता को उनके समुदाय में नीची नजर से देखा गया। उन्होंने अपनी निरक्षर लेकिन प्रतिभावान किशोरी पत्नी को भी पढ़ना लिखना सिखाया था, ताकि वो भी उस स्कूल में पढ़ा सके। वो न केवल जाति व्यवस्था पर प्रहार करते थे, बल्कि परिवार की संस्कृति पर भी हमला करते थे। वो कहते थे, हर बार जब भी सावित्रीबाई सुबह लड़कियों की शिक्षा के लिए खोले गए अपने छोटे से स्कूल में पढ़ाने के लिए निकलती थी, तो उन पर कीचड़, पत्थर और कचरा फेंका जाता था। श्रोताओं, फुले पर एक सचित्र पुस्तक लिखने वाली विद्या नटराजन कहती हैं, जनता को साक्षर करने का जो अभियान ज्योतिराव फुले ने किया था, उसमें बहुत सारे रोड़े आए, लेकिन उन्होंने डटकर मुकाबला किया। ज्योतिराव फुले लगातार मजाक बन रहे थे, उनके काम लोग पसंद नहीं कर रहे थे। इससे दुखी होकर उनके पिता ने इस युवा जोड़े को अपने घर से बाहर निकाल दिया। घर छोड़ना एक तरह से फुले और उनकी पत्नी के लिए सामाजिक उत्प्रेरक के रूप में काम करने की नई आजादी देने वाला साबित हो गया। जिस छोटे से घर में वो रहने के लिए आए, अब वो एक प्रतिष्ठित संग्रहालय है, जिसकी दीवारें मटमेले रंग की हैं, छत पर दूधिया रोशनी है, उनके जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं। लेकिन उनके जीवन काल के दौरान ये सामाजिक और लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध जोशीले अभियान का युद्ध कक्ष था। 30 साल की उम्र तक फुले और सावित्रीबाई को अपने स्कूलों के लिए अंग्रेजों से तारीफें और अन्य जातियों से घृणा मिली। संतान विहीन इस दंपत्ति ने
एक विधवा के बेटे को गोद लिया, जिससे कई लोगों के मन में वैमनस्य उत्पन्न हो गया। फुले को प्रगतिशील जातिवादी लोगों पर संदेह था। उन्होंने लिखा था, स्वयं को दोष रहित मानते हैं वो लोग और बहुत चालाक हैं। समय समय पर वो ऐसे पाप करते हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन श्रोताओं, इसके बावजूद जब फुले और सावित्री बाई ने अनचाहे बच्चों, विधवाओं, इनके लिए आश्रम खोला, तो उनके अन्य उच्च जाति के मित्रों के साथ साथ उन्हें पूरी यूरोपीय समर्थकों से आर्थिक मदद भी मिलने लगी। इसके अलावा फुले को कभी कभार ठेकेदारी से भी आमदनी होती रहती थी। महाराष्ट्र में और भारत में स्कूलों, खासकर सर्वहारा वर्ग के स्कूलों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं के नाम ज्योतिराव या फिर सावित्री बाई के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन उन्हें केवल एक शिक्षाविद के रूप में याद करना दरअसल एक मजबूत, उदार मन मस्तिष्क वाले इंसान के दर्जे को कम करके उसका अनुकूलन करना है। फुले का विचार था कि शिक्षा और समता के छोटे छोटे द्वीप बनाना अपर्याप्त है। वे समूची जाति व्यवस्था को उलट देना चाहते थे। उस लक्ष्य के लिए वे लगातार एक कवि, नाटककार, इतिहासकार और खंडनात्मक लेखक के तौर पर लिखते रहे, और उनके लेखन में ये सामाजिक विश्लेषण मौजूद है, जिसमें व्यक्त रूढ़िवादी विचारों के विरोध के स्वर आज भी गूंजते हैं।

फुले के लेखन ने बहुत संवेदनशीलता के साथ ये दिखाया कि कैसे गरीबी और भेदभाव का संतरास मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। अनपढ़ इंसान शोषण करने वालों के लिए एक लक्ष्य की तरह होता है। वो अन्याय से असमंजस में नहीं पड़ता है, बल्कि उसे लगता है कि हो सकता है कि वो उसके लायक हो। फुले के विचार में इस तरह की निरीहता मन में बिठाना उच्च जातियों का लक्ष्य था। अमेरिका में हुए नागरिक युद्ध से पहले के दासता विरोधी आंदोलनों के बारे में जानकर फुले उच्च जाति को दासों के स्वामी के रूप में और जाति व्यवस्था को मानव दासता की एक व्यापक और प्रभावी रणनीति के रूप में देखने लगे थे। युद्ध की समाप्ति के ठीक बाद लिखी गई उनकी एक महान रचना को उन्होंने सभ्य ब्रिटिश सरकार में ब्राह्मणवाद के चोगे के नीचे गुलामी ज्योतिराव गोविंद राव द्वारा उजागर शीर्षक दिया था। इसे गुलामगिरी के नाम से जाना गया और दासता विरोधियों को समर्पित की गई। इस पुस्तक को इतिहास लेखन माना गया, जिसमें फुले ने एक ऐसे प्राचीन स्वर्णिम युग की कल्पना की थी कि जब मूल भारतीयों द्वारा द्रविड़ों को अपना अधीन मानने वाले ब्राह्मणों या आर्यों का आगमन नहीं हुआ था। उन ब्राह्मणों ने धार्मिक ग्रंथों और जाति व्यवस्था को शुरू किया, जिसके कारण वो लोगों में फूट डालने में सफल हो गए और उन्होंने भूमि पर नियंत्रण कर लिया, जबकि संभव है कि पहले वो लोग मिलकर रहते रहे होंगे। फुले को ये उच्च जाति का यूरोपीय उपनिवेशवाद कैसे लगा, जिन्होंने मूल अमेरिकन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। राममोहन राय की तरह लोकतांत्रिक अतीत की कल्पना करके फुले भी भावी प्रगति के नाम पर अपने लिए व अपने लोगों के लिए एक इतिहास गढ़ रहे थे। फुले के वैकल्पिक इतिहास का एक आयाम आज भी सच लगता है, और वो ये है कि शिक्षा या पानी ऐसे बुनियादी संसाधन के लिए आंदोलन करने के लिए एक साथ आने में गरीब भारतीयों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, 1873 में फुले दंपत्ति ने सत्य शोधक समाज शुरू किया ताकि विभिन्न अन्य जातियों की स्थिति बेहतर की जा सके, लोग शिक्षित हो सकें, पुरोहितों पर निर्भर रहने की बजाय अपने अनुष्ठान वो स्वयं करें, मानव समानता को एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में पहचान देने के लिए वो समझाते थे। फुले की मृत्यु के बाद भी ये संगठन उच्च जाति के विरोध के रूप में नए आयाम छूता रहा, लेकिन फुले अपने जीवन काल में कभी राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं बन पाए। तब तक राजनीति स्थायी नहीं थी, और फुले की मृत्यु के 5 साल पहले ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में अखिल भारतीय आंदोलन की नींव पढ़ने तक ऐसे ही रही।

फुले मानते थे कि शिक्षा ही गुलामी से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है। इसके बावजूद जिन लोगों के पास शिक्षा है उन्हें पता चलता है कि शिक्षा उन्हें उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा पाती जितनी तेजी से फुले ने इसकी कल्पना की थी। पुणे के पुराने हिस्से में फुले दंपत्ति के छोटे से घर में संग्रहालय के और चारों ओर बने बगीचों को अच्छी तरह आज भी रखा गया है। वहां का कुआं आज भी चालू हालत में है। ये आने वाले सभी लोगों के लिए खुला है। फुले दंपत्ति ने 1868 में ये प्रथा उच्च वर्ग के द्वारा इस्तेमाल किए गए कुओं से अपवित्र माने जाने वाले सर्वहरा वर्ग को पानी नहीं निकालने देने के विरोध में शुरू की थी। आज भी जब पानी और अन्य संसाधनों को लेकर गरीबों और ताकतवर वर्ग के बीच भीषण संघर्ष होते हैं तो ये खुला हुआ कुआं अवसरों तक व्यापक पहुंच की फुले की लड़ाई का विनम्र प्रतीक के रूप में हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। तो श्रोताओं, ऐसे थे ज्योतिराव फुले, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर डंके की चोट की थी, जिन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने का सपना देखा था और एक मिसाल बन गए। हम ऐसे वीर आत्माओं को, ऐसी पुण्य आत्माओं को नमन करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित था ज्योतिराव फुले पर। आप सुनिए ये देशभक्ति गीत और मुझे दीजिए अनुमति कार्यक्रम समाप्त करने की। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या। हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है SE.census.gov.in।
www.sena.in इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हों, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था।
लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहां दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं।
देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है।
भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पॉटिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने आचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही है। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल
कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा यह अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें

भारत में ही नहीं है, जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं, यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन में रश्मि रथी का भाग 15।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए एक ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से धमकती हैं। यहां केवल कविताएं सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं। श्रोताओं, काव्य गुंजन की इस यात्रा में आपका फिर स्वागत है। महाकाव्य केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होते, वे मनुष्य के भीतर छिपे संघर्षों का दर्पण होते हैं। पिछले भाग में हमने सुना उस क्षण को जहां वर्षों से मौन एक मां का हृदय बोल उठा और एक पुत्र ने अपने जीवन की सबसे कठिन पुकार के सामने भी अपने सिद्धांतों का हाथ नहीं छोड़ा। कर्ण और कुंती का यह मिलन मानो समय के पन्नों पर लिखा वो अध्याय है जिसमें आंसुओं की स्याही से कर्तव्य और करुणा की कहानी लिखी गई है। रश्मि रथी के पंचम सर्ग के अंतिम भाग में दिनकर जी ने कविता को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वो पूरे महाकाव्य का सबसे भावुक और दार्शनिक बिंदु है।
2: भाग 5 और 6 में कर्ण थोड़ा भावुक होता है। अपनी माँ के सामने अपने दुख और समाज के तानों को लेकर परेशान और क्रोधित है, किंतु भाग 7 में आते आते उसकी भावुकता एक वज्र जैसी दृढ़ता में बदल जाती है। वह कुंती से कहता है कि अब देर हो चुकी है, भाग्य का पहिया घूम चुका है। यहाँ कर्ण ये जानते हुए भी कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं और उसकी हार निश्चित है, अपने विनाश को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ये व्यवहार कर्ण को एक साधारण व्यक्ति से उठाकर महामानव बना देता है, जो जीत के लिए नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए मरता है। इस भाग की सबसे खास बात वह अद्भुत गणित है जो कर्ण कुंती के सामने रखता है। जब कुंती रोने लगती है तो कर्ण उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहता है कि युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, कुंती का आंचल कभी खाली नहीं होगा। वह अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को अभयदान देगा। वह कहता है या तो अर्जुन मरेगा या मैं, दोनों ही हाल में तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अगर अर्जुन मरा तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर पांडवों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक माँ को सांत्वना देने का इससे भव्य, वीरोचित और मार्मिक तरीका पूरी दुनिया के साहित्य में कहीं नहीं मिलता। यहाँ कर्ण अपनी मौत का सौदा इतनी सहजता से करता है जैसे कोई खिलौना दे रहा हो। श्रोताओं, पंचम सर्ग के अंतिम भाग 7 के काव्य पाठ के साथ हम चर्चा भी जरूर करेंगे, किंतु रश्मि रथी के पंचम सर्ग के अंतिम भाव सागर में डूबने से पहले आइए कुछ क्षण उस महाकाव्य के जनक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को भी स्मरण कर लें। किसी भी महान कृति को समझने के लिए उसके रचनाकार के व्यक्तित्व को जानना उतना ही आवश्यक होता है जितना किसी विशाल वृक्ष को समझने के लिए उसकी जड़ों को पहचानना।
1: हिंदी साहित्य में दिनकर जी का स्थान कितना ऊंचा है, इसका अनुमान उनकी अमर कृतियों, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा का अध्ययन मात्र कर लेने से ही लगाया जा सकता है। वे केवल ओज के कवि नहीं थे बल्कि राष्ट्र की आत्मा, भारतीय संस्कृति के प्रहरी और आधुनिक युग के सांस्कृतिक जागरण के महाकवि थे। कल्पना कीजिए, गंगा की शांत धारा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव सिमरिया, जहां भोर की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक उठती हैं, आम की अमराइयों से कोयल की मधुर कूक सुनाई देती है और लोक गीतों की स्वर लहरियां गांव की गलियों में जीवन का संगीत भर देती हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू, किसानों का श्रम और भारतीय संस्कृति की सहज आत्मा, यही उस गांव की पहचान थी। इसी पावन धरती पर सन 1908 में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसकी लेखनी आगे चलकर पूरे राष्ट्र की आवाज बन गई। वही बालक थे रामधारी सिंह दिनकर। जीवन ने उन्हें वैभव नहीं संघर्ष दिया, सुविधाएं नहीं चुनौतियां दी, लेकिन इन्हीं संघर्षों की भट्टी में तपकर उनका व्यक्तित्व कुंदन बना। कई कई मील पैदल चलकर शिक्षा प्राप्त करना, अभावों के बीच भी ज्ञान की लौ जलाए रखना और अपने अथक परिश्रम से शिखर तक पहुंचना, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी।
2: अपनी विलक्षण प्रतिभा, अथक परिश्रम और अद्भुत साहित्य साधना के बल पर दिनकर जी निरंतर नई नई ऊंचाइयां छूते गए। वे बिहार प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 13वीं अधिवेशन के कवि सम्मेलन के सभापति भी बने और आगे चलकर पूरे देश ने उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया। निश्चय ही दिनकर जी का जीवन अपने आप में एक प्रेरक गाथा है, परंतु आज हमारा उद्देश्य उनके संपूर्ण जीवन का वर्णन करना नहीं बल्कि उस महाकवि को नमन करना है जिसकी लेखनी ने रश्मिरथी जैसा कालजयी महाकाव्य रचकर कर्ण के व्यक्तित्व को अमर कर दिया।
1: दोस्तों, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी कविता सबसे प्रिय लगती है और मुझे समर शेष भी काफी पसंद है। दरअसल जैसा उनका व्यक्तित्व रहा, उनकी कविताएं भी वैसी ही वीर रस से ओतप्रोत हैं जो खून में उबाल ले आती हैं। इसलिए वे युवाओं के लिए हमेशा ही प्रासंगिक कवि रहे हैं। आगे हम उन पर बीच बीच में उनके साहित्यिक अवदान पर कभी लेखनी पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको सुनाते हैं दिनकर जी द्वारा रचित मेरी पसंदीदा कविता समर शेष है की कुछ पंक्तियां। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश का कष्ट खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मतभेद हो हृदय वही के सर से, भरो भवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से। कुमकुम लिपू किसको, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। दोस्तों, जिसने शब्दों को केवल कविता नहीं बल्कि धधकते हुए अंगारे बना दिया, दिनकर जी ने जब रश्मिरथी की रचना की तो उन्होंने केवल महाभारत की कथा को नए पन्नों पर नहीं उतारा बल्कि इतिहास के हाशिए पर धकेल दिए गए एक चरित्र को उठाकर उसे आत्मगौरव, समता और संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। इस महाकाव्य की बुनावट में जहां एक ओर वीर रस का प्रचंड नाद है, वहीं दूसरी ओर वात्सल्य, करुणा और दर्शन की एक अंतःसलिला नदी भी बहती है, ये काव्य चीख चीख कर स्थापित व्यवस्थाओं से सवाल करता है कि कुल, जाति और वंश के संकीर्ण पैमानों से किसी मनुष्य की योग्यता को कैसे आंका जा सकता है। दिनकर जी का दर्शन बड़ा स्पष्ट था। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले कवि नहीं थे, वे पुरुषार्थ, कर्म और मनुष्य के आंतरिक तेज के उद्घोषक थे। जो कहते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के।
2: आज हम जिस 21वीं सदी के चक्रव्यूह में जी रहे हैं ना, जहां भौतिकता की अंधी दौड़ है, जहां मानवीय संवेदनाएं धीरे धीरे मशीनी हो रही हैं, वहां रश्मिरथी हमारे लिए एक नैतिक आईना बन जाती है। हम आज की सदी में क्या भूल रहे हैं? हम भूल रहे हैं कर्ण जैसा निश्चल त्याग, हम भूल रहे हैं दुर्योधन के अवगुणों के बीच भी उसकी उस गहरी मित्रता का मान जो मृत्यु के मुहाने पर भी अडिग रही, हम भूल रहे हैं कि हर संकट के समय समाज को श्री कृष्ण जैसे शांति दूत की आवश्यकता होती है। रश्मिरथी हमें सिखाती है कि जब जीवन में विपत्तियां आए, जब नियति हमें चारों ओर से घेर ले, तब भीतर के मनुष्य को टूटने नहीं देना है बल्कि विघ्नों को गले लगाना है और कांटों में राह बनाना है। आइए आज की इस आधुनिक आपाधापी के बीच दिनकर जी के इन शाश्वत विचारों को अपने भीतर उतारें और रश्मिरथी के इस अंतिम पड़ाव की ओर एक नई चेतना के साथ कदम बढ़ाएं। आइए श्रोताओं, मन को शांत और हृदय को संवेदनाओं से भरकर प्रवेश करते हैं रश्मिरथी के पंचम सर्ग के अंतिम सोपान में। तो लीजिए प्रस्तुत है पंचम सर्ग के भाग सात का काव्य पाठ। कुंती के ये कहने पर पाकर ना एक को और एक को खोकर मैं चली चार पुत्रों की माता होकर। तो फिर कर्ण भी कह उठता है,
3: छह और चार को भूलो माता, ये निश्चय मान मोद में भूलो। जीते जी भी ये समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, पांच के पांच ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से, तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रणी पांच पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वो मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को ना राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हां अगर पांडवों की ना चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे ना कुरुपति का सहजेता होगा, वो पुनः निस्वह दलितों का नेता होगा, वो पुनः निस्वह दलितों का नेता होगा।
1: दोस्तों, कर्ण के शब्दों में आज एक योद्धा की गर्जना नहीं, बल्कि कैसे पुत्र की पीड़ा सुनाई देती है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। कुंती के सामने खड़ा कर्ण जानता है कि रक्त का संबंध उसे पांडवों से जोड़ता है, पर जीवन का संबंध उसे उन संघर्षों से जोड़ता है जिन्हें उसने अकेले सहा है। कर्ण के भीतर कोई द्वेष नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, केवल एक शांत पीड़ा है जो कहती है कि मेरा जन्म चाहे जहां से हुआ हो, मेरी पहचान मेरे कर्मों से बनी है। और यही कर्ण की महानता का शिखर है, वो शिखर जहां मनुष्य अपने निजी दुख से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि युद्ध आने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, फिर भी उसके हृदय में उन लोगों के लिए करुणा है जो समाज की उपेक्षा में जी रहे हैं। दिनकर जी ने कर्ण के माध्यम से यह प्रश्न उठाया है कि महान कौन है, वो जो केवल विजय प्राप्त करे, या वो जो टूट कर भी दूसरों के लिए आशा बन जाए। कर्ण का मन इस समय दो दिशाओं में बंटा हुआ है, एक ओर मां की पुकार है, दूसरी ओर मित्रता और वचन का ऋण। लेकिन इन दोनों के बीच भी वो अपने भीतर के सूर्य को बुझने नहीं देता। यही वो क्षण है जहां कर्ण केवल महाभारत का पात्र नहीं रहता, बल्कि संघर्ष करते हर उस मनुष्य की आवाज बन जाता है जो परिस्थितियों से लड़कर भी मानवता को थामे रखता है। आइए सुनते हैं इसी भाव समंदर में डूबे कर्ण आगे और क्या कह रहे हैं।
3: है अभी उदय का लग्न, दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी ना मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं, कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है, उस भाग्यवान का भाग्य शार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही किलिन लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। शतपाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वो जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पटह, भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी ना बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीत या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार्थ द्रोह की क्रिया व्यर्थ ये रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए ना हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर को झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपना कर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुद्ध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हो एकाकार, मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गलकर खो जाएंगे। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बली के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता ना जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता ये वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल, कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ नाव जियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूम केतु बस इसी तरह आता है। रोशनी जरा मरघट में फैलाता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है।
4: हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिर दृगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से।
2: पंचम सर्ग का ये समापन मानो एक गहरी सांझ की तरह है, जहां शब्द धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और केवल भावों की प्रतिध्वनि रह जाती है। इस अंतिम क्षण में संवाद धीरे धीरे मौन में बदल जाता है। कर्ण और कुंती दोनों जानते हैं कि अब उनके मार्ग अलग अलग हैं। फिर भी उस सत्य को स्वीकार करना कितना कठिन है। कुंती की आंखों में पश्चाताप की नमी है और कर्ण के शब्दों में एक अद्भुत धैर्य। वह माँ को आश्वासन देता है कि चाहे युद्ध की धारा किधर भी बहे, उसके पुत्रों की संख्या 5 ही रहेगी। ये वचन किसी योद्धा का नहीं, बल्कि उस उदार हृदय का है जिसने जीवन भर अपने दुखों को पीकर भी दूसरों के लिए करुणा संजोए रखी।
4: जब विदा का क्षण आता है तो शब्द पीछे छूट जाते हैं और केवल भाव शेष रह जाते हैं। दो बूंद आंसू कर्ण के चरणों पर गिरते हैं और कुंती बिना कुछ कहे लौट पड़ती है, मानो भाग्य ने उनके हृदयों के बीच एक अदृश्य दूरी खींच दी हो। उस सांझ में दृश्य हमें ये सत्य याद दिलाता है कि मनुष्य कई बार प्रेम से बंधा होता है, पर चलना उसे नियति की ही दिशा में पड़ता है। यही इस प्रसंग की करुण गरिमा है, जहां त्याग, प्रेम और नियति तीनों एक साथ अपनी छाया छोड़ जाते हैं।
2: आने वाला कुरुक्षेत्र मानो दूर क्षितिज पर गरजते बादलों की तरह दिखाई देता है। युद्ध की आहट, वीरों का संकल्प और काल का निमंत्रण सब कुछ धीरे धीरे निकट आ रहा है। फिर भी इस करुण मिलन की स्मृति उस भीषण युद्ध के बीच भी एक दीपक की तरह जलती रहेगी, क्योंकि यहाँ केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि त्याग, मर्यादा और मौन प्रेम की वह झिलमिलाहट है जो कर्ण और कुंती की कहानी को अमर बना देती है। श्रोताओं, हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास के खंडहर हमें वर्तमान की पीड़ा के प्रति सजग बनाते हैं और यही चेतना किसी साहित्य को अमर करती है। हिंदी की राष्ट्रीय कविता की विकास यात्रा में दिनकर जी का स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त के साथ शीर्ष पर है, जहां भारतेंदु जी ने कविता को ब्रज की गलियों से निकालकर देश की दुर्दशा की ओर मोड़ा और गुप्त जी ने अतीत के गौरव से वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा दी। वहीं तीसरे पायदान पर आसीन दिनकर जी ने पराधीनता, सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के खिलाफ वह प्रचंड शंखनाद किया कि उनका नाम ही युग धर्म की हुंकार बन गया। उनका व्यवहारिक जीवन हमेशा समाज के शोषित, दीन दुखी और उपेक्षित वर्ग के प्रति समर्पित रहा।
4: दोस्तों, दिनकर जी वीर रस के साथ साथ रौद्र, करुण और शांत रसों के भी सिद्ध हस्त कवि हैं, जिसका प्रमाण उर्वशी में श्रृंगार रस के परिपक्व रूप में मिलता है। उनकी राष्ट्रीयता और दर्शन पर एक तरफ भारतीय गौरवमयी परंपरा का प्रभाव है तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का। सन 1946 में प्रकाशित कुरुक्षेत्र में उन्होंने भीष्म और युधिष्ठिर के संवादों के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बीच युद्ध और शांति के अत्यंत जटिल प्रश्न को उठाया है। वे गांधी जी के विचारों से गहरे प्रभावित तो थे, लेकिन संकट के समय कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण के विरोधी थे। उनका स्पष्ट मानना था कि शांति की स्थापना के लिए कभी कभी अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना भी परम धर्म बन जाता है।
2: लेकिन दिनकर जी केवल कल्पना के लोक में खोए रहने वाले रचनाकार नहीं थे। जैसे जैसे वे देश की पराधीनता, भुखमरी और गरीबी के कड़वे यथार्थ से रूबरू हुए, वैसे वैसे उनका बौद्धिक और यथार्थवादी स्वर मुखर होता गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनकी कविताएं छायावाद के उस काल्पनिक कुहासे से मुक्त होकर सीधे धरातल के सच से जुड़ती चली गईं। उन्होंने कोमल कांत पदावली को छोड़कर गर्जना सीखी, बादलों से बरसते पानी की जगह अंगारे बरसाना सीखा। परिणाम ये हुआ कि हिंदी साहित्य को एक नई, ओजस्वी और क्रांतिकारी दिशा मिली, जिसने महलों के सिंहासन खाली करने की मुनादी कर दी।
4: दोस्तों, जब कर्ण अपनी शर्तों पर अडिग रहता है तो कुंती का हृदय हाहाकार कर उठता है। वे कहती हैं कि हे हठी, तूने खुद को देकर भी मुझे खाली ही छोड़ दिया। मैं 6 पुत्रों की मां बनने की आस लेकर आई थी, लेकिन विधाता की क्रूरता देखो कि उसने मुझे आज भी 5 पुत्रों पर ही ला खड़ा किया। विधाता का न्याय कितना वाम है, यानी टेढ़ा है, कि मां अपने ही 2 बेटों को आपस में मरते देखने के लिए अभिशप्त है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि कुछ गलतियां समय के किसी भी मरहम से नहीं भरी जा सकती। कुंती की ममता सच्ची है और कर्ण का कर्तव्य अटल है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, फिर भी दोनों के हिस्से में केवल पीड़ा है। दिनकर जी ने इस संवाद के माध्यम से यह दिखा दिया कि मनुष्य का गौरव केवल जीत में नहीं बल्कि अपने धर्म और वचन के लिए हंसते हंसते सर्वस्व न्योछावर कर देने में है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। यह था पंचम सर्ग का अंतिम काव्यांश। लगता है दिनकर जी ने आत्मा की सारी परतें खोल दी। इतना भावुक काव्यांश मां और पुत्र का, इतना भाव प्रवण संवाद, हृदय जैसे बहुत देर तक इसी भाव में कहीं ठहर सा गया है। तो हम यहीं रुकते हैं, रश्मि रथी के इस रथ को यहीं विराम देते हैं। तब तक हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का,
1: मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने।
5: मैंने यानी आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा,
2: और मैं भगवती सक्सेना।
1: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा,

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा पूर्ण आयोजन, प्रवेश निःशुल्क।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद। देश का चैनल, देश के लिए।

रात्रि के ठीक 10 बजे हैं और इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।